एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
2: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।

0: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन जब मनुष्य यह भूल जाता है कि उसका अस्तित्व भी प्रकृति की देन है, तभी अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जीवन बार बार यही सिखाता है कि समय के आगे किसी का बल, वैभव या प्रसिद्धि स्थायी नहीं होती। इसीलिए दूसरों को तुच्छ समझने की बजाय हर व्यक्ति का सम्मान हमें करना चाहिए। जो आज हमारे पास है वह ईश्वर की कृपा है, हमारा स्थायी अधिकार नहीं। जीवन का सच्चा वैभव धन या शक्ति में नहीं।

बल्कि विनम्र स्वभाव, मधुर वाणी और श्रेष्ठ कर्मों में है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर संतोष जन्म लेता है और अहंकार स्वयं समाप्त होने लगता है। यही भाव हमें सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाता है। चिंतन के बाद अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

बड़ा सुंदर प्रसंग है रहीम के बारे में। रहीम कृष्ण भक्त थे, मुसलमान थे और अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न थे। पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। उनकी एक विशेषता बहुत कम लोग जानते हैं कि वे स्वभाव से बड़े महान दानी थे। बहुत से दानी हुए, रहीम जैसा दानी नहीं हुआ। विशेषता यह थी कि जैसे जैसे दान करने के लिए अपने हाथ उठाते थे, अपनी आंखें झुका लेते थे, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था ये कैसा दान है। रहीम को तो दान करने में शर्म आती थी। और ये बात फैलते फैलते गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंच गई और उन्होंने दो पंक्तियां लिखकर रहीम के पास भेजी।

महादेव तक पहुंचने का मार्ग कठिन तपस्या से नहीं, बल्कि सच्चे मन, सरल स्वभाव और अटूट विश्वास से होकर गुजरता है। जब हृदय में शिव के प्रति समर्पण जागता है, तब जीवन का हर पल एक नई ऊर्जा, नई शांति और नए विश्वास के साथ भर उठता है।

श्रोता, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरित मानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में श्रीराम, सीता और लक्ष्मण को ग्राम तथा वन वासियों से हृदय स्पर्शी स्नेह प्राप्त हुआ। ग्राम वधुओं ने सीता जी के चरण छूकर उनकी मंगल कामना की, उन्हें आशीष दिया कि जब तक पृथ्वी कायम है उनका सुहाग बना रहे, वे पार्वती की भांति पति का प्रेम प्राप्त करें और वन से लौटते हुए इसी मार्ग से जाएं। लक्ष्मण ने जब विनीत भाव से आगे का मार्ग पूछा तो ग्रामवासियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। कर्म की गति कोई नहीं जान सका है, ऐसा मानकर वनवासियों ने उन्हें सुगम मार्ग बता दिया। स्नेह सिक्त वचन से श्री राम ने उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया। लौटते हुए स्त्री पुरुषों को ये विषाद है कि विधाता के सभी काम उल्टे होते हैं। यदि उसे इन्हें वनवास ही देना था तो व्यर्थ ही भोग विलास के साधन बनाए। व्यथित ग्रामवासी विधाता की करनी का विश्लेषण करते हैं। किसी को लगता है

कि ये ब्रह्मा के बनाए न होकर अपने आप प्रकट हुए हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा इनका अनुपम रूप देखकर इन पर मुक्त हो गया होगा और इन्हीं की छवि में स्त्री पुरुष बनाने लगा होगा, किंतु बहुत यत्न करके भी अपनी रचना को इन जैसा सुंदर नहीं बना सका होगा, तो ईर्ष्यावश इन्हें वन में छिपाने की योजना बना ली।

मानस गान का भी आपने सुना भाग 171। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह की 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारी केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह सुहानी ये कार्यक्रम श्रोता सुनते हैं हर रोज 7:10 पर। 7:40 पर आज सुनिएगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम गाने सुहाने। 9:00 श्रोता सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी। 9:00 से 10:00 तक ये कार्यक्रम सुना जा सकता है और इसी कार्यक्रम के दौरान 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 10:00 लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम गीतों का कारवा। 10:30 पर श्रोता आज सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और 11:10 से श्रोताओं आज वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकते हैं। 12:00 सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए बहने अपना कार्यक्रम सुनो सखी सुनेंगी। 12:30 पर दोपहर 1:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 1:10 से शाम 5:00 तक लुत्फ उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का जिन्हें आकाशवाणी मुंबई से रिले किया जाएगा। इसी दौरान दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आज कुछ गैर फिल्मी भजन सुनवाए जाएंगे और युवा साथी कार्यक्रम युवा मंच सुनेंगे। शाम 5:30 पर आज कार्यक्रम में बात होगी फिल्मी फ्राइडे के बारे में। शाम 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ मौजा गराई दिया। यह कार्यक्रम शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। शाम 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 संसद समीक्षा आप सुनेंगे जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे और उसके बाद आप सुनेंगे मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस। देशभक्ति गीत रात 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात 9:15 पर प्रसारित किया जाएगा और आज की फिल्म रहेगी साल 1975 में आई फिल्म जूली। 9:30 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम कारवां सुरों का। रात 10:00 मानसून सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे और इस रिकॉर्डिंग की ना आने की स्थिति में आपको सुनवाया जाएगा 10:00 कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स और 10:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम। और सभा के अंत में यानी रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ देर में पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अद्य राष्ट्रिय हस्ततन्तु दिवसः उत्साहेन आनन्देन च आचरन्त्विति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नागरिकाः प्रार्थिताः। एकस्मिन् चलचित्रीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् 25वें वर्षे अगस्ट मासस्य सप्तमदिनाङ्के भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य भागरूपेण स्वदेशीय आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत्। सर्वक्षेत्राणां जनाश्च एकीभूय ब्रिटिश शासनं विरुध्य ऐतिहासिकं सङ्घर्षं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री जनान् स्वहस्तैः वस्त्राणि निर्मातृभ्यः निर्धनतन्तुवायकुटुम्बेभ्यः शिल्पिभ्यश्च साहाय्यं कर्तुं प्रोत्साहितवान्।
1: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः स्वच्छ ऊर्जायाः ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाश्च वर्धनार्थं प्रायः 25,000,000,000,000 रूप्यकाणां परिव्यययुतां राष्ट्रिय जैव ऊर्जना योजनां गोवर्धनमिति

0: अनुमोदितम्। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना अस्मात् वर्षादारभ्य 35-36-2000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। श्री वैष्णवः अवदत् यत् आर्थिक कार्यस्य मंत्रिसभा समित्या अपि असमराज्ये राष्ट्रीय राजमार्ग 15 इत्यस्य पार्श्वे गुवाहाटीतः तेजपुरपर्यन्तं पंक्तिचतुष्टययुतस्य राजमार्गस्य निर्माणं अनुमोदितम्। मंत्रिमंडलस्य गोवर्धन योजनायाः अनुमोदन विषये प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सामाजिक प्रसार माध्यमे उक्तं यत् स्वच्छ ऊर्जायै ग्रामीण समृद्ध्यै देशस्य सामूहिक स्वप्नस्य स्वावलम्बनाय च अयं निर्णयः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति इति। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः उक्तवती यत् सर्वकारस्य महत्वाकांक्षा अस्ति यत् आधुनिक प्रगतिः संस्कृतिः परम्परयोः आधारिता भवेत् इति। नवदेहल्यां सीडी देशमुख व्याख्यानम 2026 इति कार्यक्रमं संबोधयन्ती श्रीमती सीतारामनः अवोचत् यत् उपभोक्तावादिनः न भूत्वा समृद्धायाः सम्पन्नायाः च भारतीय सभ्यतायाः अनुरूपं सफलं भवितुं भारतस्य नियतिः भवेदिति। भारतम् ओडिशा राज्यस्य चण्डीपुरनगरस्य एकीकृत परीक्षण क्षेत्रात् मध्यम परिधियुक्तस्य अग्निचार इति क्षिपण्याः सफलतया परीक्षणम् अकरोत्। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् प्रक्षेपणेन क्षिपण्याः सर्वाः प्रचालनात्मकतान्त्रिकमानदण्डाः प्रमाणिताः अभवन्निति। केन्द्रेण गोवा राज्यस्य विधानसभाक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य पुनः समायोजनस्य अधिनियमः 2025 इत्यस्य कार्यान्वयनम् अधिसूचितम्। येन गोवाराज्ये अनुसूचित जनजातीनां कृते विधानसभा स्थानानां आरक्षणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। भारतीय राजपत्रे प्रकाशितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं राज्यस्य जनजातीय समुदायानां दीर्घकालस्य अपेक्षां पूरयन् निर्वाचनक्षेत्रस्य पुनः समायोजनस्य आरक्षणस्य च प्रक्रियां समर्थयन् ह्यः अधिनियमः प्रवृत्तः अभवत्। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, केरलराज्ये, माहे प्रदेशे, ओडिशा राज्ये, तटीय दक्षिणान्तर्गत कर्णाटके च मेघावृष्ट्या प्रचंड बातेन विद्युत प्रभावेन च सह प्रचंडतः अतिप्रचंडायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अद्य अंडमान निकोबार द्वीपेषु, झारखंड प्रदेशे, लक्षद्वीपे, पश्चिम बंग प्रदेशे, मध्य प्रदेशे, तमिलनाडु प्रदेशे, पुदुच्चेरी प्रदेशे, कारैकलल प्रदेशे, उत्तराखंड प्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भविष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा अद्य असन नगरे कोरिया मास्टर्स क्रीडायाः महिला सिंगल्स इत्यस्यां प्राग उपांतचक्रीय क्रीडायां स्वस्याः देशवासिन्या रक्षिता रामराज इत्यनया सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

0: मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहाँ विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और पर्यटन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands.
2: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
1: National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement launched on the same day in 1905. Ministry of Textiles will organize a national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center today to celebrate 12th National Handloom Day. President Draupadi Murmu will join the event as a chief guest with Union Textiles Minister Giriraj Singh and Minister of State Pavitra Margarita attending the program. The textiles

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग सुप्रभात श्रोताओं, स्वागत आप सबका कार्यक्रम सुबह सुहानी में। श्रोताओं, सुबह की शुरुआत अगर अच्छी सोच के साथ की जाए तो पूरा दिन जैसे अपने आप मुस्कुराने लगता है। आइए इस नई सुबह को खूबसूरत शब्दों से शुरू करते हैं, जो शब्द सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुंचे, क्योंकि अच्छी बातें दिन ही नहीं बल्कि नजरिया भी बदल देती हैं। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार। वाणी को वीणा बनाए, बाण ना बनाए। वाणी वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और वाणी अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत हो सकता है। जी हाँ श्रोताओं, वाणी ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। यदि हमारे शब्द वीणा की तरह मधुर होंगे तो रिश्तों में अपनापन, विश्वास और खुशियों का संगीत गूंजेगा। लेकिन यदि वही वाणी बाण बन

तो पल भर में प्रेम, सम्मान और रिश्ते टूट सकते हैं। इसीलिए बोलिए ऐसा जो दिलों को जोड़े, तोड़े नहीं। बस यही मीठी सी सोच अपने साथ रखिए और इसी मीठी सोच के साथ आगे बढ़िए और इस खूबसूरत सुबह को और भी खूबसूरत बनाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: स्वागत सभी श्रोताओं का एक बार फिर कार्यक्रम सुबह सुहानी में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से। वक्त है अब उस पड़ाव की ओर बढ़ने का जहां हम बात करते हैं इतिहास की, क्योंकि हर तारीख अपने साथ कुछ ऐसी यादें लेकर आती हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा बदली, समाज को नई सोच दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा की मिसाल बन गई। तो आइए जानें क्या कुछ हुआ आज की तारीख यानी 7 अगस्त की इस तारीख पर इतिहास में। साल 1905 की बात करें तो श्रोताओं, कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का ऐतिहासिक प्रस्ताव आज के दिन पारित हुआ। यहीं से स्वदेशी आंदोलन को संगठित रूप मिला, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण आज के दिन को यानी 7 अगस्त को भारत में हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत साल 2015 से हुई थी, और जिसने भारतीय हथकरघा और स्वदेशी वस्त्रों को नई पहचान दी। इस दिवस का उद्देश्य देश के लाखों बुनकरों, हस्तशिल्प कारीगरों को उनके योगदान को सम्मान देना, पारंपरिक बुनाई कला को बढ़ावा देना और लोगों को वोकल फॉर लोकल तथा हैंडलूम उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। भारत की बनारसी, कांचीपुरम, पश्मीना, चंदेरी और कुल्लू शाल जैसी हस्तकरघा परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विरासत और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। कार्यक्रम में अब आगे बात करते हैं श्रोताओं, साल 1942 की। तो आज ही के दिन साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ग्वाडल कैनाल अभियान की शुरुआत की, जिसे प्रशांत क्षेत्र के युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। 7 अगस्त 1944 को IBM ने हॉवर्ड्स विश्वविद्यालय को हॉवर्ड मार्क 1 नामक विशाल स्वचालित गणना मशीन समर्पित की। 51 फीट लंबी, 8 फीट ऊंची और लगभग 5 टन वजनी ये मशीन आधुनिक कंप्यूटर युग की आधारशिलाओं में से एक मानी जाती है। साल 1959 की बात करें तो अमेरिका ने एक्सप्लोरर 6 उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जिसने अंतरिक्ष से पृथ्वी की शुरुआती तस्वीरें भेजी। और 7 अगस्त साल 1985 को भारत के महान बिलियर्ड्स खिलाड़ी गीत श्रीराम सेठी ने विश्व अमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के बॉब मार्शल को हराकर अपना पहला विश्व खिताब आज के दिन जीता। और लगभग 8 घंटे तक चले इस रोमांचक मुकाबले ने गीत सेठी को विश्व बिलियर्ड्स के नए सितारे के रूप में स्थापित किया। आज की तारीख की इन मुख्य घटनाओं के बाद वक्त है कार्यक्रम में एक बार फिर श्रोताओं के मनोरंजन का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: Step into the world of Nexa.
2: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
2: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
1: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
3: Nexa.

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। आज के इतिहास की बात हो रही है श्रोताओं और महत्वपूर्ण घटनाएं हमने आपके साथ साझा की, बात करते हैं उन खास हस्तियों की जिनके जन्म आज के दिन हुए। साल 1871 में जन्म हुआ प्रसिद्ध चित्रकार और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर का। साल 1925 में जन्मे भारत की हरित क्रांति के प्रमुख शिल्पकार कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन। और साल 1955 की बात करें तो आज के दिन यानी 7 अगस्त के दिन जन्म हुआ सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक सुरेश वाडेकर का, जिन्होंने हिंदी और मराठी संगीत जगत को अनेक यादगार गीत दिए। अब बात उन खास हस्तियों की जो आज के दिन इस संसार से रुखसत हुई। साल 1941 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान कवि, साहित्यकार और दार्शनिक रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हुआ। उनकी रचनाएं आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करती हैं। साल 2011 की बात करें श्रोताओं तो आज ही के दिन निधन हुआ नैन्सी वेक का, जिन्हें द व्हाइट माउस के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे साहसी महिला योद्धाओं में इन्हें गिना जाता है। और श्रोताओं आज ही के दिन इस नश्वर संसार को अलविदा कहा हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा ने साल 2009 में। इनका वास्तविक नाम गुलशन कुमार मेहता था। और मेरे देश की धरती यारी है ईमान मेरा, दिल भर मेरे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे जैसे यादगार गीतों के जरिए उन्होंने हिंदी संगीत जगत को, हिंदी फिल्म जगत को अमूल्य धरोहर दी। और उन्हीं का लिखा ये गीत आपको सुनवा रहे हैं खेल खेल में फिल्म से।
1: अरे देख रहे हैं
2: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
2: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
2: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
2: हो जाए।

0: श्रोता इस समय है आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, माफ कीजिएगा सुबह सुहानी। श्रोताओं, आज राष्ट्रीय दिवस हमने मना रहे हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और उसके अलावा एक और राष्ट्रीय दिवस आज मनाया जा रहा है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। श्रोताओं, कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं मैदानों में लिखा जाता है, और उसे लिखने के लिए स्याही नहीं हौसले की जरूरत होती है। ऐसे ही हौसले जब जुनून से मिलते हैं तो वे सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। इसी जज्बे, इसी आत्मविश्वास और इसी सुनहरी उपलब्धि को सलाम करने के लिए हर वर्ष आज के दिन को, यानी 7 अगस्त को, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन उस ऐतिहासिक पल की याद में मनाया जाता है जिसने भारतीय खेल जगत की तस्वीर उस वक्त बदल दी जब नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय एथलेटिक्स का पहला ओलंपिक गोल्ड देश की झोली में डाला। इस उपलब्धि की याद में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 10 अगस्त साल 2021 में हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। ये दिवस उनकी इस उपलब्धि को सम्मान देने के साथ साथ उन लाखों युवाओं के सपनों का उत्सव भी है जो मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो और इरादे मजबूत हों तो एक भाला भी इतिहास रच सकता है। जी, सुबह सुहानी में इस जानकारी के बाद एक बार फिर वक्त है श्रोताओं के मनोरंजन का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: Step into the world of Nexa.
2: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
2: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh.

श्रोताओं, सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब वक्त है आज की मुख्य खबरों का। बांग्लादेश ने 20 अगस्त को राष्ट्रपति चुनाव कराने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई है। आज पूरे देश में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का मुख्य समारोह आयोजित किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारतीय हथकरघा उत्पादों को अपनाने की अपील की है। संसद में आज गतिरोध टूटने की उम्मीद है, जहां गृहमंत्री द्वारा कुछ अहम संशोधनों और विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स मामले में हिंदुजा बंधुओं को मिली राहत के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। बात अब खेल समाचारों की। बैडमिंटन में भारत की युवा स्टार तन्वी शर्मा आज ताइपे ओपन सुपर 300 के महिला एकल फाइनल में वियतनाम की न्यूगेन थुई लिन से भिड़ेंगी। 17 वर्षीय तन्वी ने सेमीफाइनल में मेजबान चीनी ताइपे की ह्युआंग शून को सीधे गेमों में हराकर पहली बार किसी BWDF सुपर 300 टूर्नामेंट में जगह बनाई है। भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की निगाहें अब इस खिताब के मुकाबले पर टिकी हुई हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला, जिसका पहला मुकाबला 15 अगस्त को खेला जाएगा। इस मुख्य टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले आज से यानी 7 अगस्त से 3 दिवसीय अभ्यास मैच खेले जा रहे हैं। नई दिल्ली में 17 अगस्त से शुरू होने वाली BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की तैयारी अंतिम चरण में है और भारतीय बैडमिंटन संघ ने दावा किया है कि इस बार आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ होगा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है। ये टीम चीन में होने वाले जूनियर एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अब जानते हैं आज के मौसम का हाल। देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम बारिश के कारण मानसून जो है वो सक्रिय बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में भारी वर्षा का अनुमान है और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिनभर बादल छाए रहने और रुक रुक कर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। खबरों के बाद एक बार फिर रुख करते हैं गीत संगीत की ओर।

0: श्रोताओ, ये था आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी, और ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ।
1: सुबह सुहानी।

सुबह सुहानी। श्रोताओं, आकाशवाणी धर्मशाला से कार्यक्रम सुबह सुहानी के बाद अब वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा का। तो लीजिए सुनिए गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 22वां अध्याय धर्म निरीक्षण। इसी समय एक दूसरे ईसाई कुटुंब के साथ मेरा संबंध जुड़ा। उसकी इच्छा से मैं हर रविवार को वेस्लियन गिरजे में जाया करता था। अक्सर हर रविवार की शाम को मुझे उनके घर भोजन भी करना पड़ता था। वेस्लियन गिरजे का मुझ पर अच्छा असर नहीं पड़ा। वहां जो प्रवचन होते थे वे मुझे शुष्क जान पड़े। प्रेक्षकों में भक्ति भाव के दर्शन नहीं हुए। यह 11 बजे का समाज मुझे भक्तों का नहीं बल्कि कुछ दिल बहलाने और कुछ रिवाज पालने के लिए आए हुए संसारी जीवों का समाज जान पड़ा। कभी कभी इस सभा में मुझे बरबस नींद के झोंके आ जाते। इससे मैं शर्माता पर अपने आसपास भी किसी को ऊँघते देखता तो मेरी शर्म कुछ कम हो जाती। अपनी यह स्थिति मुझे अच्छी नहीं लगी। आखिर मैंने

गिरजे में जाना छोड़ दिया। मैं जिस परिवार में हर रविवार को जाता था, कहना होगा कि वहां से तो मुझे छुट्टी ही मिल गई। घर की मालकिन भोली भाली परंतु संकुचित मन की मालूम हुई। हर बार उनके साथ कुछ न कुछ धर्म चर्चा तो होती ही रहती थी। उन दिनों मैं घर पर लाइट ऑफ एशिया पढ़ रहा था। एक दिन हम ईसा और बुद्ध के जीवन की तुलना करने लगे। मैंने कहा, गौतम की दया को देखिए, वह मनुष्य जाति को लांघ कर दूसरे प्राणियों तक पहुंच गई थी। उनके कंधों पर खेलते हुए मेमने का चित्र आंखों के सामने आते ही क्या आपका हृदय प्रेम से उमड़ नहीं पड़ता? प्राणी मात्र के प्रति ऐसा प्रेम मैं ईसा के चरित्र में नहीं देख सका। उन बहन का दिल दुखा। मैं समझ गया। मैंने अपनी बात आगे ना बढ़ाई। हम भोजनालय में पहुंचे। कोई 5 वर्ष का उनका हंसमुख बालक भी हमारे साथ था। मुझे बच्चे मिल जाएं तो फिर और क्या चाहिए। उसके साथ मैंने दोस्ती तो कर ही ली थी। मैंने उसकी थाली में पड़े मांस के टुकड़े का मजाक किया और अपनी रकाबी में सजे हुए सेव की स्तुति शुरू की। निर्दोष बालक पिघल गया और सेव की स्तुति में सम्मिलित हो गया। पर माता, वह बेचारी दुखी हुई। मैं चेता, चुप्पी साध गया। मैंने चर्चा का विषय बदल दिया। दूसरे हफ्ते सावधान रहकर मैं उनके यहां गया तो सही, पर मेरे पांव भारी हो गए थे। मुझे यह ना सूझा कि मैं खुद ही वहां जाना बंद कर दूं और ना ऐसा करना उचित जान पड़ा। पर उस भली बहन ने मेरी कठिनाई दूर कर दी। वे बोली, मिस्टर गांधी, आप बुरा ना मानिएगा, पर मुझे आपसे कहना चाहिए कि मेरे बालक पर आपकी सोहबत का बुरा असर होने लगा है। अब वह रोज मांस खाने में आनाकानी करता है और आपकी उस चर्चा की याद दिलाकर फल मांगता है। मुझसे यह ना निभ सकेगा। मेरा बच्चा मांसाहार छोड़ने से बीमार चाहे ना पड़े, पर कमजोर तो हो ही जाएगा। इसे मैं कैसे सह सकती हूं? आप जो चर्चा करते हैं वह हम सयानों के बीच शोभा दे सकती है, लेकिन बालकों पर तो उसका बुरा ही असर हो सकता है। मिसेज, मुझे दुख है। माता के नाते मैं आपकी भावना को समझ सकता हूं। मेरे भी बच्चे हैं। इस आपत्ति का अंत सरलता से हो सकता है। मेरे बोलने का जो असर होगा उसकी अपेक्षा मैं जो खाता हूं या नहीं खाता हूं उसे देखने का असर बालक पर बहुत अधिक होगा। इसलिए अच्छा रास्ता तो यह है कि अब से आगे मैं रविवार को आपके यहां ना आऊं। इससे हमारी मित्रता में कोई बाधा ना पहुंचेगी। बहन ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, मैं आपका आभार मानती हूं।

0: श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
1: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
2: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
1: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2024।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
3: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio, every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए ये देशगान।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
5: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
4: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
6: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर एमडीआर वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। यूपीआई लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
4: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
7: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे, जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
4: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
8: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय में

0: केंद्र सरकार के हलफनामे को नव भारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The centers notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. We have more details from a correspondent.
3: According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force from 6th August 2026, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. In a social media post, he said the Act marks a decisive step towards ensuring long-overdue justice and political representation for the scheduled tribe. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
2: Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface UPI and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payments.

93.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने। और आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं, हम आपको बता दें, केंद्रित है गायक सुरेश वाडेकर पर। क्लासिकल संगीत की मजबूत नींव और भावनाओं से भरी गायकी, यही है सुरेश वाडेकर की पहचान। पेश है उन्हीं का गाया एक और गीत।

0: गाने सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। अगले गीत से पहले वक्त है एक कमर्शियल ब्रेक का।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
2: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
5: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DEB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
4: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
2: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
6: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
7: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
6: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
7: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
6: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
1: Step into the world of Nexa.
2: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360 degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
2: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
1: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
3: Nexa.
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाने सुहाने। सुरेश वाडेकर जी को आज का ये कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में हम बातें कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी किसी गीत में सुकून तलाशना हो तो सुरेश वाडेकर की आवाज़ खुद ब खुद याद आती है।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: Step into the world of Nexa.
3: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
3: And now it's yours at an effective

0: price of just 5.79 lakh rupees.
1: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: आरबीआई कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: गाने सुहाने ये प्रोग्राम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। और आज का ये प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है गायक सुरेश वाडेकर को, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ है, साल 1955 में। श्रोताओं, और एक ऐसे गायकों में से सुरेश वाडेकर हैं जो सिर्फ गीतों को गाते ही नहीं, एहसासों को लफ्ज़ देने का काम करते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं और सुबह के 9 बजे हैं। अब लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम जनवाणी।

0: कार्यक्रम जनवाणी में सभी श्रोताओं का स्वागत है। और श्रोता जानते हैं हर शुक्रवार को ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होते हैं और लाइव फोन इन यानी सजीव फोन इन ये कार्यक्रम रहता है और स्टूडियोज का नंबर रहता है 01892224391। श्रोताओं, जनवाणी कार्यक्रम सिर्फ बातचीत का कार्यक्रम नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े सवालों, समस्याओं और कई बार कुछ जरूरी विषयों को विशेषज्ञों तक पहुंचाने का एक मंच है। हमारी कोशिश रहती है ऐसे विषय सामने लाएं जिनसे रूबरू आप हो पाएं और जिनके बारे में सही रूप से जानकारी आपको मिल सके। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। बरसात का मौसम आते ही जहां एक ओर हरियाली बढ़ती है, मौसम बदलता है, वहीं दूसरी ओर एक चिंता भी अक्सर हमारे घरों और आसपास के इलाकों में दिखाई देने लगती है और वो है सांपों का निकलना। घर के आंगन में सांप दिखा, खेत में काम करते हुए सांप सामने आ गया, रास्ते में सांप दिखाई दिया या घर के किसी कोने में छिपकर बैठे रहते हैं ये सांप, ऐसी स्थिति में सबसे पहला सवाल यही होता है अब क्या करें और इनसे कैसे बचाव किया जाए। सांपों को लेकर हमारे समाज में बहुत सारे डर हैं, कई धारणाएं हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब बात सुरक्षा की हो तो अनुमान से ज़्यादा ज़रूरी है वैज्ञानिक और विश्वसनीय जानकारी। आज जनवाणी कार्यक्रम में इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित शर्मा, भारतीय वन सेवा वन मंडलाधिकारी धर्मशाला से, और इन्हीं से हम आज जानेंगे सांपों के व्यवहार, बरसात में उनकी गतिविधियों, बचाव सावधानियों से जुड़े प्रश्न। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी। सबसे पहले हम जब भी सांपों की बात करते हैं हमारे मन में सबसे पहले तो डर आता है क्योंकि लोग डरते हैं इस चीज़ से और ऐसा भी माना जाता है कि इंसान सांप से डरता है और सांप इंसान से डरते हैं।
1: जी,
0: तो एक बेसिक सा या सामान्य सा प्रश्न है कि मॉनसून के दौरान जो है ये सांप निकलने की घटनाएँ क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं?
1: बिल्कुल सही है कि बरसात के मौसम में सांप ज़्यादा दिखते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं
0: जी।
1: विंटर सीजन में जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये ब्रूमेशन पीरियड में रहते हैं, सुप्तावस्था में रहते हैं, शिथिल रहते हैं, तो ये भोजन नहीं एकत्रित कर पाते हैं। परंतु जैसे ही ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं और इनको अपने लिए भोजन एकत्रित करना होता है क्योंकि बरसात के बाद फिर विंटर सीजन स्टार्ट होना होता है, तो इसी समय में ये विचरण करते हैं
0: जी।
1: और इस टाइम पे घास पत्ती, ग्रोइंग सीजन बहुत है, रैट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मेंढक आ जाते हैं जो इनका प्रिय भोजन है, तो इसलिए सांप की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती
0: हैं। मतलब ये कोई मिथ नहीं है कि लोग कहते हैं कि बरसात में सांप ज़्यादा होते हैं, ये सच्चाई है,
1: साइंटिफिक है
0: जी। और वास्तव में अगर बारिश के मौसम में ये सक्रिय हो जाते हैं, इनका आपने बताया एक कारण जो है कि भोजन के लिए ही ये आते हैं
1: जी
0: जी। कांगड़ा और धर्मशाला हमारे जो आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो किन प्रजातियों के सांप जो हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं?
1: एक्चुअली जो हिमाचल में है जितने भी सांप होते हैं ज़्यादातर वो नॉन वेनमस होते हैं, कम वैशीले होते हैं, परंतु जहर कम होता है। परंतु जो चार पांच स्पीशीज हैं वो बहुत विषैले हैं, जैसे कि कोबरा यहाँ पे आमतौर पर देखने को मिलता है। कोबरा की दो वैरायटीज, दो स्पीशीज होती हैं, किंग कोबरा जो कि हिमाचल में सिर्फ एक ही जगह सिरमौर जिला में देखने को मिला है और उसका कोई रिकॉर्ड कांगड़ा बाकी जिलों में नहीं है
0: जी।
1: पर कॉमन कोबरा यहाँ पे आमतौर पर दिखता है। दूसरा जो स्नेक है वो विषैला जो है वो है, क्रेट स्नेक
0: जी।
1: तीसरा जो

0: विषैला सांप है वो है पिट वाइपर, रसल्स पिट वाइपर, और चौथा हिमालयन पिट वाइपर। ये काफ़ी विषैले सांप पाए जाते हैं जो हिमाचल में होते हैं।
1: जी
0: हिमालयन पिट वाइपर थोड़ा हाइट के क्षेत्रों में मिलता है,
1: जी
0: रसल्स वाइपर नीचे मिलता है। इसकी इनकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी आसान है, इसको पहचाना जा सकता है, रसल्स वाइपर को और क्रेट स्नेक को।
1: जी
0: इसके साथ साथ एक हरे रंग का सांप दिखता है, आमतौर पर
1: जी
0: दिखता है,
1: बिल्कुल
0: जिसको हम ग्रीन पिट वाइपर कहते हैं।
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: भी विषैला होता है, पर कम विषैला होता है, उससे सूजन आ सकती है परंतु मृत्यु किसी की नहीं हो सकती है।
1: जी अगला प्रश्न हमारा ये है अमित जी की, आम नागरिक जो हैं, जैसे आपको तो पहचान है कि ये किस कैटेगरी का, किस स्पीशीज का है,
0: जी
1: आम नागरिक किस तरह से पहचान कर सकते हैं कि ये जहरीला है ये सांप या जहरीला नहीं है?
0: आम नागरिकों को तो मेरी सलाह है कि पहचान के आधार पर पहचानने की कोशिश ना करें। जब भी कोई सांप दिखे तो उससे उचित दूरी बनाएं।
1: जी
0: यदि सांप को सुरक्षित रास्ता मुहैया करा दिया जाए तो वो खुद अपने स्थान की ओर चले जाते हैं,
1: जी
0: एज एज सच वो अटैक नहीं करते हैं।
1: जी जी
0: तो पहचानना सांपों को थोड़ा मुश्किल कार्य
1: मुश्किल
0: है,
1: जी जी
0: एक्सपर्ट
1: जी
0: ही इसको पहचाने तो
1: जी
0: ज़्यादा
1: बिल्कुल
0: बेहतर है।
1: जी बिल्कुल। और श्रोताओं को बता दें, जनवाणी कार्यक्रम आज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय, और सांपों के विषय में आज हम जानकारी श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं, और अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिला वन विभाग से ये हैं, और इस विषय पर जानकारी साझा कर रहे हैं। आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा है, कोई इस विषय से जुड़ा संबंधित प्रश्न है, तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ जो हैं इनसे बात कर सकते हैं। 01-892-224-391 यानी 01-892-224-391 ये स्टूडियोज़ का नंबर है जी। अगर मान लीजिए घर के आसपास आजकल, जैसे हमारे अपने ग्रामीण परिवेश की बात करें या हमारे इलाकों की बात करें, तो जैसे गांव की बात है स्पेशली, तो वहाँ पर घास इकट्ठा करके रखना, लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखना, ये आम देखने को मिलता है।
0: जी
1: तो ऐसी जगहों पर सांप अक्सर चले आते हैं, तो ये बताइए कि ऐसे कौन से स्थान हैं जो बरसात के दिनों में सांप ढूंढते हैं उन स्थानों पर रहने के लिए, या उनको लगता है कि ये स्थान हमारे लिए उपयुक्त है?
0: बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने।
1: जी
0: जब जब होता ऐसा है कि सांप जब भी भोजन की तलाश में होते हैं तो मोस्टली वो रोडेंट्स की तलाश में होते हैं या मेंढक की तलाश में होते हैं,
1: जी
0: जिनको वो खा के अपना जीवन
1: यापन, हाँ,
0: बजर
1: जो भी
0: यापन
1: है जी
0: करते
1: बिल्कुल
0: हैं। तो ऐसे स्थानों पे जनरली जहाँ पे हम लकड़ियाँ रखते हैं या कोई वेस्ट फेंकते हैं, वहाँ पे मेंढक या चूहे आमतौर पर देखने को मिलते हैं, या पक्षियों के घोंसले घरों में बहुत बनते हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: अंडों के लिए भी सांप आते हैं। तो इन क्षेत्रों पे आपको सुरक्षित साफ़ सफाई करनी चाहिए, लकड़ियाँ इकट्ठी घर के आसपास नहीं करनी चाहिए,
1: जी
0: घास की प्रॉपर सफाई करनी चाहिए घर के आसपास ऑन रेगुलर बेसिस मानसून में। तो सांप इन जगहों पर आमतौर पर आते हैं और भोजन की तलाश में आते हैं।
1: जी और सूखे क्षेत्र भी ऐसा कहा जाता है कि सूखे ठंडे जगह ढूंढते हैं, ऐसी ये धारणा है लोगों की, ये
0: जी
1: कितनी गैर सही है?
0: एक्चुअली जो स्नेक्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं,
1: जी
0: इनको थोड़ी वार्मथ चाहिए होती है,
1: जी
0: तो ये जनरली गर्म क्षेत्र पसंद करते
1: ये
0: हैं,
1: कहना
0: नमी
1: गलत
0: वाले
1: है, हाँ
0: क्षेत्र
1: ये कहना
0: पसंद
1: गलत
0: करते
1: है
0: हैं।
1: कि
0: जी
1: ठंडा देख के वो इस
0: ठंडा
1: तरह,
0: देख के नहीं
1: जैसे
0: होते
1: गर्मियों
0: हैं।
1: में अगर सांप निकले तो घर के अंदर, तो लोगों की ये धारणा होती है कि गर्मी से बचने के लिए वो ठंड में आया है,
0: नहीं ये
1: और
0: अवधारणा
1: सर्दियों
0: है
1: में
0: जी,
1: अगर निकले तो लोग कहते हैं कि धूप सेकने के लिए, वो बात सही है
0: वो बात सही है
1: जी
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल
0: आपको सांप दिखेंगे सर्दियों में पत्थर के
1: जी
0: ऊपर, वो धूप सेकने आते
1: जी
0: हैं।
1: अभी जी आगे जानना चाहेंगे, क्या दिन और रात की जो गतिविधियां हैं सांपों की, दिन में क्या गतिविधि रहती है, रात को क्या, किस तरह से उसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है?
0: बिल्कुल पाई जाती है, जितने भी स्नेक्स होते हैं थोड़े नॉकटर्नल होते हैं,
1: जी
0: ये सुबह और शाम के टाइम पे ही हंट करते हैं।
1: जी
0: तो टॉर्च का प्रयोग करना है, दिन में इनकी गतिविधि कम होती है
1: जी जी जी
0: पर शाम को रात को, जैसे क्रेट स्नेक है ये निकलता ही रात को है
1: जी
0: और इसके काटने के निशान पता नहीं चलते, पेन भी नहीं होती है,
1: अच्छा
0: छोटे होते हैं उसके फैंग्स क्रेट स्नेक के, वो दिखता
1: जी
0: नहीं है
1: जी
0: पर बहुत ही पॉइजनस स्नेक्स है। तो ज़्यादातर स्नेक जो बाइट्स होती हैं या अर्ली मॉर्निंग में मिलेंगी आपको या इवनिंग में मिलेंगी,
1: ओके मतलब दिन के समय में
0: ये कम एक्टिव होते
1: कम
0: हैं।
1: काटने के चांसेस होते हैं,
0: जी
1: तो खेतों में ये घटनाएं दिन में भी अक्सर हो जाती
0: बिल्कुल
1: हैं
0: मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे वो छुपे होते हैं और हम प्रिकॉशन नहीं लेते हैं।
1: जी।
0: तो जब भी घास कटाई करनी है या कोई कृषि का कार्य करना है तो लोगों को थोड़ा घास काटने से पहले घास को हिलाना चाहिए ताकि सांप वहाँ से चले जाएं,
1: जी बिल्कुल
0: क्योंकि भोजन करके जैसे इन्होंने शाम को भोजन किया होता है या रात को भोजन किया होता है, कोई चूहा खाया होता है, तो उसको
1: जी
0: पचाने की एक समय चाहिए होता है इनको, 5-6 घंटे का,
1: अच्छा, उसके बाद
0: तो
1: फिर एक्टिव
0: फिर
1: होंगे,
0: एक्टिव होते
1: सक्रिय
0: हैं,
1: होते हैं
0: निष्क्रिय होते
1: ठीक
0: हैं।
1: जी बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारे साथ है, मान लीजिए किसी के घर के अंदर सांप दिख गया है,

0: किसी को,
1: जी
0: एक तो दिखते बहुत कम हैं और हमला कई बार ज़्यादा कर देते हैं ये,
1: जी
0: अगर दिख जाता है तो फिर ऐसे में आप क्या सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए हमें
1: जब
0: एकदम से?
1: भी सांप दिखे तो उसको पहली बात तो मारने की और पकड़ने की कोशिश ना करें,
0: जी
1: आप सुरक्षित दूरी बनाएं और वन विभाग को सूचित करें।
0: जी
1: हमारा एक टोल फ्री नंबर है,
0: जी
1: उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का नंबर है।
0: जी
1: नॉट जस्ट स्नेक्स, पर कोई भी आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई कन्फ्लिक्ट मिलता है
0: जी जी
1: तो आप हमारे नंबर टोल फ्री नंबर पर 1800-41-9457-55 पर कॉल करें।
0: कॉल कर सकते हैं
1: इसके
0: जी।
1: अलावा यदि आपके पास मेरा नंबर है
0: जी
1: 9418040081 या किसी फॉरेस्ट गार्ड का वन मित्र का आपके पास नंबर है, आप उनको सूचित करें। हमारी
0: जी
1: रैपिड रिस्पॉन्स टीम, हमने ट्रेंड, हमारे पास टीम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि सांप पकड़ने में सक्षम हैं। आप उनको सूचित करें और हम
0: जी
1: सांप पकड़ने में आपकी मदद करेंगे।
0: जी बिल्कुल, सभी श्रोताओं से हम भी यही गुजारिश करेंगे कि अगर सांप निकलता है तो उसे मारने के बजाय
1: जी
0: वन विभाग को सूचित करें और किसी भी तरह का रिस्क जो है वो अपने आप हमें नहीं लेना चाहिए। जी
1: जी
0: कार्यक्रम में हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आपकी पसंद का एक गीत हम आपको भी सुनवाएंगे और श्रोता भी इस गीत का लुत्फ़ उठाएं।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

जी श्रोताओं, जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और ये कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचारों के बाद भी हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 9:18 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से उत्साह से मनाने का किया आग्रह। प्रदेश सरकार ने एचपी शिवा परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के सख्त दिए निर्देश। 25 अगस्त से शुरू होने वाली मणिमहेश यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का दौर जारी। आज बिलासपुर और कांगड़ा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता प्रदान करना है। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस दौरान कुल 22 पुरस्कार बुनकरों को उनके योगदान के लिए प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। प्रदेश में भी हथकरघा दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों को निर्धन बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने, इससे संबंधित एक वीडियो बनाने और इस वीडियो को देश विदेश में साझा करने का आग्रह भी किया।
1: आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: प्रदेश सरकार ने एचपी शिवा परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एचपी शिवा परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक शिमला में आयोजित की गई। बागवानी मंत्री ने परियोजना के सभी घटकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और दूसरे चरण के कार्यों को समयबद्ध शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना के अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि इस परियोजना के प्रथम चरण के तहत निर्धारित 3000 हेक्टेयर लक्ष्य के अंतर्गत अब तक लगभग 2600 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा चुका है, जिसमें से 1543 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का कार्य सितंबर तक किया जाएगा। परियोजना के तहत 3000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कुल 331 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिससे लगभग 10,000 से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। 25 अगस्त से शुरू होने वाली मणिमहेश यात्रा को लेकर चंबा जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पिछले साल भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पैदल मार्ग को इस बार सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे वैकल्पिक मार्ग का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका और शेष कनेक्टिविटी का काम भी तेजी से चल रहा है। 19 सितम्बर तक चलने वाली इस यात्रा के लिए यात्रा मार्ग पर सुरक्षा सुविधाओं और आपदा प्रबंधन के सभी इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं यात्रा के लिए पंजीकरण भी शुरू हो चुका है और हेलीटैक्सी सहित अन्य सुविधाएं भी जुटाई जा रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: हिमालय की गोद में बसे पवित्र मणिमहेश कैलाश की यात्रा हर साल लाखों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र रहती है। वर्ष 2025 के मानसून में हड़सर से दनछोह तक का पैदल मार्ग भारी बारिश से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी को देखते हुए इस बार प्रशासन ने क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त कर श्रद्धालुओं के लिए अन्य सुविधाएं जुटाने का कार्य भी तेज कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि मौसम विभाग की एडवाइजरी को ध्यान में रखकर ही यात्रा की योजना बनाएं ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति में स्पीति का प्रसिद्ध राज्य स्तरीय लदरचा मेला 24 से 26 अगस्त तक काजा में आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त शिखा ने मेले की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेले के पहले दिन पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी होगा, जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों सहित स्थानीय कलाकार, महिला मंडल और स्कूली बच्चे भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा किसान मेले का भी आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी दी जाएगी। उपायुक्त ने सभी विभागों और स्थानीय लोगों से मेले को सफल बनाने की अपील की है। कुल्लू जिला की सभी अदालतों में राज्य लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विशाल तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को जिला की सभी अदालतों में राज्य लोक अदालत जबकि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। उन्होंने सभी संबंधित पक्षकारों से आग्रह किया कि वे अपने मामलों को लोक अदालत में रखने के लिए सहमति प्रदान करें और इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करें। श्रम कल्याण अधिकारी मंडी अनिल ठाकुर ने मंडी जोन के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाकर ई श्रम कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी और सहायता के लिए संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का दौर जारी है। वर्षा के कारण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से कई सड़क मार्ग बाधित हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विभाग ने आज बिलासपुर और कांगड़ा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 12 अगस्त तक मॉनसून जारी रहने की संभावना है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला के शब्द है, पूर्व CPS को सरकारी बंगले देने पर हाईकोर्ट सख्त, CS से जवाब तलब। दैनिक जागरण ने लिखा है, पद से हटाने पर भी पूर्व CPS को विशेष लाभ कैसे दिए। हंगामेदार होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र, शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है। अब तक पूछे गए 212 सवाल, नियमों के तहत चर्चा के नोटिस भी मिले। 5 IAS अधिकारियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी, आदित्य नेगी उद्योग विभाग भी देखेंगे, दैनिक भास्कर की खबर है। दिव्य हिमाचल के अनुसार हिमाचल के लिए 400 करोड़ से अधिक की सैद्धांतिक मंजूरी, PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नितिन गडकरी से दिल्ली में की मुलाकात। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, भ्रष्टाचार से अर्जित की संपत्ति प्रदेश के गरीबों में बांटेंगे। मौसम की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, लैंडस्लाइड के कारण 16 घंटे तक बंद रहा शिमला की नौ नेशनल हाईवे 5। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से उत्साह से मनाने का किया आग्रह। प्रदेश ने HP शिवा परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के दिए सख्त निर्देश। 25 अगस्त से शुरू होने वाली मणिमहेश यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का दौर जारी, आज बिलासपुर और कांगड़ा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी। और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सांपों से संबंधित। हमारा विषय है कि बरसात के मौसम में सांप जो है अधिक सक्रिय क्यों हो जाते हैं। और अमित शर्मा जी जिला वन विभाग से हमारे साथ हैं, एक कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश में है। हेलो।
5: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी, अपना परिचय दें।
5: जी मैंने आपका परिचय नहीं जाना, आज कौन गए? अनुराधा जी बोल रही हैं।
0: जी सर, मैं नीलम बात कर रही हूँ।
5: नीलम जी नमस्कार
0: जी, अपना प्रश्न पूछिए और अपना पहले नाम बताएं।
5: देखिए प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जी आपने जो विषय रखा है बहुत बढ़िया रखा है। देखिए कोई भी जीव जंतु है ना, कोई भी मौसम हो, हर जीव में कुछ ना कुछ तो जहर होता ही है
0: जी।
5: जानवर जो है वो हम हैं, इंसान है
0: जी,
5: वो काटता भी नहीं किसी को, किसी को ऐसी बात कह देता है, वो जहर से भी ज्यादा जो है ना जहरीलापन हो जाता है
0: जी।
5: जो सांप है वो पता क्या है, सांप जो होते हैं अपनी खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, बरसात होती है तो उसको पानी में वो दिक्कत होती है तो वो बाहर आ जाते हैं, तो हम समझते कि सांप आ गया
0: जी। बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञ ने यही बात अभी कही कि खाने की तलाश में ही ये सक्रिय होते हैं बरसात में ज्यादा सांप।
5: हाँ जी, हाँ जी, वही ना, सांप हर सांप जो जहरीला नहीं होता
0: जी,
5: क्योंकि सांप जो होता है वो हमसे डरता है
0: जी। बिल्कुल,
5: लेकिन हम सांप से डरते हैं।
0: हाँ जी,
5: देखिए एक चींटी है या मच्छर है, मक्खी है, वो भी आपको काट लेगी तो उसका भी जहर हो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ हो जाता है
0: जी। बिल्कुल,
5: तो ध्यान रखने की बात यह है कि हम अपना जो भी कार्य करना है ध्यान पूर्वक करें, फिर भी बचाव करें कि कोई ऐसी चीज, हमने ज्यादा घास है उसको काटना है तो पहले किसी चीज डंडे से हिला लें
0: जी। बिल्कुल,
5: और उसका जो भी हो चीज, जहरीली चीज है जैसे सांप हो या कोई भी चीज दूसरी हो, वो भाग जाएगी
0: जी। बिल्कुल, आपने कॉल किया, आप यूं ही कार्यक्रम सुनते रहिए और भी जानकारी अमित शर्मा जी हमारे साथ साझा कर रहे हैं श्रोताओं के साथ, और यूं ही
5: जी,
0: जी यूं ही बने रहिए और कॉल के लिए शुक्रिया जी। ये हमारे श्रोता हैं और कॉल करके ये वही सब बातें कह रहे थे जो आपने पहले कुछ देर पहले कही जी। सर कार्यक्रम एक बार फिर लौटते हैं और अगले प्रश्न पर हम आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगर मान लीजिए किसी इंसान को सांप काट जाता है, ऐसा हो ना किसी के साथ, लेकिन अगर ऐसी घटना हो जाती है तो जो उसके आसपास के लोग हैं उन्हें सबसे पहले ऐसा क्या कदम है जो उठाना चाहिए?
6: देखिए जानकारी ही बचाव है
0: जी,
6: तो जो नहीं करना चाहिए वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी।
6: घाव को काटने या चूसने का प्रयास ना करें
0: जी,
6: टॉर्निकेट ना करें, बांधने की कोशिश ना करें
0: जी, जी,
6: जी। बर्फ, मिट्टी, रसायन, तेल या जड़ी बूटी ना लगाएं
0: जी,
6: शराब या कोई घरेलू नुस्खा उस पर
0: ना
6: अपनाने की कोशिश ना करें, सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश भी ना करें। शीघ्र आप नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र की तरफ जाएं, ये एक नोटिफाइबल डिजीज सरकार ने घोषित की है अभी फरवरी 2026 में
0: जी।
6: तो सभी
0: माफ कीजिए आपको बीच में रोक रही हूँ, नोटिफाइड डिजीज के बारे में श्रोताओं को जरा समझाएं
6: जी। स्नेक बाइट और स्नेक बाइट एनवेनमिंग ये सरकार द्वारा नोटिफाइड डिजीज है। अब इसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग भी कार्य कर रहा है और उन्होंने सब स्वास्थ्य केंद्रों में PSC तक एंटी स्नेक वेनम जो दवाइयां हैं वो मुहैया करवाई हैं और अब सरकार इस पे त्वरित कार्य करती है
0: जी। बिल्कुल, उचित से उचित और जल्दी से जल्दी जो है वो इलाज जो है व्यक्ति का किया जा सके
6: जी।
0: एक श्रोता और जुड़ने की कोशिश में है। हेलो।
7: हेलो नमस्कार
0: जी, नमस्ते जी, कार्यक्रम में स्वागत है और अपना नाम बताएं और विशेषज्ञ जो हमारे हैं उनसे प्रश्न करें अपना।
7: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से
0: जी। अपना प्रश्न राकेश जी कीजिए
7: जी। मेरा दो प्रश्न है
0: जी, आप विशेषज्ञ जी से पूछ सकते हैं
7: जी। जी जी, तो पहला प्रश्न मेरा ये, अगर जैसे सांप काटते हैं तो लोग कहते हैं या दूध या लस्सी नहीं खानी चाहिए, वो कितना मित्र है या सच है? और दूसरा ये, जब सांप काटते हैं नींद नहीं आनी चाहिए, तो ये इसमें इसका क्या कारण है?
6: जी थोड़ा सा बिल्कुल सही प्रश्न पूछे हैं आपने। दूध और लस्सी नहीं खाने चाहिए, इसके लिए कोई तथ्य नहीं है, साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। आपके क्षेत्र में जो पॉइजनस स्नेक मिलता है वो एक ही है, हिमालयन पिट वाइपर है, जो कि

0: प्रश्न है तो 0182-22-43-91 पर हमें फोन कर सकते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते जी, परिचय दें अपना।
1: मैं शिवेन बोल रहा हूँ लंच
0: जी शिवेन, हमारे विशेषज्ञ हैं अमित शर्मा जी, इनसे आप प्रश्न कर सकते हैं। सांपों से संबंधित जानकारी आज के इस कार्यक्रम में दे रहे हैं
1: से। जी,
0: जी। कुछ पूछना चाहते
1: अगर
0: हैं?
1: सांप कैसे पता लगाएं कि सांप जहरीला है कि नहीं?
2: देखो, आप सांप को नहीं पहचान सकते। आम आदमी को सांप को पहचानना कि कौन सा सांप जहरीला है कौन सा नहीं, तो इसकी कोशिश भी ना करें। आप सांप को सुरक्षित रास्ता दें वहां से जाने के लिए, और आप उस सांप से सुरक्षित दूरी बना के रखें।
1: अगर सांप हमें काट लेते हैं तो हमको क्या करना चाहिए?
2: देखिए, सांप काटता है तो सबसे पहले आपको नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में, PSC में या एम्बुलेंस 108 पे कॉल करनी है, और आपको स्वास्थ्य केंद्र की हेल्प लेनी है, वहीं पे जाना है आपने।
1: जी, थैंक यू जी।
0: जी शिवेन, कॉल करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया जी। बहुत छोटे से ही हमारे श्रोता हैं और बहुत ही कीन
2: अच्छे
0: लिसनर हैं और
2: जी
0: एक्टिव हैं, हर विषय पर जागरूक रहते हैं और
2: जी
0: प्रश्न पूछते हैं, जो कि हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे युवा हैं ये
2: जी
0: आने वाले जी। अमित जी, कार्यक्रम में अब आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्न करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर जुड़ने की कोशिश में है। हेलो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
3: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना
3: मेरा नाम जी,
0: जी। प्रश्न
3: और
0: कीजिए अपना, विशेषज्ञ
3: मैं
0: अमित
3: आपसे
0: शर्मा जी।
3: हो
0: आप
3: रहा हूँ। नमस्कार
0: जी, अपना प्रश्न कीजिए
3: मैडम जी।
0: जी। नमस्ते जी, अपना प्रश्न कीजिए आप।
3: सर जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: मेरा प्रश्न ये है कि क्या की जाती है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सांप जो है ना किसान का मित्र है, इसको मारना नहीं चाहिए, है
2: जी
3: ना जी?
2: बिल्कुल, जितने भी
3: दूसरा प्रश्न है कि जो मैंने ये भी सुनता आ रहा हूँ कि जो कोबरा है ना, ये फनीवर सांप है जो छलांग 1.5 मीटर की छलांग लगा देता है आदमी की तरफ, उसके पैरों में काटने की कोशिश करता है, ये भी सुनते आ रहे हैं, इसका
2: जी
3: ठीक है जी?
2: जी जी
3: तो
2: बिल्कुल,
3: दूसरा
2: मैं
3: प्रश्न
2: दोनों का
3: ये है
2: जवाब
3: कि
2: दूंगा आपको।
3: या दूसरा प्रश्न ये है कि मैंने सुना है कि जो अजगर सांप होता है ना,
2: जी
3: जंगलों में होता है, जंगलों में वो
2: जी
3: पगडंडियों में गोल घेरा बना के अपनी गर्दन को छिपा के रखता है, पगडंडियों में रहता है ज्यादातर, वो फांसी जैसे लगा के रखता है,
2: जी
3: तो ये बिल्कुल सच है कि वो टच होने से
2: जी
3: बाहर
2: जी
3: जाता
2: मैं
3: है?
2: आपका एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहला
3: हाँ जी, ये जवाब दे दो हमको। हाँ
2: जी,
3: जी
2: सबसे
3: हाँ
2: पहला आपने कहा कि स्नेक हमारे मित्र होते हैं। बिल्कुल,
3: जी
2: जितने भी प्राणी भगवान ने बनाए हैं वो किसी न किसी तरह से एक हमारे इकोसिस्टम का, परितंत्र का हमारा हिस्सा हैं, और स्नेक हमारे मित्र हैं, क्योंकि ये चूहों की पॉपुलेशन को और मेंढक की पॉपुलेशन को नियंत्रित रखते हैं। और जितने भी रैट स्नेक यहाँ पे बड़ा कॉमन पाया जाता है, जो हमारे घरों के इर्द गिर्द दिखता है, वो पक्षियों के अंडे या चूहों को खाता है, और एक एक वर्ष में वो लगभग 100 अंडे 100 चूहे खा जाते हैं जी। वो तो ये हमारे मित्र हैं,
3: अच्छा
2: किसानों के मित्र हैं। दूसरा आपने पूछा कि कोबरा, जो कोबरा होता है ये जनरली बहुत बड़ा स्नेक होता है, इसकी लेंथ लगभग 3-4 मीटर के करीब हो जाती है। तो वैसे तो ऐसे छलांग नहीं लगाते हैं ये, परंतु जब ये फन उठाते हैं तो एक लंबी दूरी तय करने की कोशिश करते हैं अपने प्रे को मारने के लिए जी, किसी पे इनको डसना हो। वैसे नॉर्मली डसते नहीं हैं ये। फिर तीसरा जो आपने कहा, अजगर की बात की है, अजगर बशीला सांप नहीं है ये, इसके पास जहर नहीं होता है। ये निगल के, जनरली जितने भी निगल के ही अपना आहार ग्रहण करते हैं, और ये छोटे पशुओं को या फिर खरगोश को ये निगलते हैं। तो ये छुपते हैं पगडंडियों के आसपास, क्योंकि जहाँ इनको भोजन की आसानी से उपलब्ध होता है वहीं ये छुपके रहते हैं जी।
0: जी,
3: ठीक
0: उम्मीद करते हैं
3: है
0: आप अपने प्रश्नों के
3: जी,
0: उत्तर जो आपको मिले हैं उससे संतुष्ट हों। कार्यक्रम में कॉल के लिए शुक्रिया जी। जी अमित जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें और कुछ और प्रश्न आपसे करें या कोई और कॉल लें, उससे पहले मैं एक बार चाहूंगी आप श्रोताओं को एक बार जो आपका टोल फ्री नंबर है या आपके विभाग का जो नंबर है, अपना पर्सनल नंबर एक बार फिर से शेयर करें।
2: जी हमारा एक टोल फ्री नंबर है, ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ क्लिनिक का नंबर है।
0: जी
2: इसका नंबर है 1800-4194-575, और मेरा पर्सनल नंबर है 9418-04-0081। हमारी सर्कल लेवल पे एक रैपिड रिस्पांस टीम होती है, डिवीज़न स्तर पे भी है। जैसे कोई नूरपुर क्षेत्र में भी यदि कोई सांप की घटना होती है तो आप हमें
0: जी
2: सूचित करें, या इस टोल फ्री नंबर पे करें, तो कंसर्न विभाग को हम सूचित करते हैं और वहाँ
0: जी
2: पे वो रेस्क्यू करते हैं।

0: जी बिल्कुल, एक और श्रोता जुड़ने की कोशिश में है। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: जी,
0: कार्यक्रम जनवाणी में स्वागत है, अपना नाम बता दें।
1: मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ।
0: जी अविनाश जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं।
1: जी, मेरा प्रश्न कि हमारे जो आसपास के जो जो इलाके में मतलब कि सांप अगर निकल आते हैं घर की तरफ, तो हम अगर फिनाइल की छिड़काव करें तो इसे क्या सांप दूर भाग सकते हैं या फिर केरोसिन का? क्योंकि इसे देखा गया है कि केरोसिन का अगर ज्यादा छिड़काव करते हैं तो सांप मतलब कि वो बेहोश हो जाते हैं, तो इससे क्या उनको मतलब मृत्यु हो सकती है?
2: एक्चुअली आपका प्रश्न ठीक है। हम भी कई बार घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर या फिनाइल, साफ सफाई रखना तो एक उचित व्यवस्था है जो आप सांपों से बचने के लिए कर सकते हैं। पर सांपों को सुगंध लेने की शक्ति नहीं होती है, तो उनको पता नहीं लगता है कि कोई फिनाइल की सुगंध आ रही है या कैरोसिन की सुगंध आ रही है। तो ये भी एक मिथ है। परंतु हाँ, वहाँ पे क्योंकि दूसरे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, तो सांप वहाँ पे आता ही नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ पे प्रे नहीं मिलता, उसको खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो साफ सफाई से सांप को परहेज है। तो आप अपने घर के इर्द गिर्द साफ सफाई रखें तो सांप वहां नहीं आएंगे।
1: जी, और मतलब कि ऐसा ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मतलब कि कोई कुछ का छिड़काव करे तो सांप आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ?
2: बिल्कुल साफ सफाई रखिए अपने घर के पास। किसी भी कीटनाशक से आप अपने घर के आसपास के घास को साफ रखिए और ब्लीचिंग पाउडर फैला लीजिए, तो वहाँ पे सांप आते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे और तरह के प्राणी भी नहीं आते जिनको वो खाने के लिए आते हैं। जनरली सांपों को कोई इच्छा नहीं है घरों के आने की, वो इसीलिए आते हैं जब उनको पक्षियों के अंडे या कोई चूहे या कोई मेंढक उनको वहाँ पे खाने को मिलते हैं।
1: जी जी बिल्कुल
2: जी
0: जी, प्रश्न पूछने के लिए शुक्रिया अमित जी। कार्यक्रम में हम अब एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, बाकी की
2: जी
0: बातें उसके बाद।
3: Step into the world of Nexa.
4: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
4: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
4: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
5: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
6: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa.
4: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
4: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
4: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
5: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
6: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa.
4: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
4: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
4: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम जनवाणी। आज के इस प्रोग्राम में हम बरसात में सांप ज़्यादा रूप से सक्रिय रहते हैं, इस बारे पर बात कर रहे हैं। और जिला वन विभाग से हमारे साथ विशेषज्ञ हैं अमित शर्मा जी। अमित जी, कार्यक्रम में अब आगे एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहूँगी। बरसात में जब भी आपके पास किसी का मैसेज आता है, कॉल आती है कि सांप निकला है या रेस्क्यू करना है, कुछ भी किसी भी तरह का, तो क्या कार्य रहता है वन विभाग का, किस तरह से वन विभाग काम करता है, और जो आपके कर्मचारी होते हैं जो रेस्क्यू के लिए जाते हैं, इनको किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है और पूरे मुस्तैदी के साथ ये लोग जाते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए।
2: बहुत कॉल आती हैं जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, स्नेक्स के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं और हमें काफ़ी कॉल्स आती हैं। तो हमारी एक RRT है सर्कल लेवल पे, उसको हम सूचित करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रिएक्शन टाइम होता है। जैसे कॉल आती है तो हमें रिएक्ट करने को, टीम को मूव करने में 15-20 मिनट आधा घंटा लगता है, दूरी पे तय डिपेंड करता है। तो हमारे पास हर क्षेत्र में हमने टीम्स गठित करी हुई हैं, लोगों को प्रशिक्षण दिया हुआ है, लोग स्नेक कैचर्स हैं हमारे पास। ये हमारे स्टेट लेवल का एक स्नेक कैचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो चाहे वो चंबा में है या शिमला में कोई स्नेक कैच करता है तो उसकी जानकारी हमसे साझा होती रहती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास टोंग्स हैं, गम बूट्स हैं, स्नेक के हेलमेट्स हैं जो हमारी टीम्स के लोग पहनते हैं, उनके पास सूट है, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से सांप को पकड़ पाते हैं। क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें करनी है हमें, तो सांप को भी बचाना है और जो परिवार उसमें ट्रॉमा में है उनको भी सुरक्षित बाहर निकालना है। तो हमारा एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम स्नेक को कैच करते हैं सेफली, बिना उसको कोई चोट पहुंचाए, और उसको उसके हैबिटेट में हम रिलीज करते हैं। जी
0: जी, एक और कॉलर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो,
7: हेलो, नमस्कार जी।
0: हाँ जी, नमस्ते जी, नाम बताएं।
7: मेरा नाम राजकुमार है
0: जी। राजकुमार जी,
7: नमस्ते। हाँ जी
2: जी, नमस्कार जी।
0: जी, अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं।
7: जैसे हम स्नेक बाइट हुआ तो हॉस्पिटल में जाते हैं ना जी,
2: जी,
7: तो वहाँ ऐसे पूछते हैं कि कौन से सांप ने काटा है, जैसे कि है, तो कई बार ऐसे अनजाने में काटा होता है, पता नहीं लगता, जैसे कि मेरी चाची जी को काटा था।
2: जी जी,
7: हाँ जी, तो गाँव के कुछ होते हैं जानकार आदमी, वो ले गए पहले हमें, वहाँ कुआला में कोई करता है
2: जी,
7: इसका जो मनी मुनी लगाते हैं।
2: जी जी,
7: फिर जब गाव ज्यादा हो गया फिर हम हॉस्पिटल में लेके गए जी।
2: जी देखिए,
7: वही तो हमारे से गलती
2: जी, तो मनी,
7: और हम भी घर पे नहीं थे तब, दूसरों का ज्ञान बांटने वाले आ जाते ना जी।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मनी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये मिथ है एक्चुअली। किसी प्रकार की सांप के पास कोई मनी नहीं होती है और उससे कोई जहर नहीं निकलता है। और झाड़ फूक करवाना एक आपकी आस्था का केंद्र हो सकता है, परंतु इससे बीमारी का इलाज नहीं है। कुछ समय पहले तक हो सकता है कि ऐसे कारणवश होते रहे होंगे कि मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती होगी, परंतु इस वर्ष से सरकार ने इसको February 2026 में इसको नोटिफाइएबल डिजीज़ घोषित किया है। तो अब हर स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नेक वेनम की जो डोजेज हैं वो उपलब्ध हैं। तो मेरा आग्रह है सभी नागरिकों से कि वो जब भी स्नेक बाइट हो तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाएँ, और ऐसा कोई नहीं पूछेगा बाप से कि किस स्नेक द्वारा काटा गया है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जब काट लेता है तो कोई एक्सपर्ट ही इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस स्नेक की ये बाइट है, ऐसे इसको आप नहीं कर पाएंगे, गांव वाले तो नहीं कर पाएंगे आइडेंटिफाई।
7: जी
2: जी,
7: धन्यवाद सर।
2: जी
0: जी, कॉल के लिए और प्रश्न पूछने के लिए आपका भी शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम कार्यक्रम पे आते हैं, और अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो कुछ भी फॉलो करें वो फैशन बन जाता है, ट्रेंड बन जाता है, तो ऐसी क्या 3-4 बातें हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है जो उनको पता होना चाहिए, क्योंकि यूथ अगर अवेयर है तो वो हर किसी को इस हर टॉपिक पर अवेयर कर सकता है।
2: जी बिल्कुल, बहुत सही है। एक श्रोता ने भी हमसे कहा कि सांप हमारे मित्र होते हैं। एक्चुअली जो भी सिस्टम हमारा इकोसिस्टम है, इसमें बहुत तरह के वन्य प्राणी, मनुष्य भी उसका हिस्सा है, क्रॉप्स भी उसका हिस्सा है, पेड़ पौधे भी उसका हिस्सा है, तो कोई भी जो वस्तु पर इसमें इकोसिस्टम में वो अन्यथा नहीं है, उसका कोई ना कोई मतलब है। तो सांप हमारे मित्र हैं। सबसे पहला है कि जागरूकता ही, अवेयरनेस इज द की टू एनीथिंग। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा युवाओं से कि सांपों के प्रति जितनी भी जागरूकता आप फैला सकते हैं फैलाएं। सांप किसी के दुश्मन नहीं है, हमारी थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, हम कूड़ा करकट रखते हैं, पशु पक्षियों के हम घोंसले बनने देते हैं घरों के आसपास, तो इसलिए सांप उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। अनाज का जो संग्रहण है वो हम घर के सोने वाली स्थानों के पास करते हैं, प्रॉपर नहीं करते हैं, तो वहाँ रोडेंट्स आते हैं। तो स्नेक सिर्फ चार ही वेनमस होते हैं, बाकी 10-12 तरह के स्नेक्स वेनमस नहीं होते हैं, नहीं तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अजगर तो बिल्कुल भी वेनमस नहीं होता है। एक रैट स्नेक बहुत कॉमन पाया जाता है, काले भूरे रंग का होता है, उसको भी लोग कोबरा समझ लेते हैं, जबकि वो रैट स्नेक होता है, वो चूहे ही खाते हैं, वो सिंपल वो साफ सफाई करते हैं हमारे घरों के आसपास। तो ऐसी जानकारियाँ हम भी साझा कर रहे हैं। अभी एक स्टेट लेवल की वर्कशॉप हुई है हमारी, तो ये क्योंकि अब ये नया टॉपिक है, इसमें जागरूकता अभी धीरे धीरे फैलेगी, हम कोशिश कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे इस पर और भी बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। तो युवाओं को यहाँ से यही मैसेज है कि सांपों के प्रति एक जागरूकता बढ़ाएं। सारे स्नेक वेनमस नहीं हैं, कुछ स्नेक्स वेनमस होते हैं, और जो वेनमस स्नेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान है, जो नॉन वेनमस होते हैं।
0: आप जैसे एक कभी श्रोता थे, उन्होंने पहले बात की कि हम फिनाइल छिड़कें या ऐसा कुछ, तो आपकी एक बात शायद मैंने भी पहली बार ये बात सुनी, और मुझे भी इस बात का पहली बार इल्म हुआ कि उस चीज से जीव जंतु जो है एक्स्ट्रा जिनको सांप खाने के लिए आते हैं वो मरते हैं, उस वजह से सांप नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे कुछ मिथ हैं जिन पर हमें भी क्लियरिटी नहीं है। एक और श्रोता इस बीच हमसे जुड़ने की कोशिश में है, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। हेलो,
8: हेलो,
0: हाँ जी, कार्यक्रम जनवाणी में स्वागत, नाम बता दें अपना।
8: जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
0: जी जांगड़े जी, अपना प्रश्न या कुछ है जिज्ञासा मन में आप पूछ सकते हैं।
8: जी, पूछना ये था कि जैसे घर में सुरक्षा की बात है सांपों से, तो क्या कोई ऐसा पौधा या जड़ी बूटी है जिसे हम घर में रख के उनसे बच सकते हैं?
2: जी, ऐसा कोई पौधा नहीं है, ये भी एक मिथ है जी।
8: अच्छा।
2: आप घर के बरसात आते ही पौधे घर के बाहर निकाल दें, आपको ठीक होगा, तो कि उनको थोड़ा ग्रोइंग सीजन है, वो ग्रो भी करते हैं पौधे, घर के अंदर बरसात में पौधे ना रखें तो बेहतर है।
8: अच्छा
2: जी,
8: जी धन्यवाद।
0: जी योगेश जी, कॉल के लिए शुक्रिया। बहुत से श्रोता लगातार कोशिश कर रहे हैं, और प्रादेशिक समाचारों से पहले हम श्रोताओं से जुड़ नहीं पाए, फोन लाइन में कुछ दिक्कत था और मौसम भी इसकी वजह हो सकता है शायद। एक और श्रोता लाइन पे हैं। हेलो,
9: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बता दीजिए।
9: मेरा नाम लविश है।
0: जी, एक बार नाम दोबारा बताएं।
9: लविश।
0: लविश, कहाँ से बात कर रहे हैं लविश?
9: मैं कांगड़ा से बात कर रहा हूँ।
0: जी, अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं, विषय पता है आपको?
9: हाँ जी।
0: जी पूछिए।
9: अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं?
2: जी देखिए, सांप काटने पे क्या करना चाहिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले तो उसको चूसने की और काटने की कोशिश ना करें, और कई बार हम बांधने की कोशिश करते हैं कि जहर पूरी बॉडी में ना फैले, तो वो ना बांधे, इससे हो सकता है कि आपको पूरा अंग काटना पड़ जाए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या करना चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले आप सूचित करें 108 पे, और स्वास्थ्य केंद्र के नज़दीक जाने की कोशिश करें, और एंटी स्नेक वेनम की यदि जरूरत है तो वो आपको तुरंत लेना पड़ेगा।
9: हाँ जी, ठीक है, थैंक यू।
0: जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। हमारे अनन्य मुन्ने श्रोता ज़्यादा जुड़ रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में और युवाओं में बहुत जागरूकता है इस विषय को लेकर के। इसी बात हम प्रश्न नहीं रख पा रहे हैं, श्रोता लगातार कॉल कर रहे हैं। हेलो,
10: हेलो, नमस्कार महोदया।
0: जी नमस्ते जी।
10: जी, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछ सकते हैं।
10: महोदया, मेरा प्रश्न है कि सर्पदंश के बाद हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसके लिए हम प्राथमिक उपचार में क्या कर सकते हैं?
2: देखिए, इसमें आप कोई एंटीसेप्टिक का प्रयोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, परंतु जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उसको काटना और चूसना तो बिल्कुल नहीं करना है, बांधना बिल्कुल नहीं है, उस जख्म को खुला रखें और तुरंत से तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाने की कोशिश करें, यही एक इसमें बचाव का उपाय है।
10: धन्यवाद
0: जी। सर, एक बात मेरे जहन में आई इनके प्रश्न के साथ ही कि जैसे कोई और जानवर हमें काटता है, मान लीजिए कुत्ते की हम बात करते हैं, तो कहा जाता है कि उस समय आप एकदम से उस स्थान को अच्छे से धो दें साबुन के साथ, तो ये इस स्थिति में भी हो सकता है सांप काटने की?
2: हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत आप उसको साफ कर सकते हैं
0: जी,
2: और साफ करने के बाद तुरंत आप स्वास्थ्य केंद्र की सलाह लें।
0: जी बिल्कुल, एक बार फिर गुजारिश करेंगे आपसे कि फ़ोन नंबर एक बार श्रोताओं के साथ फिर साझा करें, क्योंकि लोगों में जागरूकता का अभाव होने के साथ साथ नंबर ना होने पर कॉन्टैक्ट की सुविधा ना होने
2: जी,
0: पर।
2: तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो है 00419475 और हिंदी में 1800419745
0: जी बिल्कुल धन्यवाद आपका। एक और श्रोता है हमारे साथ जी, ये कॉल कर चुकी है। जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और बरसात के मौसम में क्यों सांप ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी हैं और किस तरह से हमें जागरूक रहना है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हेलो
11: जी।
0: हाँ जी नमस्ते जी, अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं नाम बताने के बाद।
11: सर मैडम जी, मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, गोपालपुर सरका घाट।
0: जी नागेंद्र जी, विशेषज्ञ से हमारे प्रश्न आप कर सकते हैं।
11: सर को भी नमस्कार। सर
2: नमस्कार जी।
11: महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सांप जिन जीवों के पीछे पीछे आते हैं
2: जी,
11: उनको कैसे घर में अंदर प्रवेश करने से रोका जाए, और सांपों के अलावा भी
2: जी,
11: जैसे बिच्छू हुआ, मकड़ी हुई, क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार के जूते में मकड़ी घुसी हुई थी जी, और वो मकड़ी इतनी खतरनाक थी कि पैर जो है वो 2-3 साल तक उसका इलाज हुआ। तो इस तरह के जीव और कौन कौन से हैं जिनसे हमें बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इन बाकी जीवों का जो प्राथमिक उपचार है वो क्या है, हो सकता है जी?
2: जी देखिए, जानकारी ही बचाव है। इसमें क्या है कि जैसे आपने जूते की बात की है, तो आजकल बरसात में जूते हम घर के बाहर खोलते हैं, तो सभी श्रोताओं को, आम नागरिकों को यही सलाह है कि सुबह जूते पहने तो वो उनको झाड़ के पहने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सांप से बचने के लिए भी एक हमारी SOP का हिस्सा है। दूसरा, आपने कहा कि जो जीव जंतु आप घर के पास आ जाते हैं, तो आपको नियमित रूप से घर के आसपास झाड़ियों या लंबी घास की सफाई करनी पड़ेगी। कूड़ा करकट और लकड़ी के ढेर वो हैं, वो घर से उचित दूरी पर होने चाहिए ताकि उनमें कोई किसी प्रकार के वन्य प्राणी ना बस सके। दरवाजे और
11: जी जी, घर में बिस्तर में जो घुस जाते हैं या जहां पर बैठने का स्थान है वहां पर पहुंच जाते हैं, इस तरह के बिच्छू और मकड़ी वगैरह इस तरह के जीव हैं।
2: जी जी बिल्कुल,
11: उसका पूछ रहा हूं सर मैं।
2: बिल्कुल सांप
11: तो दिखाई देता है
2: जी जी, बिच्छू भी आ जाते हैं घरों के आसपास, घरों में रहते हैं, घरों की दरारों में रहते हैं बिच्छू। तो आप अपने बिस्तर को नियमित रूप से डेली 2 बार उनको झाड़िए बिछाने से पहले और सोने से पहले। जी हाँ जी, तभी उन पे बैठिए। ये अनअवॉइडेबल है, और क्लीनिनेस ही इसका एक इशू है। आप घर के आसपास कोई डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करें, घास को पैदा ना होने दें, यही इसके बचाव के तरीके हैं।
11: जी जी धन्यवाद
2: जी।
0: जी जी अमित जी, हमारे पुराने बुजुर्ग जो हैं, हमारे जो माता पिता हैं, दादा दादी, ये कहते हैं कि ये धरती के जीव हैं और इन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो इस बात में सच्चाई है कि इन्हें रोका नहीं जा सकता,
2: नहीं,
0: लेकिन सुरक्षा हमारी खुद के हाथ में है,
2: हमारी अपनी जिम्मेदारी,
0: अवेयर हमें रहना है, जागरूक हमें रहना है। एक और श्रोता है, जल्दी से इनका प्रश्न ले लें। हेलो हेलो जी, इनसे बात नहीं हो पाई। अब हम प्रोग्राम को जो है वो समापन की ओर हैं, तो चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, इस विषय के संबंध में आप ऐसी क्या बात है ज़रूरी जो उनको जानना बेहद ज़रूरी है?
2: देखिए, हम वन विभाग से हैं, हमारा पारिस्थितिक तंत्र को इंटैक्ट रखना हमारी जिम्मेवारी है, यानी कि इकोसिस्टम सिस्टम जो है वो अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, इसमें सभी प्राणी सुरक्षित रहने चाहिए, चाहे वो वन्य प्राणी है चाहे वो मनुष्य है।
0: जी,
2: तो सर्पदंश के मामलों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं दोहराऊंगा, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि शयन कक्ष के आसपास अनाज का भंडार ना जमा करें, चूहों को ना पलने दें, अंधेरे में टॉर्च का प्रयोग करें
0: जी,
2: रात को आंगन में लाइट जला के रखें
0: जी, बिल्कुल,
2: जूते सुबह झाड़कर पहने, जमीन पर ना सोएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें यदि कर सकते हैं तो उसको गद्दे के नीचे टक इन कर लें, वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा ना करें, पेंट के जो आपका वेस्ट होता है, डब्बे होते हैं वो उनको जगह जगह ना फैलाएं, ये मच्छर भी पैदा करते हैं
0: जी, बिल्कुल,
2: और गम बूट्स पहन के घास काटें, और कृषि का कार्य करना है तो गम बूट पहन के करें, क्योंकि जितने भी सर्पदंश के मामले होते हैं 70% जो बाइट्स होती हैं वो टांगों पे या पैरों पे होती हैं
0: जी
2: जी, और दरवाजे खिड़कियों के नीचे से आजकल एक टेप आती है वो लगा लें ताकि सांपों को अंदर घुसने के लिए जगह ना मिले, और अंधविश्वास पे ना जाएं, झाड़ फूक ना करवाएं, और स्वास्थ्य केंद्र में ही जाएं, ये नोटिफाइबल डिसीज़ है 2026 से, तो वहाँ पे एंटी स्नेक वेनम अब उपलब्ध है, तो जानकारी ही बचाव कर सकती
0: बिल्कुल
2: है,
0: और हमारे हाथ में अपनी सुरक्षा स्वयं है। कार्यक्रम में आप आए और इतनी अच्छी जानकारी अपने श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए अमित शर्मा जी आपका बेहद शुक्रिया।
2: धन्यवाद, आभार
0: जी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनवाणी, और आज का ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ, तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। जी हाँ, सुबह के 10 बज चुके हैं और आगे का ये सफर आप तय करने जा रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा के साथ, जो लेकर आ गई है प्रोग्राम गीतों का कारवां।

जी हाँ, आज के इस सुहाने से सफर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कॉकटेल फिल्म के इस गीत के साथ। और आप लगातार यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर, सुनते रहिए कार्यक्रम गीतों का कारवां।

जी हाँ, गीतों का कारवा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, जहां हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं कुछ प्यारे प्यारे से म्यूजिकल नंबर्स।

0: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza. Now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats. New 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतों का कारवां। प्रोग्राम का नेक्स्ट म्यूजिकल नंबर आपके लिए प्ले कर रहे हैं फिल्म जग्गा जासूस से।

कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के नाच ले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो या

0: तो पार्टी शुरू हुई है। डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
4: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
3: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
4: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
4: Hurry, limited stock available.
3: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
5: Nexa.
6: जी हाँ, ट्यून इन है आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गीतों का कारवां। प्रोग्राम का नेक्स्ट सॉन्ग आपके लिए प्ले कर रहे हैं रॉय फिल्म से।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतों का कारवां। कार्यक्रम का आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से।

अपने काम काज करूं, तेरे गुस्से लेके ईगो का मसाज करूं, तेरा जुर्म का जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके एफआईआर में लॉज करूं। जानती है कि मैं तुझे पे चिढ़ता हूं, तू ये जानती है, तेरी आत्मा को मिलती ही शांति है, मुझे ऐसे

श्रोता, इसी गीत के साथ आज का गीतों का कारवां प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। ₹103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को है। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
1: उमंग कार्यक्रम के

सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व तो नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गाँव की सफाई में भाग लेता है। उस गाँव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गाँव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गाँव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गाँव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न आज की जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है,

0: की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
2: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
4: हाँ, 2000 साल पहले।
3: नानी माँ।
5: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
5: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
5: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
5: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
5: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
5: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
3: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
5: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
5: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए, आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
3: नाना जी, पुरातत्वेता किसे कहते हैं?
4: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
6: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
3: अच्छा,
6: पुराने या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
4: मामा जी।
7: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
3: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
7: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
7: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
4: अच्छा, भोज वृक्ष।
7: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
3: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
7: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी

0: गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा,
0: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion, Passepartout.

और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को मनाना तथा राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता प्रदान करना है। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस दौरान कुल 22 पुरस्कार बुनकरों को उनके योगदान के लिए प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों को निर्धन बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले

0: कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देशवासियों से कम एक हथकर कहा उत्पाद खरीदने, इससे संबंधित एक वीडियो बनाने और उस वीडियो को देश विदेश में साझा करने का आग्रह भी किया।
1: आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: प्रदेश सरकार ने एचपी शिवा परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एचपी शिवा परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक शिमला में आयोजित की गई। बागवानी मंत्री ने परियोजना के सभी घटकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और दूसरे चरण के कार्यों को समयबद्ध शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना के अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि इस परियोजना के प्रथम चरण के तहत निर्धारित 3000 हेक्टेयर लक्ष्य के अंतर्गत अब तक लगभग 2600 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा चुका है, जिसमें से 1543 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का कार्य सितंबर तक पूरा किया जाएगा। परियोजना के तहत 3000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कुल 331 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिससे लगभग 10,000 से अधिक किसान परिवार लाभ अनुभवित होंगे। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का दौर जारी है, जिससे राज्यों के अधिकांश स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा हो रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते 145 मार्ग अवरुद्ध हैं और 224 बिजली ट्रांसफार्मर जबकि 14 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। इसके अलावा इस मॉनसून सीजन के दौरान अब तक 142 लोग आपदा और सड़क दुर्घटना से अपनी जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग ने आज बिलासपुर और कांगड़ा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 12 अगस्त तक मॉनसून की वर्षा जारी रहने की संभावना है। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में 14 से 16 अगस्त तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव की तैयारियां तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने उत्सव से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए संशोधित अल्प अवधि निविदाएं आमंत्रित की हैं। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि 30 जुलाई को जारी निविदा सूचना तकनीकी त्रुटि के कारण निरस्त कर दी गई थी, जिसके बाद संशोधित सूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इच्छुक फर्मों और ठेकेदारों के लिए तकनीकी और वित्तीय बोली की अंतिम तिथि आज है। उन्होंने कहा कि विस्तृत जानकारी जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। 25 अगस्त से शुरू होने वाली मणिमहेश यात्रा को लेकर चंबा जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पिछले साल भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पैदल मार्ग को इस बार सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: हिमालय की गोद में बसे पवित्र मणिमहेश कैलाश की यात्रा हर साल लाखों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र रहती है। वर्ष 2025 के मानसून में हड़सर से धनशोर तक का पैदल मार्ग भारी बारिश से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी को देखते हुए इस बार प्रशासन ने क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त कर श्रद्धालुओं के लिए अन्य सुविधाएं जुटाने का कार्य भी तेज कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि मौसम विभाग की एडवाइजरी को ध्यान में रखकर ही यात्रा की योजना बनाएं, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामयी अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसीआर खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन एंड वी एक्सटेंड आवर हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन द 12th नेशनल हैंडलूम डे। The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognises the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union

0: Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Shri Pavitra Margarita, Shrimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom awardees and National Handloom awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the Award Selection Committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives, and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honorable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
1: Maraniya Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देश भर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
0: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement which launched on the 7th of August 1905 that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, we celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations, unquote the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now, will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी. इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी का विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025. आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है. इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी. विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की. उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है. आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है. सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है. देश भर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है. भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है. उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्व भर में अपनी महीन जरी बुनाई बुनाई के कारण प्रसिद्ध है. तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं. वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है. तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा, रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है. हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है. देश भर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं. आपको बता दें कि देश भर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं, वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है. वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है. थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे.
0: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड टुडे द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल कन्फर द संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स 2025 टू टू अवार्डीज, द कमला देवी चट्टोपाध्याय संत कबीर हैंडलूम अवार्ड 2025 टू वन अवार्डी एंड नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स 2025 टू 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to 2 awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to 2 awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to 2 awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And The Zawadis will also interact with the Honorable President, and in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
2: नमस्कार माननीय राष्ट्रपति जी एवं मंच पर विराजे विशिष्ट अतिथिगण, आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का शुभारंभ हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, members of the handloom fraternity, industry leaders, development partners, devyon aur sajjanon, main is 12ve rashtriya hathkarga divas par maniye rashtrapati ji ka swagat karti hu। main swagat karti hu desh ke sabhi बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल इन सेलिब्रेटिंग द 12th नेशनल हैंडलूम डे, एन ओकेजन दैट ऑनर्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज वीविंग कम्युनिटी एंड रीअफर्म्स नेशंस कलेक्टिव कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी। द हैंडलूम सेक्टर, अ कस्टोडियन ऑफ आर सिविलाइजेशनल हेरिटेज, ग्रामीण रोजगार का साधन, महिलाओं के आगे रखे हुए डेवलपमेंट का सूत्रधार और सस्टेनेबल प्रोडक्शन की धुरी, यह 35 लाख वीवर्स और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की द्विपक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
1: कब हेलो हेलो देख रहे हो।
2: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
0: 5 lakh weavers have been onboarded onto the India Handmade e-marketplace. Handloom Hearts, Cottage, Kunj have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale. Weave the future ke tahat mein artificial intelligence enabled design tools unke dwara banaye gaye traditional motifs ko reimagine karne ki cheshta aur global bazaar ke anurup taiyar kiye gaye designs, while digital cataloging and e-commerce platforms are connecting looms in remote villages directly to customers across the world. QR-based authentication would provide traceability, ensuring that the story, skill and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing सर्क्युलैरिटी, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, इनोवेटिव डिजाइन एंड द स्लो फैशन. आर कोलाबरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन सच एज UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct, and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress. With technology as an enabler and weavers at the heart of journey, it is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is is Rashtriya Hatkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere appreciation deti hu, rajya sarkaron ko bhi, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को भी, डेवलपमेंट पार्टनर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को भी, पर सबसे ज्यादा उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक मेमोरी के साथ जुड़ा रहता है. आई वंस अगेन वेलकम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम एंड एवरीबॉडी on this occasion of the 12th Handloom Day. Thank you. Jai Hind.
3: Thank you, ma'am, for this warm welcome address. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें. I request the Honorable Minister, श्री गिरिराज सिंह, to kindly felicitate the Honorable President.
2: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं. तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया.
3: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी. और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूँ कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें.
2: और अब 12वें राष्ट्रीय
3: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ.
2: माननीय राष्ट्रपति
3: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं, ओडिशा से श्री

0: हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबख्श श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारीमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम, हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right, and the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving, and the handloom product was Bichitpar Khadi Sari, and to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves, and the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sari. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Srimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sari. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Sri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Sri Kumaran Balaraman. Sri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari, Sri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari, Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sari, Sri Manzoor Ahmed Hajam and Sri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Sri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sari, Sri Abhinav Bashak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sari, Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sari, Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver for the

0: पट्टू साड़ी एंड श्री वनकर केशा भाई फ्रॉम उत्तर प्रदेश फॉर दी तंगलिया दुपट्टा एंड दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज कन्फरिंग दी वेरियस अवार्ड्स टू दी अवार्डीज ऑन दी नेशनल हैंडलूम डे 2025 एंड शी इज कन्फरिंग दी नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स 2025
1: मार्केटिंग ट्रेनिंग से ही अगले विजेता हैं तमिलनाडु से मेसर्स 31 कोविलवाड़ी हथकरघा बुनकर सहकारी समिति और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स सो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड लिस्ट आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ जड़ यानी रूट और धागा यानी थ्रेड मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with the special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all rupees 5 postal stamps, which depict the rich heritage.

0: is a proud moment for all our citizens who are involved with the handloom sector. And the Honorable President has also released two publications. The first one, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and another coffee table book, the Handloom Awards Book 2025. And as we mentioned today, that the Honorable President of India presented Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees from Odisha and Uttar Pradesh, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to Srimati Runima Chetia Choudhury.
1: All right, Assam. Time to get and one NRI task done. What?
0: And,
1: you thought I'm going out?
0: There were 12 awardees for the National Handloom Award 2025 from Tamil Nadu, which went jointly to Sri Annamalai Marimuthu and Sri Kumaran Balaraman for their Kanchipuram Kurvai silk sari. Sri Ganchi Venkatesh of Telangana bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat sari. Sri Murakala Nataraju of Andhra Pradesh got the Katan Tushar half and half sari. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani sari.
2: Yes, Gaurab ka vishay hai ki aaj aap is samaroh ki shobha badha rahi
0: hai. Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita.
2: सर्वोच्च संविधानिक पद तक आपकी प्रेरणादायी यात्रा, आपकी सादगी, संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। As we gather here today, we remember 7th of August 1905, when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance. More than a century later, under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, pichle barsh Rashtriya Hastshilp Puraskar Samaroh ke apne sambodhan mein aapne GI Tech ke mahatva par bhi vishesh bal diya tha aur अधिक से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई पहचान दिलाने का आह्वान किया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन पहले ही जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का सफल आयोजन किया गया, जिसने जीआई इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। द ट्रू क्रेडिट फॉर द एंड्यूरिंग लेगेसी एंड ग्रोइंग ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस बिलोंग फर्स्ट टू आवर जेनरेशन ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन्स हु हैव प्रिजर्व्ड दिस प्राइसलेस हेरिटेज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अंडर द कॉन्स्टेंट गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary Textile DC Handlooms and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for your craftsmanship, innovation and dedication. You continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. अंततः आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हमारे बुनकरों को सम्मान, पहचान और नए अवसर निरंतर मिलते रहे तथा हमारे बुनकरों द्वारा बुना गए प्रत्येक धागा विकसित भारत के सपने को और अधिक सशक्त करे। धन्यवाद। जय हिंद।
3: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को। माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
4: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहां आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14वें प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
0: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द Rashtrapati Bhavan Cultural Center. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Sri Giriraj Singh.
4: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh, aur jab uske baad 10 lakh aata to 35 lakh, आखिर क्यों? आज मैं कुछ नौजवान भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रशंसा, वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे, तो 1,90,000। और कॉटेज में लोग लेकर के जाते हैं, लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IIST है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IIST को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून छो था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे। लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया, 35 लाख आए। लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीवर भाई अपने बच्चों को IIST में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे। और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करे। इसलिए ये पीड़ा है, आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीभर यानी बिचौलिया, मास्टर बीभर से बीभर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCHC के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके, हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीभर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किए हैं, केवल MOU नहीं किए, अभी 100 बीभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा। AI टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो AI टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिव सागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 PPM पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 PPM पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि
5: बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
4: मेरा लक्ष्य है 5 लखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया।
6: मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुणाकार, डिजाइनर, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे,

0: इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जोधपुर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षित किया है। हथकोदा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकोदा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातियों समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकोदा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकोदा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। मैं हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के 2 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आजि आसीअछि नुआ जुगान्तर गांधी कहिछन्ति बोली बारबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सूता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है, इसीलिए जितने जमीन है, जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, फिर कितने साल हो गया है, लेकिन वो 2 पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तोहफे, तो यहीं पे तो शौक है। हम विदेशों में नजर क्यों डाले। देवियों और स्वजन, संत कबीर हथकोदा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हुए। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं सुबारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकोदा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकोदा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकोदा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही है,
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्रों वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवी और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवाओं, एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा।

0: मैं हदकोटा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शहसियार खान अपने साथ ही कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 होने को हैं और ये समय है प्यारी बहनों के कार्यक्रम सुनो सखी का।

कार्यक्रम सुनो सखी सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम में। जी सखियों, कैसी हैं आप और क्या कुछ चल रहा है इन दिनों खास? जी सखियों, सावन का महीना शुरू हो गया है और सखियों के हाथों में हरी हरी चूड़ियों के साथ सज गए होंगे मेहंदी के रंग। और हाँ सखियों, ये सिर्फ एक श्रृंगार नहीं है बल्कि उमंग, प्रेम और शुभता का प्रतीक भी है। जी हाँ, यही मेहंदी की खुशबू और हरी चूड़ियों की खनक सावन के इस महीने को और भी खास बना देती है। और सावन के झूलों को भला हम कैसे भूल सकते हैं? तो बारिश की सुहानी फुहार और मधुर हवाओं के साथ आनंद लें इसकी हर सौगात का। फिर चाहे वो चारों ओर झूमते हरे भरे पेड़ पौधे हों या फिर रिमझिम बरसती बारिश, बागों में झूलों की मस्ती हो या फिर गीत संगीत की मधुर धुने, सभी का अपना ही मज़ा है इन दिनों में। तो गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी हर दिन 12:30 पर। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हम पहुंच चुके हैं, चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और थोड़ी सी बातचीत पहले सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। बरसात का ये मौसम जितना सुहाना, जितना उजला और हरियाली से भरा होता है सखियों, उतना ही इस मौसम में हमें अपनी सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमेशा ताज़ा बना हुआ खाना ही हम सब ने खाना है। और हाँ,

उबाल कर पीना है या फिर फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। अच्छा, मक्खी मच्छर भी खूब पनपते हैं इन दिनों हमारे घर के आसपास, और शाम को ज़रा सी हमारी सखियां आस पड़ोस की सखियों के साथ बतियाने लगें, बातें करने लगे, तो मच्छरों की भी भिनभिनाहट शुरू हो जाती है। अब बातें हमारी कहाँ ख़त्म होने का नाम लेती हैं और मच्छर भी रुकने का नाम नहीं लेते। बिल्कुल सखियों, और मच्छरों को इसी बहाने हमें काटने का मौका मिल जाता है। तो अपने घर के आसपास बिल्कुल पानी न जमा होने दें, खाली बर्तन या टायर यहाँ वहाँ बिल्कुल न फेंकें इस मौसम में, और आसपास अगर हरी घास है, झाड़ियाँ हैं, तो उन्हें भी काट लें। अच्छा, रास्तों में इन दिनों बहुत फिसलन हो जाती है, तो उन्हें भी झाड़ू से अच्छे से रगड़ कर उनकी काई अच्छे से साफ़ कर दें, और ताकि वहाँ गिरने का डर ना रहे, आप वहाँ ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं सखियो, और हाँ, बारिश में अगर आप भीग गए हैं तो जल्दी से कपड़े बदल लें और सूखे कपड़े पहन लें, क्योंकि इस मौसम में संक्रमण होने का बहुत डर रहता है। और कपड़ों से याद आया सखियो, आज है 7 अगस्त, और आज के दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में। जी हाँ, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, हाथ से बुने कपड़ों का इस्तेमाल करने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया गया था आज ही के दिन। और देशवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर उस आंदोलन में भाग लिया और इस आंदोलन को सफल बनाया था। लेकिन वो मुहिम वहीं नहीं रुकी, बल्कि वर्ष 2015 में भारत सरकार ने पहली बार 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत भी की। जी हाँ, और बातें सखी इसी विषय पर जारी रहेंगी, और स्वदेशी सामान को अपनाना है हम सभी ने, इस विषय पर बातें होंगी। और क्योंकि आज है शुक्रवार और आज बात होती है उड़ान पर भी, जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम जानेंगे सखियो इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में कई पदक जीतकर भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया। तो कुल मिलाकर आज के कार्यक्रम में पूरी तरह से हैं जानकारियाँ, और साथ ही साथ गीत संगीत को हम कैसे भूल सकते हैं। तो सखियो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि गीत के बाद है बहुत सारी बातें। साथ ही साथ आप, हमने बताया कि हम बात करेंगे वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के बारे में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ गीत संगीत की तरफ अब कर लेते हैं रुख, और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
8: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
9: Step into the world of Nexa.
10: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
9: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
10: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
9: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
10: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
9: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
10: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
6: Nexa.
11: जी सखियों, गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो सखी सीमा। बातें हो रही हैं सखियों आज के दिन की। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं हम आज। और अपनी समृद्ध संस्कृति, अपने हस्तशिल्प, अपनी कलाकारी को सहेजने और उसे संरक्षित करने का ये दिन है। हमारे देश में सखियों लाखों बुनकर अपनी कला, मेहनत और कौशल से कई सुंदर परिधान और वस्त्र तैयार करते हैं और उनके इस योगदान को सम्मान देने और हथकरघा उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये दिन मनाया जाता है। और हम सभी को पूरा पूरा सम्मान देना है उनकी इस मेहनत को और उनके इस हुनर को खूब प्रोत्साहित करना है, ताकि देश की पारंपरिक कलाकारी विदेशों तक भी अपनी पहुंच बना सके। और ये सब कैसे होगा? जब हम उन वस्त्रों को खरीदेंगे, पहनेंगे। जी हाँ, बात करें सखियों हाथ के बने परिधानों की या वस्त्रों की, तो उनकी एक अलग ही शालीनता, शान और सुंदरता होती है। एक एक धागे को पिरोकर फिर उन्हें बुना जाता है और उसमें कई तरह की कलाकारी करके फिर जो परिधान तैयार होते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ होते हैं और हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं उन्हें खरीदने से। पहनने वाला भी खुद को उसमें बहुत ही स्पेशल महसूस करता है।

है क्योंकि उसमें सारा काम हाथ का होता है और बुनकरों की कलाकारी उसमें साफ दिखाई देती है सखियों। और हाथ से बने कपड़ों में बुनकर की कला के साथ साथ वहाँ की स्थानीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। इनका निर्माण कम ऊर्जा और में होता है और ये पर्यावरण के लिए बेहतर माने जाते हैं। ये कपड़े मजबूत, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं क्योंकि ये मशीन की बजाय हाथ से चलने वाले करघों पर बुने जाते हैं। ये गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में हल्की गर्माहट हमें प्रदान करते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं सखियों, साथ ही क्षेत्र विशेष की झलक उसमें दिखाई देती है। और सच ही कहा है सखियों किसी ने कि एक एक धागा जो जोड़कर कारीगर सपने बुनता है और अपने हुनर से भारत के गौरव को और आगे बढ़ाता है। तो कितनी मेहनत लगती है ना इन सारी चीज़ों को बनाने में, और इससे लाखों लोगों और लाखों कारीगरों को आजीविका का जो है वो मौका मिलता है सखियों। और ये आत्मनिर्भरता साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है। तो इन्हें खरीदें और अपनी अमूल्य विरासत को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। और याद रखें सखियों, जिस धागे में, जिस परिधान में कारीगर की मेहनत बसी हो वह वस्त्र नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की एक कहानी होती है, और इस कहानी को हम सभी ने मिलजुल कर आगे बढ़ाना है। और अब कार्यक्रम को बढ़ाना है हमने आगे। जी हाँ, अब बात हम करेंगे मणिपुर की मशहूर वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की। जी हाँ सखियो, 8 अगस्त 1994 को जन्मी मीराबाई चानू, जिनका पूरा नाम है सैखोम मीराबाई चानू, इन्होंने कई आर्थिक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की। वे 6 भाई बहनों में से सबसे छोटी हैं और वे महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतियोगिताओं में भाग लेती है। उनकी प्रेरणा रही हैं भारतीय वेट लिफ्टर कुंजा रानी देवी, और उन्होंने अपना प्रशिक्षण इम्फाल स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जी हाँ वहाँ पे प्रशिक्षण इन्होंने लिया और अपना अभ्यास शुरू किया। अब बातें इसी विषय पर और भी आगे होंगी और आज सखियाँ खूब खुद को प्रेरित महसूस भी करेंगी। और पहले जी हाँ एक प्यारा सा गीत सभी सखियों की नज़र, और उसके बाद आगे की बातचीत।

जी सखियो, देश तो हमारा रंगीला सजीला है ही, और भारत की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ इतना हुनर है, इतनी कला, इतना साहस है, और इसी साहस की मिसाल हैं हमारे कई खिलाड़ी जो अपनी मेहनत, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ना सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करते हैं बल्कि भारतवर्ष का परचम पूरे विश्व में फैलाते हैं और साथ ही साथ बढ़ाते हैं हमारे तिरंगे की शान भी। जी हाँ सखियो, उस समय वो ना किसी गांव के, ना किसी प्रदेश के होते हैं बल्कि उस समय वो होते हैं एक सच्चे भारतीय जो खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। और एक ऐसे ही महान खिलाड़ी की आज हम बात कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। जी हाँ, मीराबाई चानू, उनकी बात हो रही है। और उनकी उपलब्धियों की बात करें सखियो, तो वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता, 2017 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया उन्होंने। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें जो अभी अभी खत्म भी हुई हैं, तो शुरुआत करते हैं 2014 से, उन्होंने रजत पदक जीता वहां पर, 2018 में स्वर्ण पदक, 2022 में स्वर्ण पदक और 2026, जी हाँ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो राष्ट्रमंडल खेलें हुई हैं वहां भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपना चौथा पदक हासिल किया। बहुत ही गर्व की बात है सखियो, गौरव की बात है हम भारतवासियों के लिए। और उन्होंने वर्ष 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, 2018 में ही पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। और उनकी खेल की उपलब्धियों को देखते हुए मणिपुर पुलिस विभाग द्वारा उन्हें एडिशनल एसपी के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है सखियो। और कर्णव मल्लेश्वरी और कुंजा रानी देवी के नक्शे कदम पर चलते हुए भारोत्तोलक ने भारत को हर बड़े टूर्नामेंट में जो है वो शानदार प्रदर्शन किया है। और मीराबाई चानू भी इन्हें ही अपना जो है वो मानती हैं, एक तरह से वो रखती हैं कि यही उनकी आदर्श हैं, कर्णम मल्लेश्वरी और कुंजा रानी देवी।

उनके जीवन और उनका संघर्षपूर्ण सफ़र सखियों हमें बहुत सारी शिक्षा देता है, बहुत सीख देता है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, वहाँ पे साधन कितने हैं, बल्कि हमारे मन में एक तरह का एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं, हमने करना है और अपने देश के लिए करना है। बिल्कुल सखियों, और हाँ, आपसे कहना चाहेंगे सखियों कि अगर आपके बच्चों में इस तरह का हुनर है, बहुत टैलेंटेड हैं आजकल के बच्चे, तो उनमें अगर कोई ऐसा हुनर है, वो कोई खेल खेलते हैं या इसके अलावा कोई और भी उनके अंदर हुनर है, पेंटिंग का, कलाकारी का, गुनगुनाने का, डांस करने का, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें सखियों, और हमेशा अपने बच्चों के साथ रहें, सहयोग उन्हें करें। हम उन्हें कह सकती हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को आगे लेकर चलो और हम आपके साथ हैं। मतलब माता पिता बतौर अभिभावक हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को हर वो चीज़ करने का मौका दें जिसे वो करना चाहते हैं। जी हाँ, ताकि उनके मन में कोई मलाल ना रहे कि अरे मेरी तो रुचि इस क्षेत्र में थी लेकिन माता पिता के दबाव की वजह से मैं वो कर ही नहीं पाया या कर ही नहीं पाई। और बहुत ही प्रेरणा भरी पंक्तियाँ जी हाँ साझा करना चाहेंगे आपसे कि कमज़ोर नहीं होते कभी उनके इरादे, उनके हौसलों के आगे तूफान भी झुक जाते हैं, जो उठा लोहे के भारी वजन को भी लेते हैं, ऐसे जांबाज भारत की शान कहलाते हैं। तो भारत के शान की ही आज हमने बात की सखियों, और अब फिर से चलते चलते रुक करते हैं गीत संगीत की तरफ, एक और प्यारा सा गीत सभी सखियों के लिए।

जी सखियो, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और हाँ, सपनों को पूरा करने की भी। बस मन में उन्हें पूरा करने का विश्वास होना चाहिए और एक जिद होनी चाहिए, फिर रास्ते खुद बनते जाएंगे और मंजिल भी आपको जरूर मिलेगी। तो इसी आशा, इसी अभिलाषा के साथ थे कि हम सबके सपने पूरे होंगे, लेते हैं आपसे अनुमति। जी सखियो, बता दें सखियो, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित धीमान ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है डॉक्टर जतिंद्र पाल सिंह। अब अपनी रेडियो सखी सीमा को दीजिए अनुमति, अगले किसी कार्यक्रम में फिर से होगी आपसे मुलाकात, कुछ नई बातों, कुछ नए तरानों के साथ। इसी के साथ प्यारी सखियो, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर का एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किया जाएंगे। रिले के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: स्थानीय समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी। राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया था। इस बीच संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जो पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो
3: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: गीत के साथ हमने आपको संदेश भी सुना दिए हैं। श्रोताओं, आज हमारी जो इबारत यानी टेक्स्ट जो था वो बड़ी ही सरलता के साथ आपके सामने आज हमने रख दिया था। इसमें गाने पहचानना शायद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा होगा, है ना? सावन की झूले पड़े ये गीत अभी आपने सुना। सचमुच सावन का नाम आते ही मन जैसे अपने आप गुनगुनाने लगता है। झूलों की पिंगे हो, सखियों की हंसी ठिठोली हो, या फिर अपने प्रिय के आने की मीठी सी प्रतीक्षा, सावन हर एक एहसास को और भी गहरा बना देता है। इसलिए इस मौसम में प्रेम का भी तो महत्व अधिक बढ़ जाता है ना। प्रेम का रूप इस मौसम में और भी हरा हो जाता है, यानी खिल जाता है।

हरियाली छा जाती है। तो प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, मुस्कानों में, आंखों की चमक में और गीतों की मिठास में भी महसूस होने लगता है। सावन दिलों को एक दूसरे के और भी करीब ले आता है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले और भीगी भीगी रातों की बातें आज के सुरीले सफर से भाव विभोर करने वाली हैं, लेकिन बादल हैं कि बरसना ही नहीं चाहते। सुना है पुराने समय से मेघ मल्हार गाते थे और बादल बरस जाते थे। उम्मीद है कि आज की गीतावली यानी सुरीला सफर की गीतावली से ही आज सावन की फुहार बरसेगी, क्यों ना उन्हीं फुहारों का मजा लिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना होगा। और हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि आज सुरीला सफर का सफर झूले में बैठकर सुनने का दिल कर रहा है, लेकिन हमारे फ्लैट में झूला नहीं है और हमारे शहर जामनगर में बारिश भी नहीं हो रही। ओहो, तो रात भीगी भीगी कहाँ से नसीब होगी। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन आज दोपहर में विविध भारती पर सुरीले और सदाबहार गीतों की बारिश होगी, तो तय है कि सुरीले सफर में भीगने का बेसब्री से इन्हें इंतजार है। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गीतों को सुनते हुए ही सावन का आनंद आप उठा रहे हैं, ऐसे ही हमारी अगली श्रोता कहती है कि सावन आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फिर मन इस हरियाली से कैसे अछूता रह पाता। यह महीना ढेर सारी यादें लेकर आता है, झूले, चूड़ियाँ और मेहंदी के रंग में रंगा। यह मौसम तब और भी खिल उठता है जब प्रियतम आने को हो, गीतों की फुहार के साथ कुछ पिंगे झूले की उड़ा ले आती है। श्रोताओं, आप बताइए कि क्या आपके गांव, मोहल्ले या आंगन में भी कभी सावन के झूले पड़ते थे, या कि अब शहरों में भी आप ऐसा किया करते हैं। क्या आपको भी याद है कि वो दिन जब बारिश की पहली फुहार पड़ते ही मन यूं ही बाहर निकल जाने को मचल उठता था, या फिर कोई ऐसा गीत जिसे सुनते ही आपको अपना बचपन, अपनी सहेलियाँ, अपने कोई लोग, कोई बहुत खास पल याद आ जाता हो। तो ये सब हमें आप संदेश के माध्यम से बताइए। तो आइए सावन के महीने में आज के कार्यक्रम में अपने मन को टटोलते हुए खोलिए उन यादों का पिटारा। बता दीजिए कि आज का कौन सा गीत आपकी प्यारी याद को ताजा करता है। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं।

अब देखिए, सावन की भीगी भीगी रातें प्रेम की दिल में दस्तक दे रही हैं। ये दस्तक सुनकर किसी का साथ याद आने लगता है, तो कभी किसी से हुई प्यारी सी मुलाकात याद हो आती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं, आज का सुरीला सफर ऐसे लग रहा है जैसे किसी खुली गाड़ी में हवाओं के साथ बातें करते हुए फर्राटा भरते हुए चले जा रहे हों। गानों के मुखड़ों को इबारत के रूप में हमारे सामने रख दिया गया है, इसमें दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, गाने सबके सामने रखे हुए हैं। बस इन गानों के बजने का इंतज़ार था। जी बिल्कुल, ये गाने हमने आपको सुनाना शुरू कर दिया है। इतना ज़रूर है कि सभी गाने सभी के पसंद के होंगे, तो आज गाने सुनने का दिन है। बिल्कुल।

तो आज गाने सुनने का दिन है। बिल्कुल, तो आज गाने सुनने का दिन है। बिल्कुल, दिनों से सुरीला सफर में सावन छाया हुआ है, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सावन सभी मौसम का राजा है। गली की चादर ओढ़ ली है ऐसा लगता है, और ऐसे में हम जैसे संगीत प्रेमियों के मन में सावन के कई गीत उमड़ने लगते हैं। तो इन्होंने एक गीत लिखा है, सावन का मेरा प्रिय गीत है, रिमझिम के गीत सावन गाए। क्या बात है, अभी तो ये गीत हमने आपको सुनवाया। एक श्रोता कहते हैं कि लगता है कि घटाओं से सजे मेघालय में रिमझिम फुहारों वाली गीतों की मालाओं से हो रही है आज हमारी मुलाकात। पिया मिलन की उत्कंठा और मनमीत की प्रतीक्षा करने वाले गीतों की चमकीली बूंदें इबारत में दिखाई दे रही हैं, और उन्होंने कुछ गीत भी हमें लिखे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेमिका कह रही है, सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, लेकिन

उत्कंठा और मनमीत की प्रतीक्षा करने वाले गीतों की चमकीली बूंदें इबारत में दिखाई दे रही हैं और उन्होंने कुछ गीत भी हमें लिखे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेमिका कह रही है, सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, लेकिन

कि तुम एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई का एहसास दिल को बहुत

0: इसी गीत के साथ लेते हैं कुछ संदेश।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हाय हाय,
0: श्रोताओं, प्रेम की कोमल अनुभूतियों को हम शब्दों में कह नहीं पाते, पर ये गीत सब कुछ कह जाते हैं। गीत कितना अच्छा माध्यम है ना प्रेम को व्यक्त करने का। अच्छा बताइए, अगर गीत ना होते तो कैसा होता जीवन, प्रेम का इजहार कैसे होता? और सावन के मौसम में गीत ही नहीं सुने सुनाए जाते तो कैसा होता सावन, ये बताते चलिए। फिलहाल हम लेते हैं हमारे श्रोताओं के संदेश। एक श्रोता कहते हैं कि आज अनूठे पद्यांश को पिया मिलन की आस के साथ पिरोया गया है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जब पिया मिलन की आस जागती है तो मन का हर कोना पुलकित हो उठता है। प्रकृति जहां ठंडी बूंदों से भीग रही होती है, वहीं प्रेमी का मन मिलन की उत्कंठा में सुलग रहा होता है। बरसती बूंदों में छुपा है सदियों का इंतजार, बाहर सावन की फुहार है, भीतर विरह की आग। ये जरारी रातें और ये रिमझिम सा सावन, सावन तो आ गया, बस तुम रह गए हो जाने कहां, क्या बात है। ऐसे ही अगले श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत एक गजब इबारत है। कभी सावन से पिया अनजान है, तो कभी भीगी रात, तो कभी सूखी फुलवारी। इस तरह से उन्होंने हमारी ही इबारत को अपने शब्दों में पिरोया है। और हमारे और श्रोता जो कह रहे हैं कि दिलचस्प संदेशों से सजे विविध भारती के सब

से लोकप्रिय सुपरहिट सुरीला सफर कार्यक्रम ये चल रहा है और एक श्रोता ने इतनी प्यारी बात कही है कि मेरी प्यारी प्यारी विविध भारती को किसी की नज़र ना लगे चश्मे बद्दूर, यूं तो हमने लाख चैनल सुने हैं विविध भारती सा नहीं सुना, ये बारिश तो सिर्फ 4 महीने होगी, क्या बात है। बस सावन के गीत आपको विविध भारती पर सुनने को मिलते ही रहेंगे, है ना।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन का मौसम बड़ा अनोखा होता है। बाहर पेड़ों पर झूले पड़ते हैं तो मन भी यादों और ख्वाबों के झूलों पर झूलने लगता है। कभी कोई अपना याद आता है, कभी दर्पण में कोई सपना मुस्कुरा देता है। दिल बार बार उसी का नाम लेता है जिससे शायद अभी तक कुछ कहा भी नहीं गया। यही तो पुराने फिल्मी गीतों की खूबसूरती है। वे हमारे मन की उन अनकही भावनाओं को भी सुर दे देते हैं जिन्हें हम अक्सर शब्दों में नहीं कह पाते। क्या बात है।

हमारे कुछ श्रोता ये भी कह रहे हैं कि रिमझिम की फुहार बरस रही है और रिमझिम के बीच में अपनी कविता आपसे साझा करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप कविता पढ़ेंगे। अच्छा, तो कविता तो बहुत बड़ी है, हम शायद इसे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इसे देख जरूर रहे हैं।

विविध भारती का सुरीला सफर है, कैसा सफर, हर कोई जाना है, हर कोई माना है, होती रहती है बातें, प्यार मोहब्बत भरी, मौसम पहाड़ों नदियों से भरी, बातें जब होती लगती हैं खूब सुंदर न्यारी, होती है बड़ी सुहानी सुरीली, सुनकर दिल को होती है तसल्ली, ये श्रोता कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि गांव हमारा बहुत सूखा पड़ा था, फिर कुछ ही दिनों में बरसात की फुहार आई और फिर जमकर बरसा सावन, फिर हम मन हमारा खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा आया सावन झूम के, फिर सावन के झूले पड़े और झूले देखकर होंठ गुनगुनाने लगे कि सावन के झूलों ने मुझको पुकारा, मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बात। लेते हैं अब अगला गीत, भोला भाला इस फिल्म से लता मंगेशकर ने और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत, सुनिए ये गीत।

हमारी एक श्रोता कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज की इबारत का मुख्य रंग सावन, प्यार, ख्वाब, दिल और मिलन है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और एक श्रोता कहते हैं कि इस वक्त हम बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप में हैं। और ठीक है, आप ये हमें बता रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि बारिश में भीगना हमारे लिए कष्टकारी होता है, इसलिए हम तो वर्षा का आनंद घर के अंदर बैठकर ही लेते हैं, विशेषकर अपने टेरेस के झूले पर गर्मा गर्म चाय और पकोड़ों के साथ। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि हमें तो कॉलेज का समय याद आता है, हम सब दोस्त कैंटीन में गर्म गर्म समोसे पैटीज खाया करते थे। ओह, एक और श्रोता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो पापा यही सब सॉन्ग सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा उठता था, लेकिन आज बड़ा होने के बाद यही सब सॉन्ग मुझे दिल को सुकून दे रहे हैं। क्या बात कही है आपने। पुराने गीत इतने सुकून भरे होते हैं, सुनना ज़रूर चाहिए आज की जनरेशन को भी। देखिए, हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि बचपन में हमारे गांव से थोड़ी दूर हरा भरा वन था और वहां शिवजी का मंदिर था, वहां सावन की अमावस को मेला लगता था, वहां वड़ का बहुत ही विशाल वृक्ष था, वड़ की लंबी डाली लटकी हुई रहती थी, उसी डाली को लटक कर हम झूला झूलते थे और बहुत ही आनंद आता था। बिल्कुल आता रहा होगा। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की पहली बारिश में जवान होते थे तब भीगने का मज़ा और ही था, लेकिन अब इस उम्र में अंगूर खट्टे हैं, सिर्फ याद ही काफ़ी है। हमारे एक श्रोता और कहते हैं कि सावन की फुहार और प्रेम का संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच का सबसे कोमल समझौता है। बारिश धरती को सींचती है और प्रेम दिल को, दोनों ही बिना मांगे आते हैं और जब चले जाते हैं तो कुछ गीला कुछ यादगार छोड़ जाते हैं। सावन, अगर बारिश हो तो भीगने से मत डरना, और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना है ना, लेकिन अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर उम्र ज़्यादा है तो और छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा हमें देखभाल करनी ही होती है, थोड़ा बच के ही भीगना होगा, है ना। श्रोता ने ये कहा था कि और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना, क्योंकि सावन का असली जादू यही है कि वह सब कुछ गीला कर देता है और गीले दिल सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। एक और श्रोता कहती है कि धड़कनों में बस गया है सांवरा, रूह में तन्हाई की राहें सजाया है, हर लम्हा उसकी यादों का पहला, दिल ने ख्वाबों में उसे अपना बनाया है, अब तो शाम सवेरे बस एक ही दुआ, प्यार के सफर में भी वो ही मिले। एक और श्रोता कहते हैं कि बाहर चल रही सावन की बरसात, साथ में विविध भारती का संग, हाथ में गरम कॉफी का

भांति मुंबई की मेरी दीवानगी और आज सुरीला सफ़र प्रोग्राम, और मैं हूँ कश्मीर में, क्या बात है। वहीं से आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए बिल्कुल, और वहाँ पर है सुहाना मौसम, ऐसा भी वो बता रहे हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सफ़ेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ, मैं वो गुजरे ज़माने की एक राह हूँ, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूँ। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत चश्मे बद्दूर फिल्म से, येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज़ में, इंदु जैन का लिखा गीत, राजकमल का संगीत।

हमारे एक श्रोता ने कहा कि बहुत सालों बाद भोला भाला फिल्म का गाना सुना, क्या बात है, यह VBS पर ही संभव है। शुक्रिया। अब सुनिए ये गाना।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि पूजा जी, हमारे भोपाल में तो केवल बादल छाए हुए हैं, पानी तो सावन के महीने में भी तरसा रहा है, अब तो केवल विविध भारती का ही सहारा है। एक श्रोता कहते हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी की सुरीली आवाज़ में मेरी पसंद का एक सदाबहार बेमिसाल गीत यहाँ बज गया है। उस समय हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कार्यक्रम में अधिकतर गीत हमारी पसंद के आ जाते हैं। जी धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन आते ही मन मयूर नाचने लगता है, फूलों पर पानी की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे शबनम की बूंदें गिर रही हैं। ऐसे माहौल में काम करने में भी दिल नहीं लगता, दिल करता है बस ऐसे मौसम को देखते ही रहें। एक और श्रोता कहती हैं कि मौसम की पहली बारिश अपने साथ पुरानी स्मृतियों की एक पूरी किताब खोल देती है। वह चेहरा, वह बातें और उनके साथ बिताए हुए पल जो वक्त की धूल के नीचे छिप गए थे, अचानक धुले धुले से साफ नजर आने लगते हैं। बूंदों की छुअन उस स्पर्श की याद दिलाती है जो कभी रूह को छू गया था। यह याद कितनी गहरी होती है कि इंसान चाहकर भी इससे मुंह नहीं मोड़ पाता। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, सदियों से सावन को प्रेम, विरह और मिलन का महीना माना गया है। हम चाहे अपनी मसरूफियतों में कितने भी आगे निकल चुके हों, दिल के किसी कोने में आज भी वह मोहब्बत और उसकी कसक उतनी ही महफूज है। श्रोता कहती हैं कि सावन की ठंडी बौछारें जब जिस्म को छूती है तो रूह में सुलगती हुई किसी की यादें ताज़ा हो जाती हैं।

बरसात का यह हसीन मौसम जहां एक तरफ प्यार की बेताबी बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ महबूब की दूरी सीने में एक मीठा मगर गहरा दर्द जगा देती है। एक और श्रोता कहते हैं कि बहुत सुंदर गीत स्वामी फिल्म से, क्या बात है, आपको अच्छा लगा, ये बहुत ही बढ़िया है। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के महीने में ऐसा लगता है जैसे कहीं मोर नाच रहे हो, पंछी चहचहा रहे हो। ऐसे मौसम में दिल करता है कि कागज़ और कलम उठाएं और कोई कविता लिखें। ठंडी ठंडी हवाओं में कलम रुकती ही नहीं है। क्या बात। एक और श्रोता कहते हैं कि 50 बरस पहले की बात होगी, गांव में झूले पर झूलते सब मस्ती में कजरी गा रहे थे कि झूला टूटा और दूसरी ओर बैठे दो लोग कीचड़ में गिरे, जो पहचान भी नहीं आ रहे थे, और इस ओर के तीन लोग नीचे इधर गिरे और चोटिल हो गए। सावन का मजा किरकिरा हो गया। लीजिए, अब आपको सुनवा देते हैं अगला गीत। समाधि फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में मजदूर सुल्तानपुरी के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म अनजाना का यह रिमझिम के गीत सावन गीत में सावन की रिमझिम और दिल की तड़प एक साथ बोलती है, राजेंद्र कुमार की सादगी और बबीता की मासूम अदा इसे और भी खूबसूरत बना देती है। जी हाँ, प्यार जब बरसात में भीगता है तो हर बूंद एक गीत बनकर बन जाती है, वही बूंद रिमझिम के गीत सावन गायिका जादू बिखेर देती है। बिल्कुल सही। एक और श्रोता कहते हैं कि इस बरसात के मौसम में तो चाय और पकौड़े का स्वाद बढ़ जाता है और आपके प्रोग्राम सुरीला सफ़र का स्वाद भी और बढ़ जाता है। दिल करता है कि गीत आते ही रहें और सावन की झड़ी लगी हुई रहे। एक और श्रोता कहते हैं कि पुरानी फिल्मों में सावन पर बने गाने बहुत ही सुमधुर होते थे। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। सावन के गीतों में सबसे पसंदीदा गाना उनका आया आया सावन झूम के। एक श्रोता कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि मैं और मेरा भाई स्कूल से लौट रहे थे और बहुत जोर की बरसात आ गई, वह पूरी सड़कों में पानी पानी भर गया और हमें घर आने में बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, बरसात के मौसम में ये दिक्कतें तो हमें देखना ही होती। एक श्रोता कहते हैं कि हमारे नागपुर में पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई लेकिन अब रुक गई है तो फिर से गर्मी बढ़ गई है। एक श्रोता कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूं अगर मैं कोमा में चला जाऊं और कुछ भी सुनाई ना पड़े तो मुझे लगता है यही वो गाना है माँ सरस्वती का होगा जो मुझे होश मिला सकता है। अरे अरे, ऐसे तो नहीं कहिए। एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म जुर्माना का यह गीत सावन के झूले पड़े तुम चले आओ आनंद बख्शी द्वारा रचित, और जी हाँ, ये तो हमने आपको बता दिया है, एक अमर गीत है जो राग पहाड़ी पर आधारित है और यह गीत सावन के मौसम में प्रेयसी के अकेलेपन और अपने प्रेमी के प्रति अघात प्रेम व पुकार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है। लता दीदी की सुरीली आवाज़ में मेरी पसंद का सदाबहार बेहतरीन गीत शानदार है। बहुत धन्यवाद इस गीत को सुनवाने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद संदेश के लिए। तुम चले आओ, तुम जो चले गए हो तो होगी बड़ी खराबी, यादों की महफिल कार्यक्रम में इस मज़ेदार गीत के लिए आप सभी का धन्यवाद। विविध भारती को ये धन्यवाद दे रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं ये मौसम आया है इतने सालों में, आजा कि खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में, फिल्म का जय ओम प्रकाश जी के सुपरहिट गाने आज उन्होंने सुने यादों की महफिल में और उन्हें बड़ा आनंद आया। एक और श्रोता कहते हैं कि पिया का नाम आते ही सांसों में एक सरगम सी बजने लगती है, बेचैनी और सुकून का मिला जुला रूप इस पल को जादुई बनाता है, पल के बिछाए रास्ते को देखना और हर आहट पर यह सोचना कि प्रिय आ गया है इस रुत की सबसे हसीन सच्चाई है। जब सावन की यह रुत आती है तो प्रकृति भी श्रृंगार करती है, ठंडी हवाएं, खिले हुए फूल और फिजा का नशा प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। लंबे इंतजार के बाद प्रेमी से मिलने की घड़ी जब पास आती है तो मन का कोना कोना खुशी से झूम उठता है। क्या बात है, इसी बात पे आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। आरोप फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में माया गोविंद का लिखा गीत है, भूपेन हजारिका का संगीत बद्ध किया।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की जो बात समझी है इन्होंने कि चल रहे ऋतुचक्र के अनुरूप सावन की ही बातें हैं, और इस दृष्टिकोण से आज की इबारत सराहनीय है ऐसा वो कह रहे हैं। साथ ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि बहुत दिनों के एक नई उम्मीद है सावन के, दिल की बात घर से दूर, प्यार की मंजिल ये मोहब्बत की आवाज़, हर गीत मोती की माला, सभी सॉन्ग कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं उनकी, ऐसा वो बता रहे हैं।

हमारी श्रोता कह रही है कि आज की सुंदर सी इबारत, सावन की रूमानी फुहारों, झूलों की मस्ती, किसी अपने की याद, आंखों में बसे सपनों और प्रेम के अटूट विश्वास का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। इसमें प्रकृति और प्रेम का ऐसा संगम है जो हर दिल को भीगा भीगा सा एहसास देते हैं। और उन्होंने ये गीत लिखा है, अब आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

श्रोताओं, समय की कमी रहते हुए कार्यक्रम अब समाप्त होने की ओर है, तो ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं गीतों के साथ आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। लेती हूँ आपसे विदा। जी नमस्कार।

भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 40वीं कड़ी।

0: बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु पूरे देश में सभाएं होने लगी। इस आंदोलन की अधिकतर सभाओं का आरंभ या समापन वंदे मातरम से होने लगा। पढ़े लिखे लोग जब भी आपस में मिलते तो नमस्कार की जगह वंदे मातरम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते। वंदे मातरम इस गीत की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसका दुष्प्रचार भी हुआ। वंदे मातरम की तुलना अन्य भाषाओं की कविता से करके उसमें कमियां दिखाने के प्रयास तत्कालीन कुछ लेखकों और संपादकों ने किए।
1: ১৯০৭ में लंदन के टाइम्स समाचार पत्र में हैदराबाद के दक्खन पोस्ट के संपादक सिद्धमोहन मित्र ने वंदे मातरम के बारे में ऐसा ही भ्रमित करने वाला लेख लिखा था। फ्रांस के राष्ट्रीय गीत ला मार्सलेज का वंदे मातरम बंगाली संस्करण है और इसमें कुछ उत्तेजक शब्द जोड़कर लोगों को प्रेरित करने का कवि का प्रयास है, ऐसा उस लेख में लिखा गया था। इस लेख का भारत में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य समीक्षकों ने भी खंडन किया। पायोनियर के अंक में लिखा था, कविता की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से वंदे मातरम गीत अधिक अच्छा है। ला मार्सलेज में कवि का हृदय दिखाई नहीं देता, परंतु वंदे मातरम में कवि ने अपनी आत्मा समर्पित की है। फ्रांस और हिंदुस्तान के इन राष्ट्रीय गीतों में बहुत बड़ा अंतर है। वंदे मातरम एक प्रार्थना है। इसमें स्वदेश के आधार पर आद्य शक्ति को मां कहकर संबोधित किया गया है। मातृभूमि को केवल मां कहकर कवि रुका नहीं है, बल्कि मां के समान ही प्रेम और श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाया है। जो गीत देशवासियों को अपनी जन्मभूमि से मां के समान प्रेम करना सिखाता है, उस गीत की तुलना ला मार्सलेज गीत से कैसे हो सकती है।
0: वंदे मातरम शब्द अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच गए। वंदे मातरम शब्द का उच्चारण करते हुए फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बाद अनेक क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए शहादत स्वीकार करने लगे। लंदन में ही वीर सावरकर, सेनापति बापट, निरंजन पाल, मदन लाल ढींगरा जैसे युवा क्रांतिकारियों के गुरु तुल्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा और मादाम कामा के साथ थे। अंग्रेजों की राजधानी लंदन में कर्जन वाइली नामक अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां चलाने वाले मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को पेंटन विले जेल में फांसी दी गई, पर उससे पहले उनका लिखा हुआ पत्र अंग्रेजों ने छुपा दिया था। सावरकर और ज्ञानचंद वर्मा ने भाग दौड़ करके फांसी से एक दिन पहले डेली न्यूज समाचार पत्र में मदन लाल ढींगरा का चैलेंज नामक पत्र छपवाया और लंदन में सामान्य जनता से लेकर पुलिस तक सभी को धक्का लगा। इस पत्र की भाषा अत्यंत ओजस्वी तो थी ही, पर इस पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था। शब्दों के कारण केवल दो दिनों में इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कई बड़े समाचार पत्रों ने इस पत्र को प्रसिद्धि दी, जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारियों का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों का दमन और वंदे मातरम शब्द दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। मदन लाल ढींगरा लिखते हैं,
1: आत्म बलिदान कैसे करना चाहिए, यही एकमात्र शिक्षा इस समय हिंदुस्तान में देने योग्य है। यह शिक्षा देने का एक ही मार्ग है, स्वयं का बलिदान करना। इस भावना से प्रेरित होकर मैं प्राणार्पण कर रहा हूं और मुझे अपने बलिदान पर गर्व है। इस भारत माता की संतान के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो और इसी पवित्र कार्य में मेरा शरीर, मेरा जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो जाए, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। भारतीय स्वाधीनता का पक्ष विजयी हो, मानव जाति के कल्याण और ईश्वर के वैभव का समर्थन करने वाला स्वतंत्र भारतवर्ष संसार में आत्म तेज से चमकने लगे, तब तक मेरे जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। वंदे मातरम।
0: १९१४ के आसपास प्रथम विश्व युद्ध की हवाएं चलने लगी। उन दिनों कोमा गातामारू जहाज का किस्सा विशेष रूप से चर्चित रहा। इस जहाज के ध्वज पर वंदे मातरम, सत श्री अकाल और अल्लाह अकबर शब्द अंकित थे। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में 360 भारतीय यात्रियों को लेकर कोमा गातामारू नामक जापानी जहाज 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से रवाना हुआ। 23 मई को ये जहाज जापान होते हुए कनाडा पहुंचा। ब्रिटिश सरकार के इशारों पर नाचने वाली कनाडा सरकार ने इस जहाज को बंदरगाह पर लगाने की अनुमति नहीं दी। 15 दिनों तक समुद्र में खड़े इस जहाज पर अन्न जल समाप्त हो गया। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। आगे वहां से निकला जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और वहां हुई मुठभेड़ में 18 यात्री शहीद हो गए। इस पूरे प्रकरण के मुख्य नेता बाबा गुरुदत्त सिंह को वंदे मातरम शब्द अत्यंत प्रिय थे, इसीलिए इस जहाज के ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द थे।
1: विदेशों में बसे भारतीयों में वंदे मातरम शब्द के प्रति अत्यंत आदर भाव उत्पन्न हो गया था। वंदे मातरम के प्रति उनका प्रेम कई प्रसंगों से व्यक्त होता था। इसी दौरान वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने आयरलैंड में वंदे मातरम मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। अफ्रीका में 22 अक्टूबर 1912 को गोपाल कृष्ण गोखले केप टाउन और फिर जोहान्सबर्ग गए थे। हर जगह उनका वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ।
0: दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। उस समय इस षड्यंत्र के सूत्रधार लाला हरदयाल बर्कले में थे। ये समाचार सुनने पर लाला हरदयाल सहित भारतीय छात्रों ने एक सभा की, जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। एक साल बाद इस घटना की वर्षगांठ पर 23 दिसंबर 1913 को लाला हरदयाल ने भारतीयों के लिए एक पर्चा बांटा, जिसका नाम था शाबाश। इस पर्चे में लिखा था, गुलामों, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करोगे? हम कहते हैं बम की सहायता से। बम विद्रोह का संदेश वाहक है। शस्त्र की पूजा करो, शस्त्रों का अभिवादन करो। उस पर्चे के पहले भाग में बम बनाने की प्रक्रिया, दूसरे में उसकी उपयोगिता और तीसरे में बम की प्रार्थना दी गई थी। पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था।
1: केवल कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में ही नहीं, बल्कि जहां भारतीय नागरिक मुस्लिम देशों में थे, वहां भी वंदे मातरम पहुंच गया। विश्व यात्री रामनाथ विश्वास ने उस समय घटी घटनाओं को लिखा है। तुर्किस्तान में अदम नामक स्थान की मस्जिद पर तुर्की भाषा में वंदे मातरम शब्द लिखे थे, साथ ही हिंदुस्तान का झंडा भी था। शुक्रवार को सफाई के बाद नमाज के समय वंदे मातरम का उच्चारण होता था। वियना में अमेरिकन एसोसिएशन में रामनाथ के भाषण के बाद हिंदी लोगों ने वंदे मातरम का जय जयकार किया। बगदाद, तेहरान, इराक में हिंदी लोगों का वंदे मातरम के प्रति प्रेम उन्होंने अनुभव किया। भारत के बाहर वंदे मातरम पहुंच तो गया ही था, परंतु भारत में बंगाल विभाजन को लेकर जनमानस में भड़की आग अभी भी जल ही रही थी। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 40वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम चलते।

0: द्विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए द्विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: 2:15 का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले पहले सगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
3: वेलकम तो है ये के साथ जो जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
4: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहल की हैं।
4: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
1: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
4: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
1: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
5: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
6: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के भाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
7: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
8: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोकिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हरा। कराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरजू फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है। इस गीत की रचना की है हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है

0: आ रहे हैं महबूबा विविध भारती पर सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम चलते रहे पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओ केटिको बर्फ बदन है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
4: निकला ओ गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
5: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, भीगी रात फिल्म का गीत है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं रोशन का संगीत।

अपना देश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आनंद बख्शी की रचना है आरजी बर्मन की बनाई धुन पर।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर है,
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत दो बदन फिल्म से, आशा भोसले की आवाज है, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत।

0: शीघ्र पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से
3: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
3: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
3: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सावन की घटा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में, SH बिहारी के बोल OP नैयर का संगीत।

0: द्विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: सदाबहार नगमे की ये आखिरी प्रस्तुति है। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है आया सावन झूम के। इस फिल्म से आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इसी गीत के साथ सदाबहार नग में ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और जिला की चिट्ठी रिले किए जाएंगे।

0: कि इस क्षेत्र ने देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला, संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम को भी बढ़ावा दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है। उन्होंने बताया कि देश के हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश के शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए नए शहर विकसित करने को लेकर वित्तीय सहायता व तकनीकी सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ व पंचकुला की सीमा पर सटे हिमाचल के क्षेत्र में प्रस्तावित नए शहर के लिए साझा आधारभूत ढांचे के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की तर्ज पर हिमाचल में भी नया शहर विकसित करने की आवश्यकता है। शहरी विकास मंत्री ने अर्बन चैलेंज फंड के 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जल्द मंजूरी प्रदान करने का भी केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत शेष 64 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि भी हिमाचल को जल्द जारी की जाए। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूज्ड वाटर मैनेजमेंट कंपोनेंट में हिमाचल के 76 स्थानीय शहरी निकायों में से केवल 31 को ही शामिल किया गया है। उन्होंने अन्य शहरी निकायों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया। प्रदेश विधानसभा के 21 अगस्त से शिमला में शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शिमला में उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को सत्र के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा। पठानिया ने बताया कि 3 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान सदन की कुल 10 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न नियमों के तहत सदस्यों से मिल रहे प्रस्तावों व प्रश्नों को जवाब के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।
2: वर्तमान विधानसभा 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र जो है, जिसको मॉनसून सत्र कहा जाता है, उसका आयोजन जो है 21 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा और इसमें 10 सीटिंग होंगी। जो विधानसभा का अधिकार क्षेत्र है, जो हमारा स्पीकर अधिकार क्षेत्र है, कानून व्यवस्था को बना के रखने के लिए जो है उसका प्रयोग किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से कानून का न बिगड़े और सत्र का संचालन बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो। सभी सामान्य सदस्यों को अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने चुनाव क्षेत्रों के और हिमाचल प्रदेश के जो विषय हैं उन पर जो है अंदर चर्चा में वो भाग ले।
0: प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान अभी तक सामान्य से 6% कम वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और चंबा सहित कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। मूसलाधार वर्षा से प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। पिछले 24 घंटों में कांगड़ा और मंडी में सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी रहने के आसार हैं। इसके अलावा 10 और 11 अगस्त को राज्य के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए पेश है सामयिक चर्चा। विषय है गोबर्धन योजना, स्वच्छता, ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि की नई दिशा। वाचिक स्वर राजकुमारी चंदेल का है।
0: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोबर्धन योजना को मंजूरी प्रदान की है। ये निर्णय केवल एक नई सरकारी योजना की शुरुआत नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में स्वच्छता, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये योजना देश में कचरे से संपदा अर्थात वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को साकार करने का प्रयास है। गोवर्धन का पूरा नाम गल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है। इसका मुख्य उद्देश्य गोबर, कृषि अवशेष, रसोई के जैविक कचरे और अन्य बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें उपयोगी संसाधनों में बदलना है। योजना के माध्यम से बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, जैविक खाद और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के साथ साथ ऊर्जा और आय के नए स्रोत विकसित होंगे। भारत विश्व के सबसे बड़े पशुधन वाले देशों में शामिल है। देश में प्रतिदिन करोड़ों टन गोबर और बड़ी मात्रा में जैविक कचरा उत्पन्न होता है। केंद्र की मोदी सरकार की गोबर्धन योजना इसी चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास करती है। ये अपशिष्ट को बोझ नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन के रूप में देखने की सोच को बढ़ावा देती है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण स्वच्छता को मिलेगा। गांवों में खुले स्थानों पर गोबर और जैविक कचरे का ढेर लगना एक सामान्य समस्या रही है। इससे गंदगी फैलती है और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। यदि यही गोबर और जैविक कचरा वैज्ञानिक ढंग से एकत्र कर बायोगैस संयंत्रों में उपयोग किया जाए तो गांव अधिक स्वच्छ बन सकते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार संभव होगा। कृषि क्षेत्र के लिए भी ये योजना विशेष महत्व रखती है। ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, जल धारण क्षमता में सुधार करने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में सहायक है। जैविक खाद के बढ़ते उपयोग से प्राकृतिक खेती और टिकाऊ कृषि प्रणाली को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों की आय में वृद्धि की संभावना बनेगी। ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का माध्यम भी बनेगी। बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, संचालन, जैविक खाद के उत्पादन और विपणन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां और निजी उद्यमी भी इस क्षेत्र में भागीदारी कर सकेंगे। इससे ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश में बायोगैस उत्पादन को नई रफ्तार देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये योजना वर्ष 2026-27 से वर्ष 2035-36 तक लागू रहेगी। योजना के तहत बायोगैस खरीद की गारंटी दी जाएगी ताकि प्लांट लगाने वालों को बाजार की चिंता न रहे। बायोगैस के लिए तय और स्थिर कीमत मिलेगी। नए प्लांट लगाने पर पूंजी सहायता यानी सब्सिडी दी जाएगी। गैस की सप्लाई बढ़ाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा MSME और दूसरे उद्यमियों को आसान लोन और लोन गारंटी की सुविधा दी जाएगी। जिला स्तर पर बायोगैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना के जरिए देश का कचरा अब देश की तरक्की का ईंधन बनेगा। गांव स्वच्छ ऊर्जा के बड़े केंद्र बनेंगे और किसान देश की ऊर्जा सुरक्षा में पहले से कहीं बड़ी भूमिका निभाएंगे। खुले में पड़े गोबर और जैविक कचरे से मीथेन गैस निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। इस मीथेन का उपयोग बायोगैस उत्पादन में करने से न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। इस प्रकार योजना जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में भी सहायक सिद्ध होगी। ये पहल स्वच्छ भारत मिशन, प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और परिपत्र अर्थव्यवस्था जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ भी जुड़ी हुई है। गोबर्धन योजना इसी सिद्धांत पर आधारित है जिसमें अपशिष्ट को उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। हालांकि योजना की सफलता प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अंबिका विजय मारवाड़ी बोल रही हूँ। मैं शिरपुर जैन से बोल रही हूँ।
0: अंबिका जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ,
0: अंबिका जी, आपके और क्या क्या शौक हैं?
1: मैं रसोड़ा चलाती दीदी,
0: ये क्या होता है?
1: रसोड़ा चलाती, उसे खाना पकाना, रोटी पकाती,
0: अच्छा
1: दाल सब्जी चावल खाने को 10-20 आदमी आते खाने को,
0: जी जी जी
1: वो चलाती।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरा बेटा, मैं, तीन जन है। हम बेटी की शादी हो गई।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप कभी मेले घूमने गई हैं?
1: मेले घूमने में जाती ना, वो नांदेड़ जाती,
0: अंबिका जी, ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: चंदा मामा से प्यारा वो करते हुए पिक्चर में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी।
0: शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, क्या आपने कभी सावन के मेलों को जा कर के देखा है?
1: जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जैसे हम छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी। सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। पर जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते हैं।
0: तो आप झूलती थी झूला?
1: जी जी मैं बहुत छोटी थी।
0: अच्छा, तो ये बताइए और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके?
1: जी मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रही हैं और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो
1: जी
0: बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: बदरा

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुड़े।
0: प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी हैं? तो गृहिणी हैं तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें?
1: काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है।
0: जी। अच्छा, ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियाँ पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में?
1: सावन के मौसम में हरी।
0: हरी? वाह, क्या बात है। यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियाँ, है ना, बालों में गजरा।
1: हाँ,
0: किस तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना?
1: मोगरा।
0: क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना।
1: हाँ,
0: और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं?
1: गुलाब, मोगरा, जाई।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी?
1: हाँ,
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: हम आपके हैं कौन में से हम आपके हैं कौन, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए प्रगति जी, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, हम आपके हैं कौन फिल्म से।
2: हाँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: शांति भाई बोल रही हूँ भोपाल से। सहेली
0: शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब प्रॉब्लम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है।
0: अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए कि बचपन में आपने कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला ना,
0: जी
1: बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो ही बता ही नहीं सकते।
0: आपने अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला, तो उसकी कुछ यादें हो तो बताइए आप मुझे।
1: बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें, कि हरी हरी चूड़ियाँ, लाल हरी चूड़ियाँ दिखती हैं, है ना?
1: दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनती थी, क्योंकि हरी हरी टाइम रहती है ना,
0: जी
1: तो हरियाली में वो ही अच्छी लगती थी।
0: अच्छा ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: झिल मिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है।
0: शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

0: अंतराल के बाद सखियों से बातें करने आ गई है मंजरी वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सुचिका सुबह तटानी बोल रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है? आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी,
0: जी
1: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: आप रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना,
0: क्या बात
1: तो
0: है, मतलब 1970s
1: रेडियो
0: की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी।
1: बिल्कुल, रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना और स्कूल जाना वापस आना, अलग अलग पिक्चरों का गाना सुनना, रात तक देखना, और वो लाइव क्रिकेट मैच का जो टेलीकास्ट होता था और
0: जी
1: 26 जनवरी का परेड,
0: जी
1: तो एक बहुत प्यारी, मतलब एक अटैचमेंट तरीके का है रेडियो से।
0: जी तो बहुत अच्छी सी यादें आपने साझा करी। और ये बताइए कि सुचिका जी, हम बात करने वाले हैं आज सावन के बारे में, कि सावन का जो मौसम चल रहा है तो इसमें आप क्या क्या खास तरह से करती हैं घर में तैयारियां, और जो सावन के जो मेले लगते हैं ना, उनको देखा है आपने कभी जा करके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुड़िया का मेला तो बचपन में, मतलब ये तो हमारे घर के बाहर ही, हम लखनऊ के बिलोंग करते हैं नरही से,
0: जी
1: तो बहुत बड़ा हमारे घर के बाहर ही गुड़िया का मेला लगता है, और वो अनरसी की गोली तो मतलब बचपन को तरोताजा कर देती है, आज भी बिल्कुल सब कुछ नया नया लगता है, और वो झूले पेंगे मिट्टी के खिलौने, सौंधी सौंधी खुशबू, और मेरे बाबा का चीजें लाना,
0: जी
1: क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में से है
0: जी
1: तो बहुत मजा आता था, इतने भाई बहन, वो बात ही अलग है, छत पे सोना, बारिश में खेलना,
0: क्या
1: अलग
0: बात।
1: ही मजा है वो।
0: और सावन में जो झूला झूलते हैं उसकी भी बड़ी यादें, जब पैंग दिया जाता है, पैंग दे देकर झूलते हैं, तो आपने कभी इस
1: बिल्कुल
0: तरह के झूलों को झूला है कि पैंग दी हो आपने भर भर के?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क होता था, हम लोग जितनी भी सहेलियां होती थी झूला लगाते थे, और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना उसको, फूलों से

0: जाकर और एक एक करके पेंग लगाते थे इस तरीके से, और भीत बाहर होती थी, मम्मी मेरी माँ लोग चाची लोग उन लोग सब हरी हरी चूड़ियाँ और साड़ी तैयार, और सब सावन का सेज हरा लाल, मतलब एक अलग ही छवि उभर के आती है।
1: क्या बात है, आपने इतनी अच्छी सी बातें करी, जो सावन के झूले की बात करी आपने कि फूलों से सजा होता था, तो बिल्कुल राधा और कृष्ण का वो झूला याद आ गया है ना।
0: कुछ कुछ वैसे ही हम लोग करते थे एक्चुअली,
1: जी
0: सारी बदमाश लड़की लड़कियां सब भाई बहन मिलके मोहल्लों के बच्चे जो खेलते थे, क्योंकि
1: जी
0: तब तो ये गैजेट्स और ये सब तो होता नहीं था, तो वही आनंद और कि आज शाम को मिलेंगे तो आज, और सावन में जो ब्रेक होता था हम लोग की छुट्टियां भी होती थी, तो बहुत मजा। और रेनी डे तो शायद आपने भी इंजॉय किया
1: जी
0: होगा,
1: बिल्कुल, हमने भी
0: मतलब
1: इंजॉय किया है रेनी डे का।
0: बिल्कुल, तो बहुत मतलब आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि मैं तो बोलती ही जा सकती हूँ।
1: अच्छा भी लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें, इतनी यादें ताज़ा कर रही हैं। तो जो सावन में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, हरियाली तीज, कदरी तीज, और बाद में रक्षाबंधन आता है, तो भाई बहन से जुड़ा ये प्यारा सा त्यौहार होता है, तो आप क्या तैयारी करती हैं, अभी से तैयारी करेंगी या जब रक्षाबंधन आएगा उसके पहले कुछ दिन पहले तैयारी करेंगी, अपने हाथ से राखी बनाएंगी भाई के लिए या
0: बिल्कुल
1: खरीदेंगी?
0: बिल्कुल, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे जॉइंट फैमिली में कजन शब्द बोलना मना है, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया, तो हम
1: जी
0: लोग टोटल 13 भाई बहने हैं
1: क्या बात है।
0: और आप सोच नहीं सकते। और मेरी एक लौती बुआ होती थी, वो दिल्ली से आती थी, पूरा पकवान बनता था मतलब, और हम लोग सब साड़ी पहनते थे और खाना बनता था, पूरा सजाया जाता था,
1: क्या
0: राखियां
1: बात है
0: हमने रेशम के धागों से, वो गाना नहीं है रेशम
1: जी,
0: के धागों से,
1: हाँ जी,
0: तो उसी में प्यार पिरो के भाइयों के लिए हम सारी बहने बनाते थे राखियां,
1: जी
0: और हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी थे वो कंपटीशन करते थे कि किसका बेस्ट राखी होगा, तो
1: क्या
0: उसको
1: बात है,
0: प्राइज मिलता था।
1: क्या बात है।
0: हम लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मिनी कॉन्सर्ट भी करते थे, आप यकीन नहीं करोगे, डांस होता था, प्रोग्राम होता था, बच्चों हम लोग सारे जो चिल्लर पार्टी होते थे।
1: क्या बात है, यानी कि बचपन की आपने इतनी सारी यादें ताज़ा कर दी कि मेरी भी यादें ताज़ा हो गई हैं। अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सब लोग एक साथ होते हैं परिवार में, जब बड़ा
0: बिल्कुल,
1: परिवार होता है तो उसकी रौनक ही अलग होती है।
0: बहुत बहुत
1: जी
0: मजा आता था, क्योंकि हमारे बाबा लोग 7 भाई और 1 बहन, तो आप सोच सकती है क्या धमाल होता होगा।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि आजकल तो परिवार सिमटते से जा रहे हैं, छोटे से होते
0: हाँ,
1: जा रहे हैं। सुचिका जी ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
0: मेरे घर में ससुराल में सास ससुर हैं
1: जी
0: और देवर देवरानी, लोग अभी दिल्ली में मतलब वो भी गाजियाबाद की तरफ ही रहते हैं, तो बस हम लोग 4-5 जो ना, मेरा बेटा है वो अभी लॉ
1: जी
0: कर चुका है, अभी अभी हाल ही में कृपा है ठाकुर जी की नौकरी पे लगा है,
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: बस छोटा सा प्यारा सा परिवार है।
1: बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: मैं सावन के महीने में सजना को याद ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता,
1: नहीं बिल्कुल,
0: और
1: आप याद
0: सावन है
1: कीजिए
0: तो सजना भी है और उनके लिए निखरना भी है,
1: जी।
0: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अनुरोध करूंगी, सजना है मुझे साजन के लिए ये वाला गाना आप चला दीजिए।
1: सजना है मुझे सजना के लिए, फिल्म सौदागर का ये गाना। तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, आप ऐसे ही अपने सजना के लिए सजती संवरती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

0: लगती है और सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: चाकोली है, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है
0: जी,
1: तो वो बहुत ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है।
0: ये खाना जो बनाने का शौक है, ये आपको बचपन से था या बाद में आपको हुआ?
1: अरे नहीं, मैं तो किस उम्र से खाना बना रही हूँ मेरे को ये भी नहीं मालूम। मेरी मम्मी बचपन से ही काम करवाती थी तो वो आदत पड़ गया था, और खाना खाने का शौक और बनाने का बहुत ज्यादा शौक था तो वो फिर हमारी हॉबी बन गई।
0: क्या बात है, यानी देखिए
1: बड़े हो गए हैं उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है और भगवान की दया है कि बहुत अच्छा चल रहा है।
0: देखिए माता पिता का जो भी सिखाया हुआ होता है ना काम, बच्चों को जो बचपन में सिखाते हैं वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि शादी होगी दूसरे घर जाएंगी तो वहाँ पर उनको किसी काम में दिक्कत ना हो, तो देखिए उनका जो सिखाया हुआ था आपको हुनर, वो आज आपके काम आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
1: काम आ रहा है ये चीज।
0: तो आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी?
1: नहीं, बच्चे तो भी पढ़ रहे हैं पर हाँ अभी जैसे गुजिया का टाइम है तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है क्योंकि उसमें जब तक दो तीन लोग नहीं लगेंगे ना तो नहीं हो पाता। एक एक दिन में 10 किलो 15 किलो बनाना रहता है।
0: बिल्कुल
1: दो
0: सही बात है।
1: हाँ दो लेडीज भी हैं तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं।
0: क्या बात है, यानी सावन में आपने गुझियों की याद दिला दी, महक हमारे यहाँ तक आ गई है उड़ करके। अर्चना जी बड़ा अच्छा लग रहा है, और
1: मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग की आवाज इतनी मीठी लगती है ना
0: जी
1: कि मैं क्या बोलूँ, ये पूछिए मत।
0: धन्यवाद। अच्छा ये बताइए अर्चना जी, सावन की कौन कौन सी यादें हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगी?
1: ऐसे तो बहुत सारी हैं पर हमको अपने शादी के बाद का पहला सावन याद है, जब मैं मायके गई थी अपने हाथ से भाई को राखी बांधी थी। 30 साल शादी को हो गए उसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिला तो वो यादगार रहा है मेरे लिए।
0: जी आप फिर से वापस अपने मायके जाइए और अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी यादें होती हैं, है ना?
1: वो यादें होती हैं पर अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को देखना है तो हो नहीं पाता है।
0: जी बिल्कुल हम समझ सकते हैं ये चीज। तो सावन में जब मेले लगते हैं, वो मेले आपने जाकर देखे हैं?
1: बहुत देखे हैं, बहुत मजा आता है। उसके लिए तो स्पेशली समय निकालती हूँ कि नहीं मेरे को जाना है, उसमें जाने से ऐसा लगता है मेरा बचपना आ गया वापिस।
0: और वहां पर
1: और कुछ नहीं रहता था तो मेला देखना है, कोई भी मेला लगाओ कहीं भी लगाओ तो जाना है देखने, मेला देखने जाना है, प्रदर्शनी देखने जाना है। वो जो झूले वगैरह रहते थे, झूलने का जो आनंद आता था ना, वो सब चीजें तो अब याद करके ही रह जाते हैं पर लगता है तो मैं तो जरूर जाती हूँ।
0: अच्छा मेले में जो दुकानें लगती है वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं जो घरों में उपयोग की जाती, बच्चों के खिलौने होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, हार माले चूड़ियाँ सब होती हैं, तो आप उनमें से क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ख़रीदा करती थी उस समय?
1: मैं किचन का सामान ज़्यादा देखती थी, ध्यान उसी पे ज़्यादा जाता
0: क्या
1: था।
0: क्या बात है, हम समझ सकते हैं कि आपका शौक बचपन से जो किचन में आपने काम किया है तो
1: में, हाँ
0: जी
1: क्या है क्या नहीं, अच्छा इस बार ये चीज़ नया आया है पकड़कर। वो जो पहले तो बड़े बड़े हम लोग के यहाँ अदरक वगैरह घिसने वाले आते थे, अब ये छोटे छोटे मिलने लगे हैं तो वो सारी चीज़ें जैसे मेले में दिखती थी ना तो तुरंत खरीदते थे। और अभी भी किसी भी मेले में जाएंगे तो कुछ मैं नहीं देखूंगी, सबसे पहले गुजिया का सांचा ढूंढती हूँ।
0: क्या बात है, यानी डिजाइनर सांचे आप ढूंढती हैं गुजिया बनाने के लिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है।
0: बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी आपसे बातें करके, खूब सारी यादें ताजा हो गई। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: बरसात मूवी का, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है मौसम के अनुरूप, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है? अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं पूनम जैन बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूनम जी, आपके कौन कौन से शौक हैं?
1: म्यूजिक मेरा सबसे पहला शौक है। मुझे
0: जी
1: गाने गाना सुनना बहुत पसंद है, साथ में मुझे कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है।
0: क्या बात है। और पूनम जी, आपको रेडियो सुनना पसंद है?
1: जी बिल्कुल, बहुत पसंद है।
0: और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे दो बेटे हैं, दोनों लॉयर हैं।
0: जी
1: मेरे हस्बैंड और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, एक बिटिया है, मेरी डॉटर इन लॉ।
0: जी, क्या बात है। पूनम जी, ये बताइए, जो सावन का महीना है, इसकी यादें आपके जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं?
1: सावन का महीना मेरे लिए सिर्फ महीना नहीं है, ये भावनाओं का त्योहार है।
0: जी
1: चारों तरफ हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत और भगवान शिव की भक्ति।
0: जी
1: सावन के आते ही मन में उमंग भर जाती है। जैसे अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले सावन में हमेशा प्रेयर जाती थी, वहाँ पर सबके साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता था।
0: और जयपुर में किस तरह से सावन आप सभी सखियां मिलकर के मनाती हैं?
1: सावन का महत्व मतलब झूले की तरह है, झूला सावन की पहचान है। कहते हैं ना, झूला झूलने से मन हल्का होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है,
0: जी।
1: पेड़ों पर रंगीन झूले और उन पर सहेलियों के साथ गाना, यही तो सावन की खूबसूरती है।
0: और वहाँ की क्या खास डिश होती है जयपुर की?
1: खरीद के तो जैसे हम घेवर लाते हैं, यहाँ के फेमस है सावन में घेवर और गुलाब जामुन, पूरे
0: जी
1: खीरे बनती है और घर में हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। सावन मतलब दाल बाटी चूरमा का बहुत है जयपुर के अंदर ना, दाल
0: जी
1: बाटी चूरमा बहुत फेमस।
0: दाल बाटी चूरमा जो है, जो बाटी होती है, वो तो कई तरह की बनती है ना?
1: हाँ, मसाले वाली बाटी बनती है, आलू की बाटी बनती है, सादा बाटी बनती है।
0: जी, और मेवे वाली बाटी भी तो बनती है वहां पर?
1: हाँ बिल्कुल, अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल के, मेवा डाल के वो भी बनती है।
0: जी पूनम जी, आपने कभी वहां पर जो मेले लगते हैं, वहां पर जाके आपने देखा, एंजॉय किया सखियों संग?
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है,
0: जी
1: बहुत भव्य सवारी निकलती है, बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह। तो उसको हम देखने जाते हैं सिटी में।
0: क्या बात है, उसकी खूबसूरती देखते बनती होगी, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए पूनम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: ये गीत सुना दीजिए, अक्के सजन सावन में, ये मुझे बहुत पसंद है।
0: पूनम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: लड़कियों से बातें करते हुए वक्त तो पंख लगाकर उड़ गया और दे गया बहुत सारी यादें। चलते चलते आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फ़ोन नंबर है 4002462, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 40024662, एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए। फ़ोन नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह।
2: स्वाति की सुबह हमेशा जैसी सुंदर थी। जाते हुए भादों ने उसे सुबह की सैर पर भिगो दिया था। उसके पसंदीदा मौसम के आखिरी कुछ दिन बचे थे जिसे वो अगली बारिश तक खुद में समेट लेना चाहती थी। भीगी भीगी स्वाति जब अपने कॉलोनी के अंदर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइम देखकर वो हड़बड़ा गई। बच्चों की बस आने वाली होगी, देर हो गई आज, सोचती हुई वो घर के अंदर घुसी और सीधे ही किचन में जाकर बच्चों का टिफिन पैक करने लगी। कान्हा और वृंदा को अभिनव ने पहले ही तैयार कर दिया था। टिफिन भी उसकी महाराजिन मंजू बना चुकी थी। हर काम अपने समय से हो चुका था, लेकिन माँ का दिल है ना, जब तक खुद काम में हाथ न लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ता। बच्चों को भेजकर वो भी गुनगुनाती हुई नहाने चल पड़ी। टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना था। क्या बात है, आज तो कोई मूड में लग रहा है। आईने के आगे संवरती स्वाति के गीले बालों में तौलिया बंधा था। उसे गुनगुनाते देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। अभी देर हो जाएगी यार, छोड़ो मुझे। अभिनव को प्यार से झिड़कती हुई स्वाति के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी, 10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हाँ भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है, चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं। अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चली जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही बुरी खबर से सामना हुआ। बीती रात उसका एक सहकर्मी आलोक नशे की हालत में ऑफिस की बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। ऑफिस में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था, सबके बयान लिए जा रहे थे। मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिन भर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया, आखिर कौन था उसके साथ, उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे।

0: इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हार।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूँ। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही, तो तुम्हें याद हूँ मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूँ। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठी

साथियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई तुम्हारी और अभिनय की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे, इतना ही मानवता के लिए काफी है। भाई मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा, वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता। निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हाँ किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब यह जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निविश को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है, उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, ना अपने परिवार में, ना ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं? निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातूनी हूं। मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती? स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया। आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया।

उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे यह एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था, वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेल जोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

0: दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक? ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां, क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो, ये संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो। तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो। निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है। यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है। मैं अभिनव को धोखा नहीं दे सकती, बात को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा। प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या? नहीं ना, क्या ही फायदा तब इतना सोचने का। निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था। फिर भी ये ठीक नहीं है, किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया। पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया, मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं। निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया, बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम कर दिया। जब भी वो मिलने को कहता, स्वाति कोई न कोई बहाना बना देती। वो ऑफिस तक आ जाता, तब भी वो मीटिंग का बहाना करके उससे नहीं मिलती। ऐसा नहीं था कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ निमिष दुखी था, दुखी तो वो खुद भी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की, कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता मानता है, मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा नीरस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध, कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क, कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानि से भर गई और उसने निमिष से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया। सुनहरी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेंत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे।
1: क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई?
2: हट, शादी के कई साल बीत जाएं तो यही होता है, स्पेशल फील कराने की कोशिश का अंजाम तो देखो जरा।
0: उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया।
3: सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। जीवन में रस बना रहे उसके लिए प्यार में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं।
0: देर रात तक दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। घर और नौकरी की भागदौड़ में दोनों को आपस में बातें करने का मौका कम मिलता था। हालांकि स्वाति अपने हिस्से की बात रोज अभिनव से बोल ही देती थी, लेकिन वो एक तरफा संवाद था। अभिनव ने डिसाइड किया कि अब से हर शाम वो दोनों साथ में कॉफी पिएंगे और हर हफ्ते में कम से कम एक बार साथ में अपने दफ्तर से अलग कहीं जाएंगे। स्वाति को अब हल्का महसूस हो रहा था। हवा में घुले संगीत के साथ उसके जहन में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में, दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है। काश हम दोस्त

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इजहार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर वन बना दिया था। न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर वन रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने यह जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीन

प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर है। आप अपने साथ किसे ले जाएंगे? राकेश ने हिम्मत करके पूछा। क्यों? निमिष ने आंखें उचका के पूछा। सर, मुझे ले चलिएगा ना, इस बार आप किसी को वाउचर दीजिएगा मत। राकेश ने फिर से खुशामद की। तुम क्या मेरे जीवन साथी बनने की फिराक में हो? निमिष ने हंसते हुए उसकी मौज ली। नहीं सर, आप कपल वाले ट्रिप, कॉन्सर्ट टिकट, मूवी और डिनर वाउचर सबको बांट देते हैं। इस बार चलिए ना, साथ चलते हैं। राकेश ने अपनी अर्जी का कारण स्पष्ट किया। जाओ अपना काम करो, निमिष ने उसे ठेल के वापस उसके डेस्क पर भेज दिया। राकेश को उसके दो तीन साथियों ने घेर लिया। अबे तुम क्यों जाओगे? हम जाएंगे, एक ने कहा। अरे भाई, मेरी ना शादी हुई है, मेरा हनीमून हो जाएगा, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो, दूसरे ने विनती की। अरे यार, तुम्हारे हनीमून का खर्चा चैनल थोड़ी ना देगा, राकेश ने उसको डपटा। राकेश भाई, तुम उनसे कह दो ना कि तुम्हें गोद ले ले, पहले ने सुझाव दिया। ये सही है, निमिष सर को पापा बना लो, उनके जीवन में नौकरी के सिवा कुछ है भी नहीं, एक रेडीमेड बेटा ही मिल जाएगा। सर सिंगल हैं? नई एंकर नैना ने अचरज से पूछा। तुमको नहीं पता? सब कहते हैं सर अपने जमाने के दिल जले आशिक है, शायद प्रेमिका मिली नहीं या मर गई हो, क्या पता, दूसरे ने बताया। कितना गॉसिप करते हो यार, जाओ अपना काम करो सब। राकेश ने अपने डेस्क से भीड़ को भगाया और ग्लास केबिन में काम करते शांत निमिष की ओर देखा और सोचने लगा। कोई कह सकता है कि इतने अकेले हैं? शायद तभी पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते, घूमने नहीं जाते। बीच में कुछ महीने चेहरे की रंगत बदली थी, खुश रहते थे, अब फिर से पहले जैसे बुत बन गए हैं। कांच की दीवार के उस पार निमिष सोच रहा था कि स्वाति से बात शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानता था कि पुरानी भावनाएं उस पर यूं हावी हो जाएंगी। किसी को प्यार से दूर करना कितना आसान था, न जवाब का इंतजार, न रूठने का खौफ। ग्रेजुएशन के 3 साल मिलाकर करीब 18 सालों से उसने स्वाति को चाहा था। इतने सालों में उसने इस तड़प को कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 1 महीने से स्वाति से उसकी बात बंद है। स्वाति के पीछे भागते 2 हफ्तों में उसने तिरस्कार को समझा था। वो समझता था कि स्वाति अभिनव से ही प्रेम करती है और उसे अपने बारे में आश्वस्त रखने के लिए ही तो निमिष ने पूजा के नाम का झूठ गढ़ा था। वो स्वाति की जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह से खुश था। शायद उसे अपनी आकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, काश दोस्ती ही बनी रहती, लेकिन पीछे लौटना संभव नहीं था। इसलिए उसने स्वाति से कोई संपर्क न रखने का निश्चय किया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि भूले से भी वो उसकी जिंदगी में झांकने ना जाए।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर का, संपादन सहयोग स्नेहल भिसे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन नाचो तो शुक्रवार।

0: करने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता।
1: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने ये विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से आज अपने निवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण हो। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अनुकूल, नवीन और टिकाऊ शिक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणालियों को आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तीव्र तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने भेजी गई द्वेषपूर्ण फाइलों के माध्यम से पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की कार्यप्रणाली वाली घटनाएं सामने आई हैं। केरलम के 4 उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिले दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट पर थे, अब उन्हें रेड अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है, वहीं शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर आज तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में आज मध्यम से तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स

सुमन कल्याणपुर की आवाज में गाइस भजन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भजन। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

0: हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ समृद्ध हस्तकरघा परंपरा के लिए भी पूरे प्रदेश में जाना जाता है। कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल और अन्य पारंपरिक हस्तनिर्मित उत्पाद हमारी सांस्कृतिक धरोहर की पहचान है। बदलते समय के साथ यही परंपरा अब नवाचार, आधुनिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए द्वार खोल रही है। आज के युवा मंच में हम चर्चा करेंगे विषय प्रगति की डोर अधिक आय के लिए हिमाचली हथकरघा में नवाचार पर। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि सूद, जो बताएंगी कि किस प्रकार परंपरा और तकनीकी का संगम हिमाचल के युवाओं के लिए बेहतर आय और उज्जवल भविष्य का आधार बन सकता है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की विशेष बातचीत। डॉक्टर अंजलि सूद, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद रीना जी।
0: जी, तो ये बताइए कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और किस दिन ये मनाया जाता है?
1: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या नेशनल हैंडलूम डे हम उसको कहते हैं, 2015 7 अगस्त को मनाना शुरू हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी पहल है और उन्होंने ये सोचा कि जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जो हथ से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं, पूरे देश में बहुत अलग अलग तरह के उत्पाद जो हैं वो हथकरघा पे बनते हैं, उसमें ऊन से बने हुए, उसमें सूती उत्पाद, उसमें सिल्क के उत्पाद, सभी उत्पाद जो हैं वो आते हैं। तो उनको एक समय ऐसा आ गया कि लोगों में उनके प्रति आकर्षण कम होता जा रहा था और बहुत सारे लोग जो हैं उनको जानकारी भी नहीं थी कि इस तरह के कोई हथकरघा के उत्पाद भारत में बनते भी हैं। और जो अब फास्ट फैशन, मास फैशन का ज़माना आ गया था और बहुत ज़्यादा सिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आने लगे और उन्हीं का ही बढ़ावा हो रहा था। तो जो यंगर जनरेशन है, खास करके जो युवा हैं, उसको इन उत्पादों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोई सिलेबस, कोई करिकुलम, कोई पढ़ाई भी इस विषय को टच नहीं करती है। तो प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया कि एक ऐसा दिन मनाया जाए पूरे साल में जो कि हथकरघा की विशेषता पर ध्यान दें, उसके बारे में लोगों को जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, एग्जिबिशंस हम ऑर्गेनाइज करें और साथ में जो लोग हथकरघा से जुड़े हुए हैं, जो वीवर्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं या फिर और जो इसके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको सम्मानित करने का भी ये दिन था। तो 7 अगस्त क्यों चुना गया? 7 अगस्त के पीछे एक कहानी है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था, आज़ादी की लड़ाई में। तो वो लड़ाई भी इसीलिए थी कि विदेशी कपड़ों का त्याग कीजिए और स्वदेशी को अपनाइए। तो उसी दिन की महत्व

0: स्वच्छता को याद रखते हुए 7 अगस्त का दिन चुना गया। 2015 से लगातार हम ये दिन मनाते आ रहे हैं और इस बार ये 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है
1: जी। तो डॉक्टर अंजलि सूद, ये बताइए कि हिमाचल का हथकरघा उद्योग अपनी विशेषता और पहचान के लिए क्यों जाना जाता है?
0: हिमाचल एक बहुत ही हथकरघा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। यहाँ बहुत तरह के ऊनी उत्पाद जो हैं वो बनते हैं। ऊनी इसलिए बनते हैं क्योंकि एक ठंडा प्रदेश है, लोगों को सर्दियों में ऊनी कपड़ों की ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा पड़ती थी, और जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे और भी ज़्यादा पड़ती थी। और जो पारंपरिक भेड़ पालन का भी एक यहाँ व्यवसाय जो है वो लोगों का है, गद्दी लोग या जो और भी लोग हैं वो भेड़ों से संबंधित जो उनका काम है वो करते हैं, और भेड़ों की ऊन से ही वो लोग उसको काटते थे, उसका धागा बनाते थे, और उसी से ही फिर कपड़ा भी बनाया जाता था घरों में ही। जिन जैसे गर्मियों में वो भेड़ें चराते थे और सर्दियों में उसी ऊन को उससे उत्पाद बनाने का काम करते थे जो उनको सारा साल जो है वो काम आते थे। तो बहुत सारे ऐसे बहुत एरियाज हैं हिमाचल के जहाँ पे इस तरह के हथकरघा के उत्पाद बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध हैं हमारे किन्नौर के उत्पाद और हमारे कुल्लू के उत्पाद। पर इसके अलावा भी जैसे कांगड़ा है, शिमला है, लाहौल है, तो इस जगह भी और मंडी में भी जहाँ जहाँ ठंड होती है तो वहाँ अपनी तरह के उत्पाद जो हैं वो बनाए जाते हैं। पर बहुत ज़्यादा अगर हम सोचें और देखें फेमस जो हैं वो कुल्लू के और किन्नौर के उत्पाद हैं
1: जी। तो मैम, अगर आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में हथकरघा क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर की क्या क्या इसमें संभावनाएं उपलब्ध रहती हैं?
0: युवाओं के लिए करियर की पहली संभावना तो बाद में आएगी, पहले तो जानकारी ही होना ज़रूरी है
1: जी।
0: बहुत सारे युवा जो हैं वो अब जानते ही नहीं हैं इस व्यवसाय के बारे में, और जिनके घरों में पारंपरिक रूप से ये काम भी होता था वो लोग भी अब इसको छोड़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि अब इसकी मार्केटिंग जो है वो मुश्किल हो गई है, लोगों को जल्दी बनने वाला और सस्ता उत्पाद चाहिए होता है। जो हथकरघा का उत्पाद है ये सारा हाथ का काम है, तो इसको बनाने में बहुत समय लगता है
1: जी।
0: और इसमें बहुत डिटेलिंग होती है, इसको जो डिज़ाइन इसमें डाले जाते हैं वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और हाथ से ही, पुराने समय में तो धागा भी हाथ से ही काटा जाता था, अभी तो मिल स्पन आ जाता है। तो लोग जो पारंपरिक रूप से घरों में कर रहे थे उन्होंने भी इस काम को करना छोड़ दिया, क्योंकि जो पंजाब है वहाँ पे पावर लूम होती है, एक होती है ना हथकरघा इज हैंड लूम जो हाथ से चलती है, और एक होती है पावर लूम जो बिजली से चलती है, तो उसकी चलने की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द हथकरघा। तो उसमें मान लो हथकरघा में एक शॉल बनाने में आपको 1.5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगते हैं, आपको पावर लूम में वही डिज़ाइन के साथ वही शॉल बनाने में 1 घंटे में तैयार हो जाती है, या शायद उससे भी कम समय में। तो एक दौर ऐसा आ गया बीच में कि लोगों ने हथकरघा निर्मित उत्पाद खरीदने ही बंद कर दिए, कि उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा थी इन कंपैरिजन जो पावर लूम से बन के सामान आ रहा था जो देखने में लगभग वैसा था, और उसकी कीमत जो है उससे 3-4 गुना कम थी, तो लोगों ने उसको यूज़ करना बंद कर दिया, ख़रीदना बंद कर दिया हथकरघा उत्पाद को। तो अब धीरे धीरे जो है अब जो बुन रहे थे, जो पारंपरिक रूप से बुनते हैं उनको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च करी हैं, और उसी के चलते अब युवा लोग भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग का भी मौका मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ हमारे ई कॉमर्स के माध्यम से हम ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें जो हैं बेच पा रहे हैं, हम पूरी दुनिया में अपना उत्पाद बेच सकते हैं अगर आपको मार्केट करना आता है तो अच्छा डिज़ाइन हो, अच्छी गुणवत्ता हो, क्वालिटी अच्छी हो उसमें, और अगर आप उसको कॉम्पिटेटिव प्राइस पे अच्छे से पूरी दुनिया में बेच पाते हैं तो युवा भी धीरे धीरे अब इस सेक्टर में वापस आने लगे।
1: जी बिल्कुल। अक्सर युवा मानते हैं कि हथकरघा केवल, जैसा कि आपने बताया, कि पारंपरिक बुनाई तक सीमित है, क्या वास्तव में इसमें डिज़ाइन, फैशन, मार्केटिंग और डिजिटल तकनीक जैसे नए अवसर भी मौजूद हैं?
0: अभी बहुत सारे ऐसे संस्थान आ गए हैं जो युवाओं को इस पे ट्रेनिंग देते हैं। आपने निफ्ट का नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ हमारे कांगड़ा में भी है और उसमें प्रोग्राम चलता है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का, तो उसमें BSc करवाई जाती है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। तो युवाओं को यही सिखाया जाता है कि जो हम कपड़ा बना रहे हैं उसमें किस तरह से नए नए डिज़ाइन लेकर, नए नए थीम्स पे, जो भी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है, फैशन फोरकास्ट होती हैं तो उनके हिसाब से आप कैसे डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है उसको नए तरीके से कैसे पेश कर सकते हैं, कपड़े में हम कैसे, अब क्योंकि मोटा कपड़ा कोई नहीं पहनता, फाइन कपड़ा, तो धागे को भी अब जो उसकी स्पिनिंग हो रही है, जो धागा बन रहा है वो भी पतला फाइन धागा आ रहा है, तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं टेक्नोलॉजिकली जो कि डिज़ाइन के क्षेत्र में, धागे के क्षेत्र में और वीविंग के क्षेत्र में भी, जो हमारा हथकरघा है जिसको हम लूम कहते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, उसको भी कैसे हम आसानी से चला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि जो भी बुनने वाला है उसको भी अपना केयर के साथ, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए वो नई चीज़ों को अडेप्ट कर सके। और डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे हम वीव्स को डिजिटली देख सकते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशंस, जो ट्रेडिशनल कलर कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं अभी तक वो अभी मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, तो नए और क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब पुराने बच्चे तो ना शॉल ओढ़ते हैं, ना स्टोल ओढ़ते हैं, ना उनको पट्टू ओढ़ना है, अभी आप देखिए ना घरों में भी तो सब कुछ चेंज हो गया है।
1: हमने लेकिन अब फिर से जो हमारे युवा हैं वो इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं।
0: नहीं, पर उसमें क्या है कि उसमें धागे की बुनाई की वेरिएशंस हैं, डिज़ाइन की वेरिएशंस भी बहुत सारी हैं, जो इंटरनेशनली कलर चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम कलर मॉडिफाई करें, जो हम नए नए लोग, जो यंग लोग हैं वो नए तरह के कपड़े पहनते हैं, उनको जैकेट्स पहननी अपने स्टाइल की, स्टोल मफलर लेना है अपने स्टाइल का, पैंट स्कर्ट्स पहननी है अपने स्टाइल से, तो अगर हम जो हमारा ट्रेडिशनल शॉल है या पट्टू है उसमें जो बुनाई कर रहे थे उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वो कपड़ा जो है स्कर्ट बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए, स्कार्फ बनाने के लिए, मतलब मॉडर्न चीज़ों में यूज़ हो जाए, तो वो कपड़े को यूज़ करके जो युवा है आज का वो बहुत एक्साइटेड रहता है उनको यूज़ करने,
1: वो आकर्षित हो उनको पहनने के लिए,
0: क्योंकि वो लेटेस्ट ट्रेंड्स को भी फॉलो कर रहे हैं, और अगर हम उनको हथकरघा में वो ट्रेंड्स दे पा रहे हैं तो एक सफलता की
1: जी, और ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर अंजलि सूद। और यदि कोई युवा अपना स्वयं का हैंडलूम या हस्तशिल्प आधारित स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उन्हें किन बातों का शुरुआत में सामना करना चाहिए?
0: तो अगर कोई युवा जो है इस क्षेत्र में आना चाहता है तो पहले तो उसको टेक्नोलॉजिकली साउंड होना पड़ेगा, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए तकनीक, जो हथकरघा है वो चलाना बहुत आसान नहीं है तो उसको सीखना पड़ेगा। मान लो कि वो खुद नहीं भी कर रहा है, वो काम किसी वीवर से ही करवा रहा है, जो बुनकर है उसी से करवा रहा है, पर जब तक उसको सही जानकारी नहीं होगी कि ये काम कैसे करेंगे, वीव कैसे बिठाई जाती है, डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करके कैसे हम बुनाई में अलग अलग वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं जिसका इफ़ेक्ट डिफरेंट हो सकता है, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे वर्क करते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर उसको ये जानकारी नहीं है तो भी उसका काम नहीं चल पाएगा। और साथ में कि अगर उसने उत्पाद बना लिया है तो उसको जो खरीददार है उसके साथ भी तालमेल बिठाना है, तो उसको कैसे उसका प्रोडक्ट मार्केट करना है ये सब भी आने की ज़रूरत है। तो जो युवा है जो भी इस क्षेत्र में रोज़गार के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें स्वयं रोज़गार की बहुत ही अपार संभावनाएं हैं, तो वो संभावनाओं के लिए अगर युवा जो हैं वो आगे आना चाहते हैं तो उनको इस क्षेत्र की पहले तो जानकारी होनी चाहिए, उसके विषय में पूरी डिटेल में पढ़ाई उनको करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने एक निफ्ट का नाम लिया, जो वीवर्स हैं उनके बच्चों के लिए स्पेशली वाराणसी में

0: एक कॉलेज है जो बीटेक की डिग्री सिर्फ वीविंग से रिलेटेड और वो जो सब्सिडाइज्ड कोर्स है तो उसमें भी बच्चे जा सकते हैं अगर वो मतलब इंटरेस्टेड हैं। और जो काम करने वाले हैं वीवर्स उनसे भी सीख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाते
1: मैं
0: हैं।
1: यही पूछना
0: हाँ
1: चाहती
0: जी हाँ
1: थी कि
0: जी
1: प्रशिक्षण का क्या प्रावधान है
0: हाँ,
1: इसमें?
0: प्रशिक्षण जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र भी हैं खुले हुए, जहाँ पे जो यंग बच्चे हैं, खासकर मैंने देखा है लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं,
1: जी
0: तो वो लड़कियाँ जो हैं जो जैसे जो बुनकर कम्युनिटी से ही आती हैं तो वो अपने स्किल्स को वहाँ पे अच्छे से पॉलिश करते हैं, अच्छे से सीखती हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको इतना डर नहीं रहता कि कोई उत्पाद खराब हो जाएगा तो क्या होगा। तो छोटे छोटे से ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो जगह जगह सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। और कभी कभी सरकार स्कीम के अंतर्गत जो है वो बुनकर जो हैं या उनके जो बच्चे हैं उनको नई लूम लगाने के लिए या खड्डी जिसको हम कहते हैं उसके लिए जो है वो अनुदान भी देते हैं, ट्रेनिंग का भी प्रावधान करते हैं और शायद कुछ स्कॉलरशिप्स भी टाइम टाइम से दी जाती हैं उन बच्चों को जो इस क्षेत्र में सीखना चाहते हैं और अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करके और अनुदान से मिली हुई खड्डी के ऊपर वो अपना काम शुरू करते
1: जी,
0: हैं।
1: काफ़ी समय के बाद खड्डी शब्द हमने सुना है ना,
0: जी
1: जैसा कि आप कह रहे हैं, तो मतलब अब ये चीज़ें वापस आ रही हैं जैसा कि मुझे लगता है।
0: जी
1: लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और हमारे
0: हाँ
1: जो यंगस्टर्स हैं वो भी इन चीज़ों को अब पहनते हैं, कोशिश करते हैं कि जैसे आपने कहा कि नए नए डिज़ाइंस हैं
0: जी
1: उस तरह से।
0: तो वोकल
1: तो
0: फॉर लोकल भी एक सरकार की पॉलिसी रही है, तो जो लोकल हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रशिक्षण है, चाहे चाहे उनको अनुदान है, कोई और स्कीम्स हैं सरकार की, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जो कोई भी इस तरह का व्यवसाय लोग करना चाहते हैं तो उसमें अनुदान राशि दी जाती है और कुछ जो है वो इंटरेस्ट फ्री दी जाती है और कुछ पे बहुत ही सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स पे दिया जाता है अनुदान।
1: जी, डॉक्टर अंजलि सूद, ये बताइए कि इस क्षेत्र में महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए समान रूप से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हैं?
0: ये क्षेत्र जो है अगर आप ध्यान दें और अगर आपने कभी देखा हो तो 70% 70% महिलाओं के सिर पे चल रहा है,
1: जी, महिलाएं ज़्यादा इसमें।
0: महिलाएं ज्यादा हैं इस क्षेत्र में। जैसे हिमाचल की हम बात करें तो भेड़ पालन का काम जो है वो पुरुषों का काम है, पर भेड़ से एक बार ऊन आ जाती है उसको काटना है, उसका धागा बनाना है, खड्डी पे उसका उत्पाद बनाना है, घरेलू स्तर पे महिलाएं ही करती हैं, बहुत
1: जी
0: कम पुरुष जो हैं वो ट्रेडिशनली भी इस काम को कर रहे थे। अभी कुल्लू में अगर हम देखें तो जो है वो कमर्शियल हो गया है, तो कमर्शियल उसमें बहुत सारे पुरुष उस क्षेत्र में आते हैं, बुनते भी हैं, पर अगर घरेलू स्तर पे अगर हम बुनाई खड्डी पे बुनाई की बात करें तो महिलाएं जो हैं वो अपना खाली समय जो है वो बुनकर ही और या धागा बनाने में या इन सब जो प्रोसेसेस हैं जो खड्डी पे धागा चढ़ाना है, तैयार करना है धागे को और बुनना है, फिर उसके बाद उसको फिर से उसकी फिनिशिंग करनी है ताकि उत्पाद मार्केट के लिए रेडी हो जाए, तो सारा का सारा महिलाओं पे केंद्रित है ये क्षेत्र।
1: जी, और आजकल ग्राहक पर्यावरण अनुकूल और हस्त निर्मित उत्पादों को अधिक पसंद कर रहे हैं।
0: जी
1: क्या ये बदलती सोच हिमाचल के बुनकरों के लिए एक बड़ा अवसर है?
0: ये अवसर भी है और ये जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए अगर वो अपने उत्पादों को लेटेस्ट फैशन के साथ मैचअप करते हैं और ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिसकी आज के दौर में डिमांड है, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि लोग जो हैं वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं, अपने जो उनकी कुशलता है कार्य कौशल जो है उनका वो अपने दुनिया को वो अपना स्किल जो है वो दिखा सकते हैं। और इस क्षेत्र में ये दिन जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जीबिशंस होती हैं जिन लोगों को नहीं भी पता उन लोगों को धीरे धीरे पता चलता है, बात होती है जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं
1: जी,
0: तो आप ये जो रेडियो पे आएगा तो लोग इसको
1: सुनेंगे।
0: सुनेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं जो अभी नहीं भी जानते हैं तो वो इसके बारे में जान पाएंगे और आगे से आगे बात बढ़ती है, लोग

0: किए जा रहे हैं?
1: सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो हैं वो इस क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। तो इसमें एक नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो जितने भी हैंडलूम्स को स्थापित करना, वीवर सर्विस सेंटर्स हैं, अगर कोई बुनकर को किसी भी तरह की सहायता चाहिए, आपको धागा चाहिए, आपको धागे को रंगवाना है, कोई डिज़ाइन से रिलेटेड उनकी समस्या है, तो वहाँ डिज़ाइनर्स भी होते हैं, तो इस तरीके से वो उनको सहायता प्रदान करते हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जो है, मतलब इंडियन हैंडलूम ब्रांड, उसको प्रमोट किया जा रहा है। आपने देखा होगा हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री जी कहीं बाहर जाते हैं तो वो विदेशों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए अलग अलग हस्तनिर्मित उत्पाद जो हैं वो लेकर जाते हैं, तो वो ब्रांड इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे हस्तनिर्मित उत्पाद जो हथकरघा पे बने होते हैं उस पर एक हैंडलूम मार्क लगा होता है जो दिखाता है कि ये जो उत्पाद है वो हाथ से निर्मित है, खड्डी पे बना हुआ है, हाथ से बनाया है किसी बुनकर ने, तो वो भी उसको प्रमोट करने के लिए हैंडलूम मार्क जो है उसी को मिलता है जो हथकरघा पे वो उत्पाद बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा यान सप्लाई स्कीम है जिसमें सही कीमत पर धागा और सही क्वांटिटी, जितना उसको चाहिए बुनकर को उतना धागा जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है सही कीमत के ऊपर। अच्छा धागा जो है, जो सिल्क बना रहे हैं सिल्क के उत्पाद उनको सिल्क का धागा, जो ऊनी बना रहे हैं उत्पाद उनको ऊन का धागा, और अगर कोई सूती उत्पाद बना रहे हैं तो उनको कॉटन यान जो है वो सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, क्लस्टर के अंदर अलग अलग वीवर्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, और जैसे एक वीवर बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं बना सकता है मार्केट करने के लिए, तो क्लस्टर डेवलप किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे वीवर्स इकट्ठे काम करते हैं और उन उत्पादों को इकट्ठा एक जगह बेचा जाता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स और कोई भी चाहिए, उनको कच्चा माल चाहिए, उसकी सप्लाई की स्कीम है। मार्केटिंग असिस्टेंस दी जाती है हैंडलूम प्रोडक्ट्स को, आपने कई बार देखा होगा कई तरह के फेयर्स, एग्जिबिशंस और इस तरह के सरकार लगाती है अलग अलग जगह पे, आपने देखा होगा एग्जिबिशंस आती हैं शहरों में, तो लोगों को एक उत्पाद को जानने का मौका भी मिलता है और खरीदने का मौका भी मिलता है। और उस तरह के फेयर्स में ना पूरे देश से लोग
0: आते हैं,
1: पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग जिस जगह हम जा नहीं सकते हैं उस जगह के लोगों का उत्पाद भी वहाँ आता है, वो खुद आते हैं उसके बारे में जो खरीदार है उसको बताया भी जाता है, और अच्छी मार्केटिंग होती है। हम स्पेशली जाके नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम हमारे शहर में मान लो कोई ऐसा मेला लगा, कोई एग्जिबिशन लगी तो हम वहाँ पे उसको खरीद सकते हैं। और एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं और वो चलाई गई हैं, विदेशों में भी इस तरह के हैंडलूम के मेले जो हैं वो लगाती है सरकार ताकि भारतीय हथकरघा उत्पाद जो है वो विदेशों में भी उसकी पहचान बने और लोग वहाँ भी उसको खरीदें
0: जी।
1: इसके अलावा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जो कि एक्सपोर्ट के लिए जो हथकरघा के उत्पाद हैं उसके लिए काम करती है
0: जी। और हिमाचल के पारंपरिक उत्पादों जैसे कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल और ऊनी वस्त्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है?
1: युवाओं की विशेष भूमिका हो सकती है क्योंकि आजकल का दौर जो है ना वो ई मार्केटिंग का है। पुराने लोग जो हैं वो शायद इस पक्ष में कमज़ोर हैं, उनको फ़ोन चलाना इतना नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना और उसके इसलिए जो युवा हैं वो इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनको उनको पता है कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे ई प्लेटफॉर्म्स पे दिखा सकते हैं। एक होती है विजुअल मर्केंडाइजिंग, किसी भी स्टोर में अगर सामान बिक रहा है तो उसको कैसे अच्छे से डिस्प्ले किया जाए, जो पुराने लोग शायद उतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो यंग जनरेशन है वो उनको इस तरह की चीज़ों का स्टाइल का और फैशन का आइडिया होता है तो वो उसको भी करते हैं, और साथ में पूरे स्टोर अगर हमारा फिजिकल स्टोर भी है दुकान भी है

0: तो उसको भी कैसे अच्छे से अरेंज करें कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर वहाँ पे आए और एक अच्छा माहौल वो वहाँ प्रदान करते हैं,
1: जी,
0: तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर।
1: तो अगर जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उन युवाओं में कौन कौन सी कौशल विकसित होना आवश्यक है?
0: उनको जो हथकरघा पे बुनाई होती है उसकी जानकारी, धागे की जानकारी और डिज़ाइन कैसे, प्रोसेस क्या है उसका, उसकी जानकारी। और फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसको मार्केटिंग की जानकारी भी होनी चाहिए।
1: जरूरी है।
0: जी
1: आने वाले 5 से 10 वर्षों में हिमाचल के हथकरघा उद्योग का भविष्य आप किस रूप में देखती हैं?
0: हथकरघा उद्योग का भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे सभी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। सरकार भी ऐसे कार्यक्रम चला रही है, वोकल फॉर लोकल है, टेक्सटाइल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है, रूरल लाइवलीहुड्स जो हैं, जो रोजगार जो रूरल क्षेत्रों में हैं, गाँव में हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो महिलाएं हैं उनको भी एम्पावर करने के तरफ ध्यान है। तो स्कीम्स बहुत सारी हैं और अगर हम सही तरीके से उनका लाभ उठाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग, ई मार्केटिंग के माध्यम से हम अपना उत्पाद जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में कुछ दिनों में पहुंचा सकते हैं, तो आगे का दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। और अगर हम थोड़े से प्रयास और करें कि जो हमारी यंग जनरेशन, युवा है, उसमें थोड़ी जागरूकता हम बढ़ा दें।
1: और वैसे भी लोग इस तरफ अब बहुत आकर्षित हो
0: जी
1: रहे
0: जी
1: हैं।
0: सस्टेनेबल फैशन का ज़माना है
1: जी
0: अब, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि जो बहुत सारे कपड़े हम मॉल से खरीद कर आते हैं वो सब सिंथेटिक हैं और कई हज़ार वर्षों तक ख़त्म नहीं होने वाले, हम पहन पहन के चार चार बार उनको छोड़ रहे हैं।
1: और
0: तो
1: कई बार
0: धीरे
1: उन्हें किसी तरह की बीमारियां,
0: एलर्जी
1: हाँ
0: एलर्जीज भी होती हैं, तो वो हथकरघा उत्पादों से कम उस तरह की एलर्जीज का भी कोई चांस नहीं है। और ये जो उत्पाद हैं हमें धरती से ही मिले हैं, ऊन हम डिकम्पोज कर सकते हैं, कॉटन है, सूत है, उसको वो ख़त्म हो जाता है, सिल्क भी ख़त्म हो जाती है टाइम के साथ, पर जितने सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं,
1: ये
0: पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ये नहीं ख़त्म होता है, हज़ारों वर्ष में भी शायद नहीं ख़त्म होगा।
1: जी
0: तो धीरे धीरे ये जागरूकता भी बढ़ रही है। और अगर हम इस सोच से चलें कि कम खरीदें पर अच्छा खरीदें, तो आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है।
1: अंत में डॉक्टर अंजलि सूद, उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा जो नौकरी के साथ साथ अपनी संस्कृति से जुड़े इस स्वरोजगार की तलाश में हैं?
0: संस्कृति को बचाना हमारा ही कर्तव्य है और युवाओं पे बोझ थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बीच में एक ऐसा फेज आ गया कि ये थोड़ा कम हो गया काम। तो अगर अभी जो युवा लोग हैं वो अभी से ही जागरूक होते हैं, थोड़ी जानकारी बढ़ाते हैं, अपने स्किल को बढ़ाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छे करियर्स हैं। बहुत सारे लोग जो हैं बाहर के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो यहाँ के बुनकरों से सामान बनवाते हैं और बहुत महंगे बेचते हैं बाहर जाके, पर जो बुनकर है उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलता। तो अगर लोकल जो युवा है वो इस फील्ड में आगे आता है और वो कमान संभालता है हथकरघा से निर्मित उत्पादों के आगे जो फ्यूचर की, तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है।
1: तो श्रोताओं, आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि हिमाचल का हथकरघा केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि रोजगार, स्वरोजगार और नवाचार का एक सशक्त माध्यम भी है। यदि युवा आधुनिक तकनीक, डिजाइन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और उद्यमिता की सोच के साथ इस क्षेत्र से जुड़े तो वे अपनी पहचान बनाने के साथ साथ प्रदेश की समृद्ध परंपरा को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि सूद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे युवाओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी बातें आपने हमारे साथ साझा की, अपने बहुमूल्य विचार और उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद रीना जी।
1: इसी आशा के साथ कि आज की ये चर्चा आपको नई प्रेरणा और नई दिशा देगी, मैं रीना चाहती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार, फिर मिलेंगे युवा मंच के एक और रोचक और ज्ञानवर्धक अंक में।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हथकरघा दिवस पर डॉक्टर अंजलि सूद से भेंट वार्ता।
3: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर किसान बागवान भाई बहन सुनेंगे कार्यक्रम मौजा गराइंदियां, जिसमें बातचीत का विषय रहेगा बुजुर्गों का करें सम्मान। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जिसमें राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और अवसंरचना विकास कोष के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। रात्रि 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी और 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज आप सुनेंगे वर्ष 1975 में आई फिल्म जूली के कुछ नगमे कारवां सुरों का। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। और 10:00 सुनिएगा नई फिल्मों से गीत कार्यक्रम रहेगा बॉलीवुड बीट्स, और कुछ पुराने फिल्मी गीतों के साथ हाजिर होंगे। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, और आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ एट 9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: ये था विवरण आज शाम प्रसारित वाले किए जाने वाले कार्यक्रमों का। अब एक नज़र कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की वर्षगांठ पर बात होगी। साथ ही गोवा क्रांति दिवस के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके साथ ही भीष्म साहनी की जन्मतिथि के बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: सच में बिल जीरो आ सकता है? मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला इसका। हमारे इर्द गिर्द किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा महाविद्यालयों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने और डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने बताया कि पहले चरण में आईजीएमसी शिमला में एक समर्पित शोध विभाग स्थापित किया जाएगा, जिसे बाद में प्रदेश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में डायग्नोस्टिक सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अस्पतालों में ही रक्त जांच की सुविधा पर भी बल दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए धन की कोई कमी नहीं है और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली स्थित हिमाचल इम्पोरियम का दौरा कर हस्तशिल्प व हस्तकरघा उत्पादों की खरीदारी की। उन्होंने देशवासियों से बुनकरों और शिल्पकारों के समर्थन में हथकरघा उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। राज्यपाल ने बताया कि आज ही के दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वोकल फॉर लोकल पहल केवल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का अभियान ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय जन आंदोलन भी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हजारों बुनकर व शिल्पकार समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प की अमूल्य विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने अधिकारियों को जन शिकायतों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र के खेगवा में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। विनय कुमार ने बताया कि मॉनसून सीजन के दौरान लोगों की समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।
1: अभी तक तो जो नुकसान आका गया है हमारे सिरमौर जिले का वो ज्यादा नहीं है सड़कों का, पर फिर भी हमने अलर्ट पे रखा हुआ सभी डिविजन्स को कि ताकि कोई इस प्रकार की अगर कोई भारी बारिश होती है और कोई रोड ब्लॉक होता है तो तुरंत उसको बहाल किया जाए। तो ये सारे प्रशासन को निर्देश दिए गए और इस बारिश के दौरान में विभागों की छुट्टियां भी बंद की है ताकि सभी लोग अलर्ट रहे।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी कोचिंग केंद्र पंजीकरण व विनियमन नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इनके मुताबिक निजी कोचिंग संस्थानों को पारदर्शी व जवाबदेह बनाना और विद्यार्थियों को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना है। धर्मशाला में आज उपायुक्त हेमराज बैरवा ने इसे लेकर एक बैठक की और बताया कि विद्यार्थियों की 50 से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है।
2: प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में जितने भी निजी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए हैं और जिले में ऐसे जितने भी संस्थान चल रहे हैं उन सब का पंजीकरण अनिवार्य है। रूल्स में एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। हमने यही निर्णय लिया है कि जितने भी जिले के अंदर संस्थान हमारे मौजूद हैं जिसमें 50 से अधिक छात्र वहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं उन सभी संस्थानों को इसमें रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है।
0: राज्य सचिवालय प्रशासनिक सेवाएं के तहत क्लर्क जॉब ट्रेनी के 40 पदों को भरने के लिए राज्य चयन आयोग ने 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन का वेब लिंक 14 अगस्त से 11 सितंबर तक खुला रहेगा। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान अभी तक सामान्य से 6% कम वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और चंबा सहित कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। मूसलाधार वर्षा से प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। पिछले 24 घंटों में कांगड़ा और मंडी में सबसे ज्यादा 8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि 10 और 11 अगस्त को राज्य के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है।
3: बारिश का जो ये दौर है हिमाचल प्रदेश में ये लगभग इसी तरीके से हल्के स्तर तक की बारिश जो है अराउंड 9 अगस्त तक हमें देखने को मिलेगी। कल और परसों दो दिन में बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आएगी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन 10 तारीख के बाद से प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी एक बार फिर से हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी। कांगड़ा जिले के अलावा सिरमौर और साथ ही कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट है 10 अगस्त के लिए, और वहीं पे 11 अगस्त की अगर हम बात करें तो कुल्लू, मंडी, सिरमौर के अलावा चंबा जिले

0: भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, हालांकि बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट है।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: एक सौ 3.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ। सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम सुरमई सांझ में, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूनम। और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में बहुरानी फिल्म से ये गीत।

मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित मां से उसके

0: जुर्माना फिल्म से अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी आदि बर्मन ने।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
2: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza. Now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats. New 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: शुतल सुरमई सांझ का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता।

अभी आप सुन रही थी लता मंगेशकर की आवाज़ में कहीं और चल फिल्म से ये गीत, और गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

श्रोता, आज के सुरमई सांझ कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजां गराइंदियां।

0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
4: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
3: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
5: जी तो किसान साथियों तुहां सुने कुछ जरूरी सनेह कने थोड़ी देर चलते चलते तुहां ने कल तो क्या करनी कजो कि समय भी घटता जाता पर यह दसना भी चलते चलते कि हूँ देखा बरसात लगी हो तो अपने पशुओं का जड़ा चारा प्रबंधन है से बड़े तरीके ने करना कजो कि बरखा विच बरसाती चारा तो बतेरा हों पर सारा चारा पशुएं खुआने वाला नहीं हों
6: बिल्कुल बिल्कुल
5: तो थोड़ा देर तलू तुहां चारा लिया बढ़ी के घा तो कोशिश करनी भी ऐसी जगह का ना हो जिन्हें तिथू ज़्यादा पानी हो जो कि पानी के अखे बखे जो घा हों तिथू तो इस कीट जीजू कंडू बड़े चीज़ा छुपी होंगे कहना एकदम आए कि हाँ जे पशुएं पाई देंगे तो तिसते हाँ दे पशुएं कई कीट तिना के पेटे चली आते कहने तिसते तिना उसे कई बीमारियां तैयार कर दे
6: बिल्कुल कहने पशुओं जो जो मतलब बिल्कुल सैला घा भी नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि हाँ जो सुा घा रखे होंगे उस अगर
5: रलाई मलाई
6: खिलाते हैं तो असं ये कि पशुओं की सेहत बांका रहा है
5: जी कने दिखा अजक बरसाती बड़िया गलों का ध्यान रखना पौंदा पर जरूरत है थोड़ी सूझ दी कने समझ दी ता इस ते बाद फिर ते थोड़ी देर चलते चलते हाँ लगानी है रौनक
6: तो सुनते ने लोकगीत

0: जी किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्ने हुण कार्यक्रम दा समय संपन्न होवा दा जाने जाने दसी दे कार्यक्रम प्रस्तुति जतिंदर पाल सिंह कन्ने कार्यक्रम विच तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर दा हुण असा दुनी जो दे अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
2: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
3: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
2: पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खाते को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों में एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज उधमपुर और रियासी जिलों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से 140 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली दो प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में अमृत के दूसरे चरण के तहत उधमपुर शहर के लिए 124 करोड़ से अधिक की जल आपूर्ति संवर्धन योजना सहित 16 करोड़ से अधिक की जल प्रबंधन परियोजना शामिल है। केरलम के चार जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा चार अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिया ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अश्मिता और रक्षिता सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुचा कुमार। India has rejected the objections raised by a US lawmaker on the proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, saying that its legislative matters are its internal affairs in which the decisions are taken by the Parliament. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi while replying to a question in this regard.
5: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs, on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
4: On safety and security of Indian vessels and seafarers, Mr. Jaiswal said, New Delhi attaches high priority to the issue. He said Indian missions all across the Gulf region are in constant contact with the Ministry of Shipping and Maritime Authorities in those countries. He said 24/7 helplines are being run so that any person who needs support can also approach them. Replying to a question on the press conference of former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, Mr. Jaiswal reiterated that India had no role to play in the event, which was organized by a private media entity. On last night's telephonic conversation between Prime Minister Narendra Modi and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the MEA spokesperson said both leaders discussed the ongoing situation and developments in West Asia. The spokesperson said that during the conversation between the two leaders, strengthening the cooperation across various sectors was discussed. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. The Rajya Sabha today witnessed opposition's uproar over several issues, including the alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House assembled this morning, Chairman C.P. Radhakrishnan paid tributes to the freedom fighters and martyrs of the Quit India movement. The House also observed silence in honour of the freedom fighters and martyrs. After that, the reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Defence, Ministry of Home Affairs, Commerce and Health and Family Welfare were tabled in the House. Later, Mr. Radhakrishnan took up the zero hour amid opposition uproar. India's national public procurement platform, Government E-Marketplace, GEM, has achieved a cumulative gross merchandise value of over 20 lakh crore rupees in the last 10 years. GEM was launched on the 9th of August 2016 to transform public procurement through technology, transparency, efficiency and good governance. Addressing a press conference in New Delhi, GEM CEO Mihir Kumar said that the GEM's business has grown from 422 crore rupees in 2016-17 to over 20 lakh crore rupees now. President Draupadi Murmu today conferred the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. A total of 22 awards comprising the 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards were conferred. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of IIT Delhi tomorrow. He will address more than 3,000 graduating students, including undergraduate and postgraduate students and 587 PhD scholars. Rains lashed several parts of North and Northwest India today. A yellow alert for moderate to heavy rainfall has been issued for Delhi today. Rainfall is also expected to continue over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand till the 12th of this month. In the south, red alert indicating extremely heavy rainfall has been issued for 4 northern districts of Kerala. And that is the end of this news bulletin.
1: ...103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू दी तरफा दे राम राम। किसान साथी आज ट्याले पर है मुझे सो की शनो ता शनो ताई जी राम राम।
1: राम राम बड़का चाचू जी, तो हाँ बड़ी भरी काली कितनी कने मैं तुसे हक भी पाई थी पहचान दे।
0: ओ दिखा शनो ताई मिलिया, बरखा भी लगी थी थोड़ी थोड़ी।
1: हाँ चेता पूछा ही मत, बरसाती बरखा ही होनी और
0: क्या होना। मिलिया थोड़ा यहाँ करता भाई खेतरा चो के जानता, बरखा था दिया प्यागा दी लगी हुई, प्यागा था थोड़ी जोरे भी थी,
1: काल जितना ही निम्बल था आज इतना ही भरी है।
0: बिल्कुल मतलब कि मेले हूं ट्याले तो भी जाना जाना है तो खेत खिलाना चाहिए कि जानता कि कुछ की मिले कोई जिया पानी वगैरह ही नहीं खेतरा जो आई आए पानी निकासी का जेड़ा प्रबंध के भी कितने है।
1: बिल्कुल बढ़िया कितना तुहां का जो की दिखा बरखा पानी का जेड़ा प्रवाह है बढ़िया आना कालू ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तुहां बड़ी बांकी गल की भाई, चाहे तुहां बेसक कुल्ला नालियां बनाई थी पर जालू तुहां द्वारा जाए आए ना तो तुहां तसली भी होगी।
0: बिल्कुल कहने दिखा कि जिया की बीज अंकुरण हुंदा या फिर फसल जिया बढ़ना लगती है तो हमें समझो अपने खेत खिलाना च आना जाना चाहिए था। और इस टाइम तो दिखा बरखा का मौसम है बरसात का मौसम है और इस वेले समझो संजा पे आगा खेत खिलाना च आना जाना जरूर चाहिए
1: जी। बिल्कुल कने सौगी सौगी जेड़ी इस वक्त हाँ बड़ी फसल धान की लाई है
0: जी जी जी
1: तीस बिच भी 100 कीट पतंगे बीमारियां का समय लग गया कने और गां दिखा धान निसरने का वक्त भी होवा था।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: जे सही गल है जे हाँ थोड़ी देर इस वक्त लापरवाही करी थी जितनी मेहनत हाँ की होंगी ना इतना हाँ जो मुनाफा नहीं मिल पाता।
0: बिल्कुल बिल्कुल और इस दे कन्ने कन्ने फिर टाइम भी था मेरे बल ता दो चार पुले भी गाते बटी ले न।
1: आजकल तो मैं बोलती पेई डंगरा पशु बिल्कुल घाटा नहीं होंदा काए दा।
0: बिल्कुल कहने दिखा कि भाई जिया थोड़ी थोड़ी बरखा घटी तो मिले लटियाले जाने टाइम है ता दो चार पुले भी गा दे बटी ले कहने पशु जो भी संजा जो चाहिए खाने।
1: बिल्कुल दिखा बोल दे एक पंथ कने दो काज ना
0: जी जी जी
1: सह बड़का चाचू हो रहा पूरे दिमागे ने काम किया कने फायदे आले काम हो सारे कने हूं अह जल उटियाले पर बही आते इथू ते भी अह कोशिश कर दे बी अह दे किसाना बागवाना जो कोई ना कोई फायदे आली गप तिना तक पुजे।
0: बिल्कुल कने दिखा की जिया जिना जिना पशु रखे है ना
1: हाँ।
0: छोटे स्तर पर रखे होने चाहे बड़े स्तर पर रखे होने तो आजकल जी देखा कि संजो पशुओं की जी ग्राला वगैरह कहने भी एक अच्छे तरीके कहने साफ सुथरी रखना चाहिए ने। कई बार क्या होता कि पशुओं जो कई तरह की बीमारियां कहने भी इस बरसात के मौसम लगी सकती
1: है। जी बिल्कुल सही गलाया कहने किसान साथियों दिखा भाई अहां तुहां घरे डंगर पशु गाय खास करी मई बकरियां तो रखी ही होंगे कहने जे अहां दा पशु बीमार हो गया ना तो सह तो परेशान होंदा ही होंदा कहने सौगी पूरा परिवार भी परेशान हो जाता।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इस ट्याले के माध्यम से हाँ अच्छी अच्छी जानकारियां तिना दे फायदे दी गल्लां हां लेउंदे न तां अज अहां गल करनी है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कने अवसंरचना विकास कोष दी।
0: जी जी
1: इस विच असां जानना है कि डंगर पशुआं जो अगर कोई बीमारी रोग लगी आंदा है तां तीस तीआं तुहां सब ते पहले शुरू चुक्या करना है।
0: बिल्कुल
1: कहजो कि शुरुआत विच ही तुहां कुसी दुखे बीमारी है जो बोलदे काबू करी लेंगे ना तसे गां ते इतना नहीं बद दकने जे थोड़ा बहुत बदी भी जा ता हां ये इतना ता पता ही होंदा पई सारे डंगरा पशुओं ते सब बीमार पशु तो पहले लग करी लेना।
0: ठीक लाया और शुरुआती तौर पर देखा ना कि अगर अहां अपनी घराला दी ठीक तरह कने साफ सफाई रखदे हन उना दा जेड़ा नीचे बिछाने वाला ठीक ठाक रखदे हन है ना ये साड़ी एक जिम्मेदारी बनदी है। लेकिन फिर भी अगर पशु बीमार हो जांदा है तो उस पशु जो तुहां जेड़े स्वस्थ पशु उना दे अलग कर दिया और तुरंत तुहां जेड़े अपने नजदीकी पशु चिकित्सक हुंदे हन उना सोगी संपर्क साधना है।
1: हाँ बिल्कुल सही गल है कने दिखा तिना ने संपर्क साधी के भी अहां कई गल्लां पहले ही पता लग जांदियां।
0: जी जी जी
1: जरूरी नहीं है जे जालू डंगर पशु बीमार हो आहां तां ही जे पता करना जाना वे क्या बीमारी लगी होंगी ता पहले भी जी तुहां हां दे कार्यक्रम जो सुना दे तो तुहां इस ते भी कई गल्लां पहले ही पता लग जांदियां तो तुहां घरे जालू घराला बाहर या अंदर डंगर बच्छू बन्ने होंदे तो तुहां तिना दे हल्के फुल्के संकेत पहले लग जांदे पता भई पशु घा नहीं खादा है या ढंगे ने बहदा नहीं है खड़ूई रहदा है या कुछ कई गल्लां होंदियां तां सही संकेत होंदे वे पशु आहां दा ठीक नहीं है।
0: जी जी जी जी
1: तां खास करी जी बरसाती दी गल करां तां इक खुरपका मुंह पका रोग है बड़ा भारी तंग करदा जानवर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इस विच गाय मई तां इन्नी इन सूअर कने और भी डंगरा पशु ए प्रभावित करदा इस विच दिखा तिना दे मुंह पूरी तरह पकी जांदा।
0: जी जी जी जी
1: सत इस ते क्या होंदा ना सै घा खाई सकदे ना पानी पी सकदे तां सही होना वे तिना कमजोर होना कने जे दुधे आले डंगर बच्छू होना तां तिन्नी दुधे ते सकाई आना।
0: बिल्कुल कने दिखा कि जालू पशु बीमारी कने ग्रसित होना तां दुध तां घटना घटना ते दा।
1: जी कने यहाँ ये गल तां करा दे पी सारे किसान जरूरी नहीं खेतीबाड़ी ने जुड़े होना कईया जरा पशु धन का काम भी बड़े बड़े स्तर पर चलाया तो तिना तीए खास करिए जानकारी ज्यादा कमे की है कहो कि बाहर दिखा तिना बोले सोआ कने जा रहे सब गाय मई डंगर पशु रखे होंगे।
0: जी जी जी
1: जिते तू छोटी मोटी बीमारी आई आ कने से ध्यान नहीं रखगे लापरवाही करगे तिना ज्यादा नुकसान होना तो इस गल्ला है भाई पहले ही इन्होंने गल्ला समझी के रखन भी पशु एक कुछ मौसम बिच कुन कुन रोग लगते हैं, कने खुर पका मुंह पका कने ब्रूसोलोसिस जड़ी ए भी बड़ी बड़ी तंग कर दी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इससे भी पशु बड़ा ज्यादा प्रभावित होता, कने बोलते भी ये जड़ी बीमारी है ये पशु है तो होंगी होंगी सोगी जड़ा तिना नेड़े तेड़ा काम करता ना
0: जी जी जी
1: तीसरे भी प्रभाव मतलब हो ही सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ता किसान साथियों तुहां जरूर खुर पका मुंह पका कने ब्रूसोलोसिस इससे सावधान रहना है, कने नजर सान रखनी है डंगरा पशुओं पे ये रोग ते नहीं परेशान ता नहीं करा दा है, कने पशुओं दा समय रहंदे टीकाकरण जरूर करवाना है।
0: बिल्कुल, कने किसान साथी गल्लां बातां अगे भी जा रहे ने पर उन्हां शामिल करना एक प्यारा दिया लोकगीत।

0: जी तो बड़का चाचू दिखा तो हाँ बांह का दिया लोग गीत सुनाया ना जपनी पसंद आदा मिंजो तो पसंद आया आया होना पर मैं बोले जेडे श्रोते कने अहां दे सियाने याने सब कार्यक्रम जो सुना दे ना तिना दे भी घर रौनक लगी होनी है
1: बिल्कुल
0: कने 19 ते बाद सही साहब है रौनक गीता संगीता दी चलदी रहंदी इस ते बाद फिर ते अहां शामिल करनी है जानकारी
1: तो सुनदे ने जानकारी
2: कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच जियां कि तुहां जो पता है हर दिन अहां दा प्रयास रहंदा एक नित नोई ते नोई जानकारी अहां तुहां तक पुजाइए। मैं किसान मित्र अज अहां दे टियाले पर आए हो ना अज दे खास परौणे जेड़े कि हन डॉक्टर केर सिंह ठाकुर कन ए विज्ञानिक हन कृषि विज्ञान केंद्र चंबा च कार्यरत हन। तो डॉक्टर साहब जी टियाले पर तुहां दा बहुत बहुत स्वागत है जी।
3: धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका आभार।
2: तो डॉक्टर साहब जी गलबात करदे ने जियां कि अज का जरा अहां का विषय है सह है सुगंधित पौधे कने औषधीय पौधे
3: दी
2: खेती जो करी के किन्या अहां दे किसान साथी बागवान साथी

0: अपनी अर्थ की जो मजबूत बनाई पान। अहां दे सुनने आले तुहां सबसे पहले ए दसा कि ए जड़े सुगंधित पौधियां विच कौन कौन पौधे आउंदे कने औषधीय पौधियां दी श्रेणी च कौन कौन पौधे आउंदे ने।
1: बिल्कुल, बड़ा बढ़िया तुहां प्रश्न कीता। सारे ते पहले तां मैं तुहां ए दसना चाहदा कि ए जड़े चाहे औषधीय पौधे होन चाहे सुगंधित पौधे होन, इन्हां दा जिक्र अज ते नहीं है।
0: हां जी,
1: बड़े पुराने समय ते है, कने यहां दे जड़े ऋषि मुनि जड़े थे सह इन्हां जड़ी बूटियां ते ही दवाइयां बनांदे थे, कने अहां दा जड़ा सह आदमी होन चाहे जानवर होन ते इन्हां दा इलाज करदे थे।
0: जी डॉक्टर साहब जी, तो हाँ बिल्कुल, एक पते की गल दसी है कि पुराने समय च दिखा अज की अहां गल करन दा कितनी सारी मशीन आई हैं, चाहे अहां दे एक्सरे होने सिटी स्कैन होने या होर, लेकिन उस जमाने च दिखा एक वैद नाड़ी दिखी के दसी दे कि तो हाँ जो ए बीमारी है, अगर तो हाँ ए खाद दिया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कने हुण जिहड़ा समय है से एलोपैथी दा युग बोलदे सी
0: जी,
1: पर तुहां मैं एक चीज दसना चाहंदा कि इस च जितने भी दवाइयां बनदियां
0: ना, हां जी,
1: इस विच कुथी ना कुथी जिहड़ा ना,
0: हां जी,
1: से अहां दा जिहड़ा आयुर्वेदा है, आयुर्वेदे दे जिहड़े प्रोडक्ट हन या जड़ी बूटियां ना, इस दा इस्तेमाल हुंदा।
0: हां जी,
1: कने सारे ते बड़ी हैरानी दी गल है कि अज दे समय पर भी ज्यादातर जिहड़ी अहां दी जड़ी बूटियां ना से जंगले ते आउंदियां।
0: बिल्कुल
1: ठीक है,
0: हां जी,
1: तेना दा अगर तुहां देखन ता वैज्ञानिक तौर पर सह जड़ी जड़ी बूटियां ना सह हाले भी अहां दे जड़े किसान बागवान भाई जड़े से अपनी जमीन पर नहीं उगा दे। ता सारे ते पहला प्रश्न जड़ा सह ए ही है कि भई किसान जो किया जे तेना अगे लान, कने तेना प्रोत्साहित करन कि भई तुहां अगे आ कने इना चीजा दी खेती बाड़ी करा, कने ए भी इक जड़ा तुहां दा अतिरिक्त आय दा जड़ा साधन है से बनी सकदा।
0: हां जी,
1: समय समय पर ए नहीं है कि सरकारा प्रयास नहीं करा दी या जड़े अहां दे विश्वविद्यालय से प्रयास नहीं करा दे, प्रयास हर तरफ ते होंदा
0: जी,
1: पर कुथी ना कुथी जड़ा से गैप रही जांदा, कुथी ना कुथी अहां दी कमजोरी रही जांदी, तिस दी वजह ते जड़ा अहां तिस चीजा जड़े से अगे नहीं लैन जांदे।
0: हां जी,
1: हुण मैं तुहां दसना चाहंदा कि अगर तुहां सरकारी तौर पर भी अगर कोशिश करना ता पूरे हिंदुस्तान च गल करना ता कम से कम 100 जड़ी जड़ी बूटियां दे ही है ना, कि जड़े बड़े बड़ी ज्यादा जरूरत जिन्हां दी आयुर्वेदा च होंदी।
0: बिल्कुल, हां
1: ठीक है, कने जेड़ा अहां दा राष्ट्रीय जेड़ा पादप बोर्ड है इसदा सह हो चाहे अहां दा इत्थों दा राज्य सरकार पर जेड़ा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, तो तेना भी कुछ जेड़ी अहां दी प्रजातियां से चिन्हित कीतियां कि ए जेड़ी ज्यादा बिकने वाली ज्यादा व्यापार इन्हां दा होंदा, कने इन्हां इन्हां जेड़ी जड़ी बूटियां है इन्हां जो तुहां उगा कने इस ते जेड़ा से तुहां ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकदा। ता 100 जेड़ा मैं तुहां दस्सा दा कि पूरे भारत वर्ष च 100 जेड़ी प्रजातियां जड़ी बूटियां दे सहित दे ही ना कि जिन्हां दा व्यापार विच ज्यादा ते ज्यादा जेड़ा महत्व है
0: जी,
1: कने तिना विच 32 जेड़ी प्रजातियां ने हिमाचल च हो सकदी है पैदा
0: जी। दिखा भाई, इस ते जेड़ी सह बेहतर गल और क्या हो सकदी है कि इतनियां प्रजातियां जेड़ी से अहां दे हिमाचल विच जेड़ी से उगाई जा सकदी है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सारे ते बड़ी बढ़िया गल अहां दी हिमाचल प्रदेश दी है कि हिमाचल दे प्रदेश जेड़ा से बड़ा खूबसूरत अहां दा प्रदेश है, कने हिमालय दी गोद च बसिया से।
0: बिल्कुल,
1: कने जलवायु इत्थों दी इतनी अनुकूल है, जेड़ी भी अहां कोई गल करा दे कि जड़ बूटी है तिस वास्ते चाहे इत्थों दी मिट्टी होए चाहे इत्थों दा तुहां दा जलवायु होए जेड़े आवा हवा है से सारी अनुकूल है
0: जी।
1: पर कोशिश जेड़ी है से सिर्फ जरूरत क्या है, जरूरत यही है कि अहां जो क्षेत्र दे हिसाब पर अहां कुछ कुछ जेड़ी चीजां से जड़ी बूटियां से अहां चिन्हित करना पौनी, तिना पर काम करने दी जरूरत है
0: जी। जियां सुगंधित पौधियां दे उपर अहां गलबात करा करदे हैं सोगी औषधीय पौधियां दे उपर, तां अगर सुगंधित पौधियां दी गल करिए डॉक्टर साहब, तां जियां कि रात राणी होई, गुलाब है, लेमन ग्रास होई आ, तां ए इस दे अलावा जियां पुदीना होई आ, पाबड़ी होई, ए भी क्या सुगंधित पौधियां दी श्रेणी च ही आउंदे?
1: ए दोनों दोनों काम करदे, औषधीय गुण भी इन्हां च।
0: हां जी,
1: कने औषधीय गुण होने दे सोगी सोगी इन्हां च सुगंधित तेल या बाकी चीजें भी हैं। हुण तुहां कुछ गणाए मैं तुहां होर, जियां रोजमेरी है
0: जी जी
1: सह खुशबूदार पौधा है।
0: हां जी,
1: फिर तुहां दा लवेंडर आई गया।
0: हां जी,
1: जरेनी में आई गया।
0: हां जी, मधुकामिनी।
1: हां मधुकामिनी, बैबूणा आई गया
0: जी जी।
1: फिर तुहां एक वाइल्ड मैरी गोल्ड होंदा, जंगली गेंदा, ये सारे सुगंधित है। ज्यादातर अगर तुहां देखा तो ये प्राकृतिक तौर पर ही जी है ना, जंगले च ही मिलते, कने इसकी खेती बाड़ी जी बड़ी घट करते भी है ना, तो बड़े इको दिको कने बड़े बड़ी घट संख्या च करते
0: हैं।
1: ये नहीं बोली सकते हां कि इसका स्कोप नहीं है। हां, मैं तुहां एक उदाहरण देना चाहता कि कहां दे पवन जी हैं, भटियाद दे किसान ने।
0: अच्छा,
1: तो तेना आपू सो की कम से कम 250 किसान जेड़े से आपू कने जोड़े हो ना।
0: हां जी, 250
1: 250 किसान बागवान, कने सह जेड़ा काम करा दे सह करा दे जंगली गेंदे पर।
0: अच्छा,
1: और जंगली गेंदे दे क्या करदे सह तेल कढ़दे, कने सह तेल जेड़ा सह आज दी डेट पर अगर मैं तुहां वो करना चाहां तो मार्केट विच 9000 ते लेकर 12000 पर किलो तीस दी कीमत है। ठीक है, हां, पर काम करने दी जरूरत है ना, सह भी करा दे होर भी करा दे, और इना जेड़ा प्रोत्साहन

0: कने मिठास दी मिठास, कने स्वाद दा स्वाद, कने फायदे दा फायदा।
1: जी ठीक है डॉक्टर साहब जी, इस ते बाद अगला प्रश्न तुहां करना हां दा ए रहना कि दिखा जेड़ा जिला कांगड़ा कने जिला जेड़ा चंबा दी जेड़ी सीमा है दिखा हां दे इतो शाहपुर द्रमण ते जेड़ा सा चंबा शुरू हो जांदा है कने इलाका जेड़ा सा पूरा जिए लगदा कि कांगड़े दी जेड़ी जलवायु है
0: जी
1: ते जिए जेड़ा जिला चंबा कने तितो दी जेड़ी जड़ी बूटियां ने जेड़ा जेड़े तितो दे औषधीय पौधे ने कि उहनां दी खेती भी उस हिसाब बिना जेड़ी करना पौनी कि ए आपू च मिली जुली हो सकती है।
0: नहीं इसी अजकल तो ये करने का वो ही नहीं रहे अजकल। अजकल तो हाँ मैं तो हाँ एग्जाम्पल दसदा, मेरा जेड़ा विश्वविद्यालय नौनी विश्वविद्यालय है, इसदे दो बच्चे, एक बच्चा जेड़ा सह केसर की खेती करा था
1: जी
0: सोलन दे अंदर,
1: हाँ जी,
0: दूजा बच्चा जेड़ा सह कोर्डीसेप्स होंदा एक,
1: हाँ जी,
0: जिसे बोलते कीड़ा जड़ी, आज दे समय पर सारे ते महंगी जड़ी है से,
1: हाँ जी
0: ठीक है। एक बच्चा होर है
1: हाँ जी,
0: सह गुच्छी मोरचाला जिसे बोलते,
1: हाँ जी
0: ठीक है, अजकल जेड़ा गुच्छी होंगी ठीक है
1: जी,
0: तिसदा काम करा दे
1: हाँ
0: तो कुछ भी कर सकते है।
1: हाँ
0: करना क्या है कि सह वाला इनवायरमेंट क्रिएट करना है, खेत की भी जरूरत नहीं है, अंदर कमरे में बेही करी भी काम कर सकते, जिन्हें करना सह कर सकते, तिना वास्ते कोई सीमा नहीं है,
1: हाँ जी
0: है ना, तिना वास्ते कोई वैरियर है, अगर इच्छा शक्ति है तो सह कुछ भी बेही करी, मनी ले जेड़ा कांगड़े वाला है,
1: हाँ जी
0: धर्मशाला वाला या धर्मशाला से छड़ी कांगड़े अगर कोई करना चाहता था सह तिथु ही जी हिमालय की कंडीशन है ना जी किन्नौर कने चंबे की या भरमौर की जी कंडीशन है उपर की सह तिथु ही अपने घरे क्रिएट कर सकता, स्याही वाला टेम्परेचर,
1: हाँ
0: स्याही वाली जलवायु, सारी चीजा सह तैयार करी करी कने ए ता कंड्यूसिव कंडीशन होंदी भई अपने कंट्रोल च, कने दूजा होंदा जेड़ा ओपन च,
1: हाँ जी
0: तो ओपन च है कि जिस चीज दा जित्थु ते स्थान होंदा ना,
1: हाँ जी
0: इसी बोलदे है एंडेमिक, भई ए जेड़ी ए चीज फलानी जगह ते ते तित्थु होनी है,
1: हाँ जी
0: ठीक है, तो तुहां अगर बाहर करके तो सह चीज दूजी जगह नहीं हो सकती। जी हाँ मैं उदाहरण के तौर पर ले लैंदा, जे अतीश की गल करिए ना,
1: हाँ जी
0: कुटकी की गल करी दे ना,
1: हाँ जी,
0: तो सह जेड़ा सह चंबा की उच्ची पहाड़ी भी नहीं हो सकता, सह प्लेन विच नहीं हो सकता,
1: हाँ जी,
0: ना फिर इतो अगर सफेद मुसली की गल करन या एलोवेरा की गल करन या बाकी होर करन, तो सह जेड़े से निचले क्षेत्र च ही हो सकता, सह उपर वाले क्षेत्र विच नहीं हो सकता।
1: हाँ जी
0: इसी तरीके से अगर तुहां पेड़ पौधे की गल करते, हुण खैर है,
1: हाँ जी,
0: तो खैर भी तुहां दिखे होने या चंदन है, कपूर है, ये जेड़ा कुछ क्षेत्र है ना जिन्हें तक सीमित होता,
1: हाँ जी,
0: तो इसे तो हाँ क्या चाहिदा होता कि तिथु की जलवायु जी
1: हाँ
0: है सह भी इसके अनुकूल होना चाहिए, तिथु की जी मिट्टी है सह इसके अनुकूल होना चाहिए, ता ही सह चीजा हो सकती
1: है। कुण दे बनस्पति जी है ता ही दिखा इलाकों वास्ते जी सह वैज्ञानिक अलग अलग किस्म अनुमोदित कितनी होंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। तो डॉक्टर साहब जी जेडे आदि किसान साथी बागवान साथी तुहाने संपर्क बनाना चाहते हैं तिना जो कुतु ते पौध मिलनी है तो तुहां तिना जे भी दसा कि सह किए तुहाने संपर्क जेड़ा सह बनाई पान।
0: बिल्कुल बड़ी अच्छी गल तुहां बोले, सारे ते पहले ता कोशिश ये करा जी भी मन लियो अगर कोई इस वास्ते अगर जानकारी लेना चाहता, सारे ते पहले ता आहां दे दो विश्वविद्यालय ने इत्थू,
1: हाँ जी,
0: एक नौनी विश्वविद्यालय करें तिथु भी एक विभाग जेड़ा सा इसी वास्ते है,
1: अच्छा,
0: इसी बोलते हैं हाँ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसका जेड़ा कम है ही सिर्फ जड़ी बूटियां का ही काम,
1: हाँ
0: ठीक
1: जी,
0: है। इस तरीके से तुहां दा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है, ठीक है,
1: हाँ जी,
0: इत्थू तुहां संपर्क कर सकते,
1: जी
0: नौनी विश्वविद्यालय तुहां संपर्क कर सकते,
1: हाँ जी,
0: इसके अलावा आयुर्वेदी का जेड़ा अपना इन्हां दा एक अलग संस्थान है जोगिंद्र नगर,
1: हाँ जी,
0: ठीक है, तिथु भी तुहां जेड़े तिथु अच्छे जेड़े अधिकारी हैं डायरेक्टर लेवल दे बंदे तिथु बैंदे ना,
1: हाँ जी,
0: अधिकारी बैंदे ना, तिथु भी तुहां से जानकारी ले सकते हैं, कने सारे ते नजदीक अगर तुहां जानकारी लेना चाहते ना तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र हरेक जिले च तुहां मिली आने, कने तिथु जेड़े ना सह कंसर्न अगर वैज्ञानिक नहीं भी होगा तो तिथु जालू संपर्क कर दे तो तेना कोई ना कोई तेना रस्ता जेड़ा से किसान बागवान जो दसी रहना कि तुहां इन्हां ने गल करी लिया कने ए तुहां संपर्क सूत्र लिया कने तुहां इस दी जानकारी तिथु ते ले सकते
1: जी। डॉक्टर साहब जी बड़ी अच्छी जानकारी जड़ी सह तो अहां दे सुनने वाले तक जड़ी सह सुगंधित कने औषधीय पौधे दे उपर जड़ी सह पुजाई है तो अपना कीमती समय निकाली के जिला चंबा ते जड़ा सह तू आकाशवाणी धर्मशाला दे टियाले पर आए तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। तो ये बड़ी बांकी जानकारी अहां सारियां सुनी है कने उम्मीद करनी है सारियां यो पसंद भी आई होनी है। बड़का चाचू इसते बाद मिंजो वल पुजी होन कांगड़ा सब्जी मंडी दे थोक भाव। तो सब ते पहले गल करिए ता आलू रे आज 10-20 रुपये, प्याज 30-32, टमाटर 22-30 रुपये, लसन 150-180 रुपये, अदरक 160-200 रुपये, शिमला मिर्च 55-60, अरबी 22-28 रुपये, खीरा 20-30 रुपये, मटर 90-100 रुपये, फूल गोभी 50-55 रुपये, बंद गोभी 28-32 रुपये, कने बैंगन 25-30 रुपये, कद्दू 15-20 रुपये, टिंडा 40-50 रुपये, हरी मिर्च 55-60 रुपये, धनिया 100-200 रुपये, तोरी 25-30 रुपये, कने भिंडी 35-45, घिया 30-50 रुपये, करेला 20-30 रुपये, फ्रांस बीन 50-60 रुपये, गाजर 30-35, मशरूम 150-160। कने फलां विच गल करिए तां फलां विच
3: सेब रे अज 40-180 रुपये।

0: प्रति किलो, केला रे 45 दे 55 रुपए प्रति दर्जन, अनार 100 दे 120 रुपए प्रति किलो, अनानास 33 दे 40, कने अमरूद 80 दे 90 रुपए प्रति किलो, मौसमी 50 दे 60 रुपए प्रति किलो, पपीता 50 दे 55 रुपए प्रति किलो, अंब रे जेड़ा 70 दे 80, कने अंब तोता रे 80 दे 110 रुपए प्रति किलो, कने नींबू 80 दे 90 रुपए प्रति किलो।
1: जी तो दिखा किसान साथियों ए पजाए तुहां तक हाँ कांगड़ा मंडी दे थोक भाव कने इस ते बाद फिरी ते घड़ी सुइया वैसे तो थोड़ा देर वक्त अली बचदा ना तो जाते जाते एक रौनक मेला टियाले पर हो या तो मैं बोलती गल बनी आनी
0: बिल्कुल,

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कने कार्यक्रम खेतीबाड़ी एतु संपन्न होकर दा कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। हुण अपने टैल दे सदस्य बड़का चाचू
1: कनेशनो ताई जो दिया अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालयों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने व डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष ने आगामी मॉनसून सत्र को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति पर शिमला में अधिकारियों के साथ की बैठक। 21 अगस्त से शुरू होगा सत्र। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदने का किया आह्वान। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नए शहर विकसित करने के लिए केंद्र से वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान करने का किया आग्रह। और राज्य में इस मॉनसून सीजन में सामान्य से 6% कम बरसे मेघ। 10 व 11 अगस्त को अनेक जिलों

0: कमी नहीं है और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रदेश विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर सुरक्षा के साथ एक बैठक की और कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा। कुलदीप पठानिया ने बताया कि मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शुरू हो रहा है जो 3 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन की कुल 10 बैठकें होंगी।
1: वर्तमान विधानसभा 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र जो है जिसको मॉनसून सत्र कहा जाता है उसका आयोजन जो है 21 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा और इसमें 10 सीटिंग होंगी। जो विधानसभा का अधिकार क्षेत्र है, जो हमारा स्पीकर अधिकार क्षेत्र है, कानून व्यवस्था को बना के रखने के लिए जो है उसका प्रयोग किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से कानून का न बिगड़े और सत्र का संचालन बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो। सभी सामान्य सदस्यों को अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने चुनाव क्षेत्रों के और हिमाचल प्रदेश के जो विषय हैं उन पर जो है अंदर चर्चा में वो भाग ले।
0: आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली स्थित हिमाचल इम्पोरियम का दौरा कर हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों की खरीददारी की। उन्होंने देशवासियों से बुनकरों और शिल्पकारों के समर्थन में हथकरघा उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। राज्यपाल ने बताया कि आज ही के दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वोकल फॉर लोकल पहल केवल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का अभियान ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय जन आंदोलन भी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हजारों बुनकर व शिल्पकार समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प की अमूल्य विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आज कुल्लू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में बुनकरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त जयवंती ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बताया कि जिले के बुनकरों ने बुनाई की पारंपरिक शैली को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी मशहूर किया है। उन्होंने बताया कि कुल्लू की वुलन साड़ी भी देश दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। जयवंती ठाकुर ने बुनकरों से अपने उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने की संभावनाएं तलाशने का आह्वान किया। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश के शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए नए शहर विकसित करने को लेकर वित्तीय सहायता व तकनीकी सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ की तर्ज पर पंचकूला व चंडीगढ़ की सीमा पर सटे हिमाचल के क्षेत्र में प्रस्तावित नए शहर के लिए साझा आधारभूत ढांचे के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। शहरी विकास मंत्री ने अर्बन चैलेंज फंड के 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जल्द मंजूरी प्रदान करने का भी केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत शेष 64 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि भी हिमाचल को जल्द जारी की जाए। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में मरीजों को ऑपरेशन के लिए एक साल बाद की तारीख दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री 4 वर्षों में एक बार भी यहां निरीक्षण करने नहीं पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुल्लू अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई एक महिला की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के भुगतान में होने वाली देरी को दूर करना और विवाद

0: निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। यदि किसी विवाद में मध्यस्थता विफल रहती है तो मध्यस्थता समाप्त होने की तिथि से 30 दिन के अंदर मामले को आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है तो आपूर्तिकर्ता को दिए गए निर्णय की राशि का कम से कम 50% भुगतान किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने अधिकारियों को जन शिकायतों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र के खेगवा में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। विनय कुमार ने बताया कि मॉनसून सीजन के दौरान लोगों की समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।
1: अभी तक तो जो नुकसान आका गया है हमारे सिरमौर जिले का वो ज्यादा नहीं है सड़कों का, पर फिर भी हमने अलर्ट पे रखा हुआ सभी डिविजन्स को कि ताकि कोई इस प्रकार की अगर कोई भारी बारिश होती है और कोई रोड ब्लॉक होता है तो तुरंत उसको बहाल किया जाए। तो ये सारे प्रशासन को निर्देश दिए गए और इस बारिश के दौरान में विभागों की छुट्टियां भी बंद की है ताकि सभी लोग अलर्ट रहे।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी कोचिंग केंद्र पंजीकरण व विनियमन नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इनके मुताबिक निजी कोचिंग संस्थानों को पारदर्शी व जवाबदेह बनाना और विद्यार्थियों को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना है। धर्मशाला में आज उपायुक्त हेमराज बैरवा ने इसे लेकर एक बैठक की और बताया कि विद्यार्थियों की 50 से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है।
2: प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में जितने भी निजी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए हैं और जिले में ऐसे जितने भी संस्थान चल रहे हैं उन सब का पंजीकरण अनिवार्य है। रूल्स में एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। हमने यही निर्णय लिया है कि जितने भी जिले के अंदर संस्थान हमारे मौजूद हैं जिसमें 50 से अधिक छात्र वहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं उन सभी संस्थानों को इसमें रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है।
0: प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान अभी तक सामान्य से 6% कम वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और चंबा सहित कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। मूसलाधार वर्षा से प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि 10 और 11 अगस्त को राज्य के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है।
3: बारिश का जो ये दौर है हिमाचल प्रदेश में ये लगभग इसी तरीके से हल्के स्तर तक की बारिश जो है अराउंड 9 अगस्त तक हमें देखने को मिलेगी। कल और परसों दो दिन में बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आएगी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन 10 तारीख के बाद से प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी एक बार फिर से हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी। कांगड़ा जिले के अलावा सिरमौर और साथ ही कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट है 10 अगस्त के लिए, और वहीं पे 11 अगस्त की अगर हम बात करें तो कुल्लू, मंडी, सिरमौर के अलावा चंबा जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट है।
0: राज्य सचिवालय प्रशासनिक सेवाएं के तहत क्लर्क जॉब ट्रेनी के 40 पदों को भरने के लिए राज्य चयन आयोग ने 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन का वेब लिंक 14 अगस्त से 11 सितंबर तक खुला रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालयों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने व डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष ने आगामी मॉनसून सत्र को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति पर शिमला में अधिकारियों के साथ की बैठक। 21 अगस्त से शुरू होगा सत्र। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदने का किया आह्वान। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नए शहर विकसित करने के लिए केंद्र से वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान करने का किया आग्रह। और राज्य में इस मॉनसून सीजन में सामान्य से 6% कम बरसे मेघ। 10 व 11 अगस्त को अनेक जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
5: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
4: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
5: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी निचार स्थित भावानगर जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना अनुसार विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 3 पद तथा आंगनवाड़ी सहायकों के 3 पदों को भरने हेतु साक्षात्कार 24 अगस्त 2026 को कार्यालय उपमंडलाधिकारी निचार स्थित भाभा नगर के कार्यालय में प्रातः 11 बजे आयोजित किए जाने हैं। इन पदों को भरने हेतु इच्छुक महिला पात्र उम्मीदवारों से 18 अगस्त 2026 तक सायं 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद भरा जाना है, उर्नी 2, निगुलसरी 1, कंडार, इन आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद भरा जाना है। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जहां आंगनवाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है, छोलतू 1, मेरू 1, यंगपा 1, इन पदों को भरने हेतु वांछनीय योग्यता इस प्रकार से है, महिला उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10.2 या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए, आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी निचार स्थित भावानगर जिला किन्नौर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आपको पुनः बता दें, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी निचार स्थित भावानगर जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 3 पद तथा आंगनवाड़ी सहायकों के 3 पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने हेतु 24 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे उपमंडलाधिकारी निचार स्थित भावानगर के कार्यालय में प्रातः 11 बजे साक्षात्कार आयोजित किए जाने हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र 18 अगस्त 2026 तक सायं 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। ये
7: ...103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा अगले की जाएगी।
8: आज की कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनुवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही
9: चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृहमंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहाँ चर्चा होगी, गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहाँ निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक है, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए AI और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों के भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश के आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और उड़ीसा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को GI टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना DMK सदस्य डॉ. एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
7: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: हजारों की तरह हमसे वादा करो दूर हजारों।
1: तलत अजीज की आवाज में आपने ये गजल सुनी। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में गाई ये गजल।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्त की गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है।

0: प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
1: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
3: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे।

0: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मखदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फोन के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
5: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक

0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: जी हाँ श्रोता, जूली फिल्म की कहानी जो है वो इस प्रकार है कि जूली यानी लक्ष्मी एक एंग्लो इंडियन ईसाई परिवार की लड़की है और उसकी माँ जो है वो थोड़ी सख्त स्वभाव की है और जूली को अपनी सहेली रीता भादुड़ी के भाई शशि भट्टाचार्य से प्यार हो जाता है जो कि एक बंगाली हिंदू लड़का है और जूली जो है उनके बीच जब शारीरिक संबंध बनता है और वो गर्भवती हो जाती है तो वो इस बात से डर जाती है और शशि जो है वो आगे पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है और जब जूली की माँ को इस बात का पता चलता है तो वो समाज के डर से इस बात को छुपाते हैं और जूली जो है वो गुप्त रूप से एक बच्चे को जन्म देती है जिसे कि अनाथालय में छोड़ दिया जाता है और बाद में शशि जब वापस आता है तो जूली से शादी करने के लिए तैयार होता है लेकिन दोनों परिवारों में धर्म और संस्कृति का अंतर जो है वो बाधा बनता है और अंत में शशि के समझदार पिता जो है वो दोनों परिवार के पूरा ग्रहों के साथ जो है वो उन बच्चों के बीच की जो दूरियां हैं उनको दूर करते हैं और सब लोग जो है वो इस रिश्ते और बच्चे को भी स्वीकार कर लेते हैं और इस फिल्म का संगीत बहुत ही शानदार था और संगीतकार राजेश विश्वन को इस फिल्म से बहुत प्रसिद्धि भी मिली थी और इनके जो गाने हैं वो आज भी सदाबहार हैं तो आइए सुनवाते हैं एक बहुत प्यारा संगीत इसी फिल्म से।

जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कारवां सुरों का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कारवां सुरों का। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रही हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। फिल्म है जीन्स। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है AR रहमान ने।

यशोदा कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल चाहता से, और इस गीत को गाया है शंकर महादेवन, शान और केके ने।

शुक्र कार्यक्रम का आखिरी गीत आपने सुना सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म अकीरा से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। निजे प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म है सावन भादो।

निकलती निकलती निकलती जाए वे। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ब्लैक मेल से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल है राजेंद्र कृष्ण के और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और इस कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म है आंखें।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए शागिर्द फिल्म के गीत के साथ आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11 बजने को है कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पे निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही ये समाचार

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रमों का प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।